सुप्रभात, ये आकाशवाणी रांची का विविध भारती केंद्र है, FM 103.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज है मंगलवार, शक संवत 1948 की आषाढ़ माह की दूसरी तिथि, तद अनुसार 23 जून 2026। अभी हमारी श्रेणियों की घड़ी में 5:56:44 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा। इस सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ।

0: हम आकाशवाणी रांची के विविध भारती केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार हमारे मुंबई केंद्र से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ. विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से

0: होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती,
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

आज का चिंतन। गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा, विश्वास वो पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करता है और गाने लगता है। अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 228। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता कार्यक्रम। सुनिए श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वॉयलिन वादक SL कंडारा। इस श्रृंखला की 6वीं कड़ी आज सुनिएगा। सात बजे से सुनिए भूली बिसरी गीत कार्यक्रम 7:30 पर। हम है राही प्यार के। आठ बजकर 15 मिनट पर त्रिवेणी। 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राज बब्बर पर। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा। सेहतनामा में सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुत करता है जुबैर खान। ग्यारह बजे रंग तरंग और 12 बजे हिंदी समाचार। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 बजे सुनिए सुरीला सफर। 2 बजे त्रिवेणी। 2:30 से सदाबहार नगमे। 3 बजे सखियों सहेलियों का कार्यक्रम सखी सहेली सुनिएगा। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे। गीतकार शायर और लेखक शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुतकर्ता सुबैर खान। शाम 5 बजे छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता। आपको फिर से बता दें श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वॉयलिन वादक SL कंडारा। इस श्रृंखला की 6वीं कड़ी। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा शाम 7 बजे से। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। हवा महल में रात 8 बजे सुनिए नाटिका चांद की किरण। लेखन प्रेमलता जैन का। निर्देशन जनार्दन राय का। आठ बजकर 15 मिनट रात सुनिएगा चित्रलोक कार्यक्रम। 9 बजे सुनिए आपके लिए। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राज बब्बर पर। रात 10 बजे छाया गीत। प्रस्तुत करता है राघवेंद्र नेगी। आलेख और स्वर ममता सिंह का। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति किसी से छिपी नहीं है। फिर भी राजा जनक अपनी रानी सुनैना से भरत के गुणों का बखान करते हैं। रानी की मनोदशा भांप कर राजा जनक भी यही चाहते हैं कि भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं, क्योंकि भरत ने स्वार्थ तथा निजी सुखों की ओर स्वप्न में भी नहीं ताका है। उधर श्री राम के मन में ये विचार आता है कि मिथिलापति जनक अयोध्या वासियों तथा माताओं को चित्रकूट में वन प्रवास के कष्ट सहते कई दिन बीत गए हैं। वो कुल गुरु वशिष्ठ से निवेदन करते हैं कि अब वे जो उचित समझें आदेश दें।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की छठी कड़ी।
1: सभी सुनने वालों का हृदय से स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं पंडित एसएल कंडारा जी का। पंडित एसएल कंडारा जी को इस अंक से तबले पर संगति दे रहे हैं श्री संतोष मिश्र जी, जो जाने माने तबला नवाज पंडित मदन मिश्र जी के सुपुत्र हैं और शिष्य हैं। संतोष जी, आपका भी विविध भारती के स्टूडियोज में बहुत स्वागत है। पंडित जी
2: जी,
1: वायोलिन की विहंगमता के बारे में हमने अब तक चर्चा की
2: जी।
1: किस तरह से भारत में उसका आगमन हुआ, भारतीय शास्त्रीय संगीत ने कैसे उसे अपनाया
2: जी।
1: और कौन कौन महान कलाकार हुए हैं इस वाद्य को लेकर के, और फिल्मों में किस तरह से वायोलिन का उपयोग हुआ है, ये सारी जानकारी पाने के बाद अब हमारे कान आतुर हैं आपका वायोलिन वादन सुनने के लिए। तो राग शंकरा से हम शुरुआत करते हैं
2: जी।
1: राग शंकरा के बारे में, उसके चलन के बारे में
2: जी
1: हमें बताइए।
2: राग शंकरा देखिए बहुत प्राचीन रागों में से एक राग है
1: जी,
2: और शास्त्रों में इस राग का बहुत विस्तार से वर्णन नहीं है, लेकिन जो पंडित लोग हैं
1: जी
2: या उस्ताद लोग हैं इस राग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, अगर जो जिन्होंने इसको सीखा है। हमारे गुरुजी ने मुझे जब राग शंकरा के बारे में डिटेल बताया
1: जी,
2: तो मुझे लगा कि उनका ज्ञान अगर नहीं मिलता तो ये राग से मैं वंचित रहता था, तो उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी
1: जी।
2: मैं शब्दों के बजाय कुछ बजा के बताऊं तो शायद ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, तो मैं कुछ कोशिश करता हूं थोड़ी सी। देखिए राग शंकरा जो है उसमें आरोह में षड्ज के बाद गंधार
1: जी,
2: फिर पंचम, फिर निखात धैवत और तार सप्तक का साज, यानी गंधार पंचम धैवत और निखात और सा, यानी पांच ओडव जाति हो गई इसकी, पांच सुर लगते हैं। और अवरोह में सा नी ध पा गापा गारे सा, मध्यम नहीं लगता है, केवल मध्यम अवॉइड होता अवरोह में। अब इस क्लिष्टता को केवल बरतने से ही मालूम पड़ सकता है कि वो कैसे राग शंकरा प्रकट होता है
1: जी,
2: तो ये मैं कोशिश करता हूँ आपको बजा के बताने के।

अगापानीसा। अब रिखब भी इसमें लगता है, पर वो वक्र गति से लगता है, धैवत भी लगता है, वो भी वक्र तरीके से लगता है।

ये जो सा ग प षड्ज गंधार और पंचम, ये सा प ग प रे ग रे ऋषभ जो लग रहा वो वक्र गति से लग रहा, खड़ा नहीं लग रहा। खड़ा लगेगा तो शास्त्रीय रूप से अमान्य होगा वो।

0: क्या बात है, बहुत खूब पंडित जी। एक ताल में निबद्ध ये बंदिश जो आपने सुनवाई, लगता है इसकी शास्त्रीयता को, इस वातावरण की शास्त्रीयता को ऐसे ही रखा जाए और एक भजन अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं जो पंडित राजन मिश्र, साजन मिश्र की स्वरों में है।
1: बहुत अच्छा है।

0: राग शंकरा पर आधारित ये भजन अभी आप सुन रहे थे पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र की आवाजों में। श्रोताओं, इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार श्रृंखला की ये कड़ी यहीं समाप्त होती है। आज्ञा दीजिए।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की छठी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। तबला संगति संतोष मिश्रा की।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका।

0: का 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

उजाला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन की तर्ज। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए बंधन फिल्म का गीत। लीला चिटनिस की आवाज है, प्रदीप ने इस गीत को लिखा है और सरस्वती देवी ने इस गीत की धुन बनाई है।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: अछूत कन्या फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सरस्वती देवी के स्वर में। गीतकार थे जे एस कश्यप और संगीतकार सरस्वती देवी। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

0: मैंने जीना सीख लिया। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज आशा भोसले की थी। इस गीत को आनंद बख्शी ने लिखा था और रोशन ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम।

0: अंदर शायर पैदा हो रहा था। मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विक्रमबाज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, शमशाद बेगम की आवाज थी। बी एन बाली ने इस गीत को लिखा था और मदन मोहन की धुन थी। लीजिए अब सुनिए उमा देवी के स्वर में दर्द फिल्म का गीत। गीतकार शकील बतायनी, संगीतकार नौशाद।

रुस्तम शोहरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुरैया की आवाज में। कमर जलालाबादी की रचना थी, सज्जाद हुसैन का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

मनपसंद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। अमित खन्ना के बोल थे, राजेश रोशन का संगीत था।

0: रिक्शा वाला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथी की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और आर डी बर्मन में धुन बनाई थी।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं।

0: और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया। एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन,
2: कौन
3: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते वो हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए सविता सिंह को, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करें।

0: tinggi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1 करोड़ 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष

0: श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
1: नैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
2: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ

0: अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का मान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई। जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमरीका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले छठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अलंकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे जुगनू पर। अपने अंदर एक जगमगाता सूरज लिए चलता है जुगनू। रात का सूरज है चांद, लेकिन चांद से बेहतर है जुगनू, क्योंकि जुगनू को चमकने के लिए किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। चांद तो सूरज से किरणें उधार लेता है, फिर उन्हें

चांदनी में ढालकर फूला नहीं समाता है, लेकिन जुगनू वो हमें सिखाता है कि अपनी प्रतिभा और क्षमता पर विश्वास रखें, दूसरों पर निर्भर ना रहें और जीवन में जब भी निराशा या असफलता का अंधेरा घना होने लगे तो अपनी सकारात्मक सोच और कर्म के दीपक को जलाए रखना चाहिए।

अंधेरे की अपनी जिद है और जुगनुओं की अपनी जिद। सूरज बनने की जिद करो और जो ना बन सको सूरज, तो जुगनू बनकर छोटा सा सूरज अपने अंदर उगाकर अंधेरे से लड़कर रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक बनो। जुगनू जब रात की काली चादर पर टिमटिमाना शुरू करते हैं, तो अक्सर अंधेरे में भटके को उम्मीद के सूरज तक पहुंचने का एक सिरा मिल जाता है और वो जुगनू अपनी रोशनी खोने तक उस भटकते प्राणी की उंगली पकड़ उसे सुबह की शफक रोशनी तक पहुंचा देते हैं।

हमारे सपने मन की मुट्ठी में रखे जुगनू ही तो हैं। माना जुगनू सूरज नहीं हो सकता और न सूरज जुगनू हो सकता है, फिर भी सपनों के जुगनू हर सूरज की मुट्ठी में है। हर जुगनू अपने अंतस के सूरज से चमकता है, वो चमकता है फिर बुझता है और फिर चमकने लगता है। निरंतर ये क्रम जारी रहता है। जुगनू कभी सूरज की तरह तेज न चमक पाने पर निराश होकर अपनी चमक नहीं खोता, वो तो बस अपने को पूरी तरह से स्वीकार कर अपने आसपास के अंधेरे से निरंतर लड़ाई जारी रखता है।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
5: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की आवाजों में गुरु फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे A.R. रहमान। लीजिए अब सुनिए धड़क 2 फिल्म का गीत जुबिन नौटियाल और सुवर्णा तिवारी की आवाजों में। संगीतकार हैं तनिष्क बागची।

0: धड़क टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन

0: उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ऊंचाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे जावेद अली, दीपाली सेठ, मधुवंती बागची की आवाजों में। अरशाद कामिल के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था। विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए लेते हैं बहुत छोटा सा ब्रेक।

ये है सत्यमेव जयते 2 फिल्म का गाना, जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजें। मनोज मुंतशिर और साथी का लिखा हुआ ये गीत है। संगीत रोचक कोहली का।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
4: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है।

0: बॉर्डर टू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आवाजें थीं दिलजीत दोसांझ, परंपरा टंडन, सचेत टंडन की। कौसर मुनीर ने इस गीत को लिखा था और सचेत टंडन और परंपरा टंडन ने मिलकर इस गीत की धुन बनाई थी।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
3: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम, अंदर शायर पैदा हो रहा था। मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, चित्रलोक। कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक।

परम सुंदरी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी सचिन जिगर, विशाल मिश्रा और अमिताभ भट्टाचार्य की। अमिताभ भट्टाचार्य ने वो लिखे थे।

सेवा दिवस। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। उद्देश्य लोक सेवाओं के महत्व को बढ़ावा देना और जन सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों का सम्मान करना है। ये दिन हमें सेवा, संवेदनशीलता और सुशासन के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। आइए जन सेवा के इस पावन भावना को प्रणाम करें और एक बेहतर समाज बनाने का संकल्प लिया जाए।

सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में राजी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और साथी संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय। चित्रलोक कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए मालिनी अवस्थी की आवाज में हक फिल्म का ये गीत।

हक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी मालिनी अवस्थी और साथियों की, कौशल मुनीर ने बोल लिखे थे और विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए लेते हैं एक और ब्रेक।

हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अगुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अगुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से

0: जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
2: कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राज बब्बर पर, सुनना ना भूलिएगा।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की थी। इरशाद कामिल के बोल थे, ए आर रहमान की तर्ज थी। दोस्तों, 23 जून को विश्वभर में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उन करोड़ों महिलाओं की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करना है जो पति के निधन के बाद जिन्हें आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक और तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन महिलाओं के साहस, धैर्य और संघर्ष को नमन करने का दिन है जिन्होंने तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना भी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। 2026 की थीम है विधवाओं के लिए न्याय, गरिमा और आर्थिक सशक्तिकरण। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें शंकर महादेवन, सूरज जगन और जय बरुआ की आवाजें थी। जावेद अख्तर ने बोल लिखे थे और शंकर एहसान लॉय ने तर्ज बनाई थी इसी गीत के। साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। आप स्वस्थ, सकुशल और सानंद रहिए, इसी कामना के साथ आज के चित्रलोक कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। सविता सिंह को नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जिनका जन्म संयुक्त प्रांत टुंडला आगरा में पंजाबी परिवार में 23 जून 1952 को हुआ। अपनी आरंभिक शिक्षा आपने आगरा से की, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के आप पूर्व छात्र हैं। इतनी जानकारियों के बाद निश्चय ही एक कलाकार का चेहरा आपके जेहन में कौंध गया होगा, और ऐसा ना भी हुआ हो तो ये गीत इस अभिनेता की पहचान करा ही दे।

आज के फनकार में आज का सफर हम तय करेंगे एक सशक्त अभिनेता राजनीतिज्ञ राज बब्बर की बातों के साथ, उनकी फिल्मों के गीतों के साथ।

अपने प्रशिक्षण के बाद आप मुंबई चले आए। यहाँ आने के बाद समय के कुछ अंतराल पर आपको मिली फिल्म आप तो ऐसे न थे, ये 1980 की फिल्म थी जिसमें राज बब्बर ने विजय नाम के किरदार को निभाया था। इनके साथ रंजीता, दीपक पाराशर, मदन पुरी और ओम शिव पुरी थे। मोहन कुमार द्वारा निर्मित, अम्बरीश संगल द्वारा निर्देशित ये फिल्म अपने एक गाने की वजह से आज तक याद की जाती है, जिसे 3 सिंगर्स ने आवाज दी थी और संगीत था उषा खन्ना का। ये गाना पर्दे पर रंजीता और राज बब्बर पर फिल्माया गया है।

कह सकते हैं कि राज बब्बर की विशेष पहचान फिल्म इंसाफ का तराजू से हुई। इस फिल्म में जीनत अमान और पद्मिनी कोल्हापुरे ने भी अभिनय किया। इस फिल्म में आपके अभिनय से प्रभावित होकर बीआर चोपड़ा बैनर की फिल्मों के आप सक्रिय सदस्य बन गए। निकाह में दीपक पाराशर और सलमा आगा के साथ आप थे, साथ ही आज की आवाज में स्मिता पाटिल के साथ आपने अभिनय किया।

सामाजिक घरेलू ड्रामा फिल्म थी 100 दिन सास के, जिसमें मुख्य कलाकार थे रीना रॉय, अशोक कुमार, राज बब्बर, बेला बोस और ललिता पवार। वैसे तो ये फिल्म पूरी तरह किरदार दुर्गा पर आधारित थी, जो समाज में बहुओं के लिए बनाए गए नियमों पर प्रश्न उठाती है। इस किरदार को रीना रॉय ने निभाया था। ये एक सफल फिल्म थी और इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे राज बब्बर।

फिल्मों में रोल पाना इस थिएटर आर्टिस्ट का ध्येय था, वहीं फिल्मों के लिए किया जाने वाला स्ट्रगल एक सत्य, इंसाफ का तराजू। इसकी सफलता राज बब्बर के तमाम संघर्षों का एक सुखद परिणाम लेकर आई थी। इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। एक इंटरव्यू में आपने शेयर करते हुए बताया था कि वो अपनी माँ के साथ जब फिल्म देख कर निकले तो माँ रो रही थी। राज बब्बर ने सोचा शायद मेरे इतने सालों के संघर्ष के बाद मिली सफलता पर इनके खुशी के आंसू है, पर जब असली बात पता चली तो आपको सुखद आश्चर्य हुआ। माँ ने कहा, बेटा हम दो रोटी कम खा लेंगे, ऐसा काम मत किया कर। इंसाफ का तराजू में राज बब्बर ने एक नेगेटिव किरदार निभाया था।

राज बब्बर ने सुप्रसिद्ध थिएटर पर्सनालिटी सज्जाद जहीर की बेटी और मशहूर थिएटर आर्टिस्ट नादिरा जहीर बब्बर से विवाह किया। आपसे राज बब्बर की दो संतानें हैं, आर्य बब्बर और जूही बब्बर। ये दोनों ही कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वहीं इनकी पत्नी मशहूर अदाकारा स्मिता पाटिल से प्रतीक बब्बर हैं, जो स्वयं एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं।

राज बब्बर ने स्मिता पाटिल के साथ कई फिल्में की, जिनमें प्रमुख हैं आज की आवाज, वारिस, इंसानियत के दुश्मन, अवाम, जवाब, हम दो हमारे दो, शपथ, मेरा घर मेरे बच्चे, दहलीज, किनारा और भीगी पलके।

किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़े शख्स का हिंदी फिल्मों से जुड़ने के पीछे की कहानी कई बार बहुत रोचक और प्रेरणादायी होती है। ऐसा ही राज बब्बर जी के साथ भी हुआ। आगरा से पढ़ाई के बाद आप पटियाला यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बने। यहाँ थिएटर का आपने विधिवत प्रशिक्षण लेना आरंभ किया, जहाँ इनकी मुलाकात हुई हरपाल टिमाणा जी से, जो खुद NSD से थे। आप स्वयं पंजाबी कलामंच नाम की एक सांस्कृतिक संस्था चलाया करते थे। आपने राज बब्बर से एक दिन कहा कि देखो राज बब्बर, नाटक तुम कर रहे हो और बड़े अच्छे अभिनेता हो, मैं खुद भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हूँ, मैं तो यही नसीहत दूंगा तुम्हें कि जाओ और NSD से एक्टिंग का कोर्स करो। ये बात राज बब्बर को जच गई। सन 1972 में राज बब्बर ने NSD में दाखिला लिया, जहां इनके सीनियर्स थे नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी। महान थिएटर गुरु इब्राहिम अलकाजी से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। शुरुआती दौर में इन्हें दारा सिंह की फिल्में काफी पसंद थी, फिर दिलीप कुमार साहब के अभिनय ने इन्हें मुतासिर किया। NSD करने के बाद इन्हें प्रस्ताव मिला कि आप NSD की रिपेट्री का हिस्सा बने, लेकिन राज बब्बर चूंकि दूरदर्शन से भी जुड़े थे, सुदर्शन काया थी इनकी, पर्दे पर इनकी उपस्थिति दर्शकों को पसंद भी आती थी, ये इन्हें मालूम भी था, और इसी वजह से इन्होंने शायद ये निर्णय लिया कि वो रिपेट्री का हिस्सा नहीं बनेंगे। जहां तक दूरदर्शन की बात है तो ये काम इन्हें कहा जाता है कि इलारुन जी ने दिलवाया था। यही वो दौर था जब नादिरा बब्बर से आपका मिलना हुआ और विवाह संपन्न हुआ।

फिल्मों का इन्हें मिलना अभी भी तय नहीं था। थिएटर करते रहे जब इनके अच्छे मित्र शंकर सोहेल के द्वारा इनकी मुलाकात मशहूर प्रकाश मेहरा से हुई। सलीम जावेद की जोड़ी और रमेश सिप्पी उस वक्त एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसके लिए राज बब्बर का चयन हुआ। स्क्रीन टेस्ट में भी आप सफल रहे। दिलीप साहब ने जब स्क्रीन टेस्ट देखा तो खुश हुए। रमेश सिप्पी भी आश्वस्त हुए कि अब फिल्म को एक महत्वपूर्ण किरदार राज बब्बर मिल गया है। पर बाद में किन्हीं कारणों से यह किरदार निभाया अमिताभ बच्चन ने और फिल्म थी शक्ति। प्रकाश मेहरा से इनकी भेंट एक वक्त पर नाउम्मीदी को चीरती हुई उम्मीद की किरण लेकर आई। नमक हलाल में काम करने की बात चली पर इस फिल्म में भी इनका रोल शशि कपूर ने किया। यहां भी उम्मीद दगा दे गई पर आशा इनकी न छूटी। शारदा फिल्म में आप एक छोटे किरदार में नजर आए जिसमें जितेंद्र, रामेश्वरी और सारिका थी। फिर सुपरहिट फिल्म इंसाफ का तराजू ने इनकी किस्मत बदल दी। राज बब्बर अपनी फिल्मी हैसियत के साथ साथ समाज सेवा के कार्य से भी जुड़े रहे हैं और एक राजनेता के रूप में भी सक्रिय हैं। इन्होंने अपने होम प्रोडक्शन में अपने भाई के साथ मिलकर बब्बर फिल्म्स के बैनर तले 1992 में कर्म योद्धा, 2003 में काश आप हमारे होते और 2010 में टीवी सीरियल महाराजा रणजीत सिंह का निर्माण किया। सन 1981 में इंसाफ का तराजू बेस्ट एक्टर के लिए, 84 में अगर तुम ना होते सपोर्टिंग एक्टर के लिए, 85 में आज की आवाज बेस्ट एक्टर के लिए, 94 में दलाल विलन के लिए और 1996 में याराना फिल्म के विलन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए आपको नामांकित किया गया था। राज बब्बर की कई फिल्मों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है जिनमें हम 5, कलयुग, राज और पूनम है।

प्रेम गीत, ये रिश्ता ना टूटे, उमराव जान और अरमान फिल्म भी राज बब्बर को एक अच्छे अभिनेता के रूप में दिखलाती है। आपस की बात, दूल्हा बिकता है, दौलत जैसी फिल्म भी इनके अभिनय से सजी थी। लिबास, दहलीज, घायल, रुदाली, माया मेम साहब, बरसात और याराना में भी राज बब्बर ने अपनी अभिनय क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया और दर्शकों ने भी इसे सराहा, प्यार किया। फिल्म बंटी बबली, कॉरपोरेट, फैशन, बॉडीगार्ड, फोर्स और तेवर जैसी नए दौर की फिल्मों में भी इनके अभिनय ने भूमिकाओं को सशक्त किया। टेलीविजन पर भी 1986 में बहादुर शाह जफर में अकबर का किरदार आपने निभाया, 1988 में महाभारत में भरत राजा का किरदार आपने निभाया, वहीं 2010 की महाराजा रणजीत सिंह में आपने नरेशन किया। 2014-15 का धारावाहिक पुकार, कॉल फॉर द हीरो जैसी सीरीज से जुड़कर आपने अपने अभिनय कौशल का जौहर दिखलाया। राज बब्बर आज भी सक्रियता के साथ सामाजिक सरोकार रखने वाली गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। राज बब्बर ने अपने अभिनय से कई किरदारों को जीवंत किया है। आप अपनी कला से सेल्यूलाइट पर हमेशा

0: आपने सुना आज का आज के फनकार, जो कि राज बब्बर पर केंद्रित था। आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुति थी रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: हम आकाशवाणी रांची के विविध भारती केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.3 MHz पर। सुबह के 10 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं FM मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने लोकभवन में शिष्टाचार भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को 2 जुलाई को रांची विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले झारखंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया। रांची जिले के बुढ़मू प्रखंड के गुड़गांई पंचायत में परिवहन विभाग द्वारा विशेष ड्राइविंग लाइसेंस कैंप आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ विभाग के सचिव राजीव रंजन ने किया। मौके पर जांच के बाद 53 पात्र आवेदकों को तत्काल लर्निंग लाइसेंस जारी किए गए। रांची नगर निगम ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के होल्डिंग टैक्स का एकमुश्त भुगतान करने पर अधिकतम 10% की विशेष छूट दी जा रही है। इस छूट का लाभ उठाने के लिए अब केवल 8 दिन शेष हैं। करदाता 30 जून तक टैक्स जमा कर सकते हैं। रांची नगर निगम सभागार में अपर नगर आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक हुई। निगम ने जुलूस मार्गों पर साफ सफाई रखने, खराब स्ट्रीट लाइटें ठीक करने और क्विक रिस्पांस टीम को मुस्तैद रखने के निर्देश दिए हैं। रांची पुलिस की SIT ने हिंदपीढ़ी, सुखदेव नगर और कोतवाली क्षेत्रों में छापेमारी कर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री में शामिल 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लगभग 28 ग्राम ब्राउन शुगर, नकदी और वाहन जब्त किए गए हैं। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ श्रावणी मेला महोत्सव में इस वर्ष श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग किया जाएगा। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों द्वारा विकसित एक ई एम्बुलेंस मेले में बीमार और घायल कांवरियों का सहारा बनेगी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 103.3 MHz पर ये आकाशवाणी रांची का विविध भारती केंद्र है। झरोखा के अंतर्गत आइए एक नज़र डालते हैं शेष कार्यक्रमों पर।

अब से थोड़ी देर में 10:05 पर हम लेकर आएंगे आपके लिए एफएम कार्यक्रम एफएम हंगामा। 10:30 पर सुनिए खेल से संबंधित कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। 11:00 सुनिए एफएम मुख्य समाचार और 11:02 पर सुनिए आपके पसंद पर कार्यक्रम आपकी गीत। 11:58 पर आप पुनः सुन पाएंगे एफएम मुख्य समाचार। 12:00 सुनिए हिंदी में समाचार और 12:05 पर कार्यक्रम होगा यादों की महफिल। 1:00 सुनिए सुरीला सफर और 2:00 त्रिवेणी। 2:15 पर दोपहर समाचार होगा और 2:30 पर सदाबहार नगमे में सुनिए फिल्मी गीत। 3:00 हमारे बहनों का कार्यक्रम होगा सखी सहेली। 4:00 सुनिए कार्यक्रम पिटारा। 5:00 कार्यक्रम होगा छाया गीत और 5:30 पर होगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। इसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्मी गीत। 6:05 पर सुनिए तराने नए पुराने, आप पुनः सुन पाएंगे। 6:30 पर सुनिए एक बार फिर आपके फरमाइश पर कार्यक्रम मन भावन। 7:00 हमारे फौजी भाइयों का कार्यक्रम होगा जय माला। 7:45 पर कार्यक्रम पॉप एक्सप्रेस में आप सुन पाएंगे इंद्रधनुष। 8:00 लघु नाटकों का मजा लीजिए हमारे हवा महल कार्यक्रम में और 8:15 पर कार्यक्रम होगा चित्रलोक। 8:45 पर समाचार संध्या और 9:00 कार्यक्रम होगा आपके लिए फिल्म संगीत। 9:30 पर आज की फनकार, 10:00 छाया गीत और 10:30 पर कार्यक्रम होगा ढलती जाए रात। ये थी आज होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा के अंतर्गत।

FM 103.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी रांची का विविध भारती केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:05:45 हुए हैं। हम उपस्थित हैं आज आपके साथ आपकी दोस्त कंचन कार्यक्रम हंगामा को लेकर। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म डबल धमाल से। रितु पाठक और गोरिसा गोगाई की आवाज में आनंद राज आनंद की रचना है और संगीत भी इन्हीं का है।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म टॉम डिक एंड हैरी से हिमेश रेशमिया की आवाज में। संगीत भी इन्होंने ही दिया है और इस गीत को लिखा है सबीर अहमद ने।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी का स्वरूप देव दर्शन थू।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम FM हंगामा अपनी दोस्त कंचन के साथ। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म धूम 3 से। सुनिधि चौहान की आवाज़ में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत है और संगीत प्रीतम का है।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म कॉकटेल से, नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाज में। इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

दोस्तों अब कार्यक्रम में आखिर में सुनिए फिल्म बॉडीगार्ड से, राहत फतेह अली खां की आवाज में और श्रेया घोषाल की आवाज में। शब्बीर अहमद का लिखा गीत है और संगीत हिमेश रेशमिया का है।

0: इसी गाने के साथ एफएम हंगामा का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। अपने दोस्त कंचन को दीजिए विदा, नमस्कार।
1: कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हम आकाशवाणी राज्य के विविध भारती केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.3 MHz पर। और आइए अब प्रस्तुत है खेलों से संबंधित कार्यक्रम क्रीड़ा जगत।

क्रीड़ा जगत कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को अमित का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको बता दें कि आज हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। चर्चा में आज हम बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच संपन्न एकमात्र टेस्ट और तीन वनडे के, जिसमें भारत ने क्लीन स्वीप किया है, इस पे चर्चा करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल राउंड अप होगा, जिसमें इस सप्ताह के मैच की चर्चा होगी। खास खास में आज हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप कैसे बिजनेस के मामले में सबसे कीमती वर्ल्ड कप है, और तीन मिनट का ब्रेक कैसे मोमेंटम किलर साबित हो रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही खेल खबरें तो होंगी ही। दोस्तों, सबसे पहले हम बातचीत कर रहे हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच संपन्न टेस्ट और वनडे सीरीज की। भारत ने एकमात्र टेस्ट मैच एक पारी और 300 रनों से जीती, और ये टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी जीत है रनों के हिसाब से। शुभमन गिल ने 126 रन बनाए इस टेस्ट मैच में। केएल राहुल ने भी शानदार पारी खेली और 100 रन बनाए। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज साबित हुए शुभमन गिल, और अफगानिस्तान की ओर से रहमत शाह ने भी पहली पारी में 60 रन बनाए थे। अगर हम गेंदबाज की बात करें दोस्तों, तो मानव सुधार ने पदार्पण मैच में 33 रन देकर 6 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वाशिंगटन सुंदर ने भी 36 रन देकर 4, और कुलदीप यादव ने 30 रन देकर 3 विकेट लिए। रिकॉर्ड्स की बात करें तो मानव सुधार भारत के लिए टेस्ट पदार्पण मैच में 5 विकेट लेने वाले चुनिंदा गेंदबाजों में वो शामिल हुए। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन वनडे मैचेस भी हुए, जिसमें तीनों मैच भारत ने जीते, भारत ने क्लीन स्वीप किया। पहला वनडे धर्मशाला में हुआ 13 जून को, और इसमें भी भारत ने जीत दर्ज की। शुभमन गिल ने इसमें अर्धशतक मारे और वनडे में 3000 रन उन्होंने पूरे किए। बेस्ट बॉलर की अगर हम बात करें तो गुरनूर बराड ने बहुत अच्छा खेल प्रदर्शन किया, और उन्होंने क्रिकेट प्रेमियों को प्रभावित किया। बारिश की वजह से ये मैच 25-25 ओवर का हुआ, और अफगानिस्तान ने 194 रन बनाए थे, भारत ने 7 विकेट से मैच जीत ली। दूसरा वनडे लखनऊ में हुआ 17 जून को, और इसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 170 रनों से जीत दर्ज की। इसमें कप्तान गिल और ईशान किशन ने अच्छी पारी खेली। तीसरा वनडे मैच चेन्नई में खेला गया, और इसमें भी भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हाँ, एक बात है कि इसमें अफगानिस्तान टीम के कप्तान हसमतुल्ला शाहिदी ने अपने ओडीआई करियर का पहला शतक लगाया। भारत ने पहले ही ओवर में 23 रन बनाकर 22 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। प्रसिद्ध कृष्णा रोहित शर्मा ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। रोहित ने प्रसिद्ध की गेंदों पर 3 कैच लपके। यशस्वी जायसवाल ने इस मैच में 110 रनों की पारी खेली। रोहित शर्मा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और उन्होंने 79 रन बनाए। आइए अब फीफा वर्ल्ड कप राउंडअप की ओर बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप में रविवार का दिन फुटबॉल के इतिहास में दर्ज हो गया। ग्रुप एफ में ट्यूनिशिया और जापान के बीच खेला गया मैच विश्व कप इतिहास का 1000वां मैच रहा। 1930 में उरुग्वे में हुई इस प्रतियोगिता ने करीब एक सदी के सफर में कई ऐतिहासिक पल देखे हैं। फीफा के अनुसार 13 जुलाई 1930 को खेले गए विश्व कप मुकाबले से लेकर 2026 के इस संस्करण तक फुटबॉल का दायरा लगातार बढ़ता गया। इस बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला बनाता है। पराग्वे के मिडफील्डर मिगुएल अल्मिरोन वर्ल्ड कप में मुंह ढकने के लिए लाल कार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। घटना ग्रुप डी के मैच के दौरान घटी, जब मिडफील्ड के पास फाउल के बाद अल्मिरोन और मर्ट मुल्डर के बीच कहासुनी हो गई और अल्मिरोन ने मुंह ढक। नए नियम के अनुसार अल्मिरोन को तुरंत लाल कार्ड दिखाकर बाहर का रास्ता दिखाया गया। नीदरलैंड्स के वर्ल्ड कप में 100 गोल पूरे हो गए, और ऐसा करने वाला वह 8वां देश बन गया। नीदरलैंड्स ने वर्ल्ड कप के इतिहास में सिर्फ चौथी बार एक मैच में 5 गोल किए।
डच टीम के अब टूर्नामेंट के इतिहास में 103 गोल हो गए और इस बीच मौजूदा टूर्नामेंट में 35 मैचों में 100 गोल हो चुके हैं। मैच में नीदरलैंड्स ने स्वीडन को हराया। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील ने अपनी

पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली हैती इस टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया। ग्रुप बी में शीर्ष पर रहते हुए अमेरिका इस टूर्नामेंट के नॉकआउट में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी। पहली टीम मैक्सिको है। अमेरिका ने वर्ल्ड कप में लगातार 2 मैच जीतकर नॉकआउट में प्रवेश किया है। 21 साल के एलेक्स फ्रीमैन वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के अमेरिकी खिलाड़ी बन गए। लुइस रामा के गोल के साथ ही मेजबान मैक्सिको मौजूदा विश्व कप में नॉकआउट में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। मैक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराया। उसने 2 मैचों में 6 अंक हासिल करके ग्रुप ए में शीर्ष पर अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। कनाडा ने कतर को 6-0 से रौंदकर वर्ल्ड कप फुटबॉल के इतिहास में अपनी पहली जीत दर्ज की और नॉकआउट में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली। कतर में 2 खिलाड़ियों को लाल कार्ड दिखाया गया, जिससे उसके खिलाड़ियों की संख्या 9 पर सिमट गई और विपक्षी टीम ने इसी का फायदा उठाकर 6 गोल दाग डाले। जोनाथन डेविड ने दर्शकों का अपार समर्थन पाकर हैट्रिक लगाई। वर्ल्ड कप में कनाडा की ये पहली जीत है। फीफा वर्ल्ड कप के अपने पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-1 से करारी शिकस्त दी। इंग्लैंड ने अपने फुटबॉल इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप के लगातार 3 ओपनिंग मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया। साथ ही साल 2002 के बाद यह पहला मौका है जब इंग्लैंड फीफा रैंकिंग में टॉप 15 में शामिल हो गया और उसने टॉप 15 में शामिल किसी टीम को हराया। इसके साथ ही टॉप टीमों के खिलाफ इंग्लैंड का 9 मैचों का जीत का सूखा भी खत्म हो गया। फ्रांस के कप्तान एम्बापे को विशेष सम्मान के रूप में 58 नंबर की जर्सी भेंट की गई। एम्बापे ने राष्ट्रीय टीम के लिए सर्वकालिक शीर्ष गोल स्कोरर बनने का रिकॉर्ड बनाया। एम्बापे ने इस उपलब्धि पर कहा कि मेरे लिए यह गर्व की बात है और ये एक ऐसा देश है जिसने कई महान खिलाड़ियों को आते जाते देखा है। मेसी का 200वां मैच रहा हैट्रिक एक रिकॉर्ड 10। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अल्जीरिया को 3-0 से हराकर विजयी आगाज किया। मैच के 3 गोल स्टार फुटबॉलर मेसी ने किया और इसी के साथ उन्होंने 10 ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो उनकी कामयाबी को दर्शाते हैं। 200 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले दक्षिण अमेरिकी पुरुष फुटबॉलर बने। 38 साल 357 दिन की उम्र में वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक बनाई। रोनाल्डो को उन्होंने पछाड़ दिया। अर्जेंटीना के लिए वर्ल्ड कप में गोल करने वाले सबसे युवा और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बने। वर्ल्ड कप में 16 गोल किए। सर्वाधिक गोल के जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज के ऑल टाइम रिकॉर्ड की उन्होंने बराबरी कर ली। वर्ल्ड कप में 24 गोल कंट्रीब्यूशन हो गए उनके। महान खिलाड़ी पेले को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, उनके 21 गोल हैं। 6 अलग अलग वर्ल्ड कप खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। रोनाल्डो के बाद 5 अलग अलग वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। लगातार 5 वर्ल्ड कप मैचों में गोल करने वाले अर्जेंटीना के पहले खिलाड़ी हैं। किसी अफ्रीकी देश अल्जीरिया के खिलाफ मेसी की पहली हैट्रिक थी ये। अल्जीरिया वर्ल्ड कप में मेसी के खिलाफ गोल खाने वाली 11वीं टीम बनी। फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप एफ मुकाबले में जापान ने ट्यूनिशिया को 4-0 से शिकस्त दी। यह फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 1000वां मैच था। जापान वर्ल्ड कप के किसी एक मैच में 4 गोल दागने वाली पहली एशियन टीम भी बन गई। यह जापान की टीम की वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। ट्यूनिशिया की टीम नॉकआउट की रेस से बाहर हो गई। जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर 12 साल बाद यानी 2014 के बाद पहली बार नॉकआउट में जगह बनाई। जर्मनी के मैनुअल नेउर वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले गोलकीपर भी बन गए। तो दोस्तों, ये सप्ताह भर की फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल की गतिविधियां थी और अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और खास खास में फीफा वर्ल्ड कप की ही चर्चा करेंगे। इस बार फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक ऐसा आर्थिक महाकुंभ है जो पेरिस ओलंपिक से करीब 4 गुना बड़ा है। दुनिया की लगभग 3/4 आबादी यानी करीब 600 करोड़ लोग इस आयोजन से जुड़ गए हैं।
39 दिन तक चलने वाले इतने बड़े आयोजन को लेकर दुनिया भर के ब्रांड्स पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर की कंपनियां इस वर्ल्ड कप में विज्ञापनों पर 99,000 करोड़ रुपए खर्च

0: कर रही हैं।
1: यह वर्ल्ड कप वैश्विक इकोनॉमी में करीब 3,86,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा और दुनिया भर में 8,00,000 से ज्यादा नई नौकरियां पैदा करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका की अर्थव्यवस्था को होगा, जहां सिर्फ होटल, रेस्टोरेंट और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में ही करीब 41,000 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई होगी, जबकि कुल फायदा 1,62,00,000 करोड़ तक होगा। विज्ञापनों की कीमत आसमान छू रही है। वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान अपना विज्ञापन दिखाने के लिए कंपनियों को लगभग 236 करोड़ रुपए तक की भारी भरकम रकम चुकानी पड़ेगी। टीवी ब्रॉडकास्टर्स की शुरुआती विज्ञापनों के लिए करीब 47 करोड़ रुपए का न्यूनतम पैकेज भी रखा गया है। फीफा को ब्रॉडकास्टिंग स्पॉन्सरशिप और टिकटों की बिक्री से करीब 84,000 करोड़ रुपए की कमाई होने की उम्मीद है, जो 2022 के कतर वर्ल्ड कप के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। इतिहास में ऐसा पहली बार है दोस्तों, जब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही सभी 16 ग्लोबल स्पॉन्सरशिप डील बिक चुकी हैं। आर्थिक रूप से और एक बात और है दोस्तों कि ये प्रवासी खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा मंच बन गया है, जिसमें 292 प्लेयर्स अपनी जन्मभूमि छोड़कर दूसरे देशों के लिए खेल रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 मैदान के साथ साथ खिलाड़ियों की नागरिकता और माइग्रेशन के दिलचस्प आंकड़ों के लिए भी चर्चा में है। 48 टीमों के 1,248 खिलाड़ियों में से 292 खिलाड़ी ऐसे हैं जो उस देश के लिए नहीं खेल रहे हैं जहां उनका जन्म हुआ। टूर्नामेंट में केवल 8 टीमें ऐसी हैं जिनमें कोई विदेशी मूल का खिलाड़ी शामिल नहीं है। माइग्रेशन, पुराने औपनिवेशिक संबंधों और फीफा के बदले नियमों ने वर्ल्ड कप की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी है। आंकड़ों के लिहाज से फ्रांस सबसे आगे है और इस वर्ल्ड कप में फ्रांस में जन्मे 98 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इनमें से 76 खिलाड़ी फ्रांस की जगह किसी दूसरे देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फुटबॉल में यह स्थिति बिल्कुल नई नहीं है दोस्तों। 1930 के पहले वर्ल्ड कप में अमेरिकी टीम में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में जन्मे खिलाड़ी शामिल थे। समय के साथ फीफा ने दोहरी नागरिकता वाले नियमों में कई बदलाव किए। पहले यूथ लेवल पर एक देश के लिए खेलने के बाद टीम नहीं बदल सकते थे, लेकिन 2004 और 2009 में अल्जीरिया की मांग पर नियमों में ढील दी गई। नए नियम के अनुसार यदि किसी खिलाड़ी ने 21 साल से पहले अधिकतम 3 प्रतिस्पर्धी मैच खेले हैं तो आखिरी मैच के 3 साल बाद वह अपनी राष्ट्रीय टीम बदल सकता है। इसके अलावा जन्म, माता पिता या दादा दादी के जन्म स्थान या संबंधित देश में लगातार 5 साल रहने के आधार पर भी टीमों को चुना जा सकता है। जमाल मुसियाला, फोलारेन बालोगन और डेक्लान राइस जैसे खिलाड़ी इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। डिएगो कोस्टा ने भी ब्राजील के लिए फ्रेंडली मैच खेलने के बाद स्पेन को चुना था। हालांकि 2004 में ब्राजील के स्ट्राइकर एल्टन को बिना किसी पारिवारिक संबंध के भारी भरकम रकम देकर कतर की नागरिकता देने की बात भी सामने आई थी। इन नियमों के चलते अब फुटबॉल फेडरेशन सही खिलाड़ियों की तलाश के लिए बेहद आधुनिक और अप्रत्याशित तरीके अपना रहा। अल्जीरिया की टीम में 50% खिलाड़ी ऐसे हैं जो विदेशी मूल के हैं। अपनी टीम में सबसे ज्यादा विदेशी मूल के खिलाड़ी शामिल करने में अल्जीरिया शीर्ष पे है, जिसमें 13 खिलाड़ी हैं, जबकि हैती में 12 ऐसे खिलाड़ी हैं। पहली बार खेल रही कुराकाओ की टीम में 1 को छोड़कर सभी खिलाड़ी डच मूल के हैं। कतर की टीम में 11 खिलाड़ी अलग अलग देशों में जन्मे हुए खिलाड़ी हैं। वहीं मोरक्को ने ब्राजील के खिलाफ मैच के दूसरे हाफ में ऐसे सभी 11 खिलाड़ी उतारे जिनका जन्म मोरक्को से बाहर हुआ है। और अब खास खास में ही एक और बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और ये है 3 मिनट का ब्रेक, जो मोमेंटम किलर साबित हो रहा है। फीफा वर्ल्ड कप में एक नया नियम चर्चा का विषय बना हुआ है। फीफा ने टूर्नामेंट में अनिवार्य हाइड्रेशन ब्रेक की शुरुआत की है। नियम के अनुसार पहले हाफ के 22वें मिनट और दूसरे हाफ के 67वें मिनट के आसपास खेल को रोककर खिलाड़ियों को पानी पीने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाता है। फीफा कहना है कि भीषण गर्मी और उमस से खिलाड़ियों को बचाने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। खिलाड़ी और कोच इन ब्रेक्स को मोमेंटम ब्रेक कर रहे हैं। जब कोई टीम लगातार हमले कर रही होती है और दूसरी टीम

दबाव होता है, तभी 3 मिनट का यह ब्रेक रेस्क्यू की तरह साबित होता है। अमेरिकी महिला टीम की कोच एम्मा हेस ने कहा कि यह ब्रेक उस टीम के लिए वरदान है जो अपना मोमेंटम खो रही होती है। यूएस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के एनालिस्ट माइकल जॉनसन के मुताबिक यह 3 मिनट का ब्रेक ब्रॉडकास्टर्स के लिए अलाउद्दीन का चिराग साबित हो रहा है। वर्ल्ड कप में 104 मैचों के दौरान मिलने वाले यह कमर्शियल ब्रेक बेहद मूल्यवान है। अमेरिकी बाजार में इस 3 मिनट के स्लॉट की कीमत सुपर बाउल के विज्ञापनों जितनी यानी करीब 65 से 85 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज डिफेंडर गैरी नेविल ने भी इसे चोरी छिपे लाया गया विज्ञापन ब्रेक करार दिया है, जिसका फायदा अमेरिकी ब्रॉडकास्टर्स उठा रहे हैं। कुछ खिलाड़ियों ने इसकी आलोचना भी की, जैसे वर्जिल वान डिक नीदरलैंड्स के कप्तान ने कहा कि टीवी पर मैच देख रहे लोगों के लिए यह अच्छा अनुभव नहीं है, जब भी ब्रेक होता है तुरंत विज्ञापन शुरू हो जाते हैं और हर मैच में इसकी अनिवार्यता सिर्फ कमर्शलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। नेस्टर लॉरेंजो कोलंबिया के कोच कहते हैं कि कोपा अमेरिका में जब तापमान 35 डिग्री था तब हाइड्रेशन ब्रेक समझ में आता था, अब इसकी जरूरत नहीं है। शुरुआत में कोच और खिलाड़ियों की बातचीत दिखाई जाती थी, लेकिन अब सिर्फ विज्ञापन ही चलते हैं। स्पेनिश मिडफील्डर मिकेल मेरिनो ने कहा कि कुछ मैचों में इनकी जरूरत होगी और कुछ में बिल्कुल नहीं। जिन स्टेडियम में छत बंद है और एसी है वहां खेल को रोकना सही नहीं है। कुल मिलाकर स्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन इससे एक बात तो साबित हो गया दोस्तों कि इस मोमेंटम किलर से ब्रॉडकास्टर्स को काफी फायदा हो रहा है। तो और अब हम आपको रूबरू कराते हैं कुछ खास खेल खबरों से। वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और रिकॉर्ड 11 गेंदों में अर्धशतक लगाने का बन गया। इससे पहले 2006 में श्रीलंका के कौशल्य वीरागने ने 12 गेंदों में अर्धशतक लगाए थे। ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका ए के खिलाफ जब वैभव खेल रहे थे तब भारत का प्रोजेक्टेड स्कोर 935 था, हालांकि टीम इंडिया ए 377 रनों तक पहुंच गई। टेस्ट, टी20 और वनडे के फॉर्मेट तो बदले, लेकिन वैभव का अंदाज नहीं बदला। वैभव का 2024 में अंडर 19 टेस्ट में 58 गेंद पर शतक का रिकॉर्ड है। यह किसी भारतीय का सबसे तेज शतक है। रिकॉर्ड इंग्लैंड के मोइन अली के नाम था। 2025 में 35 गेंद में आईपीएल में शतक बनाया, इसमें रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था। 36 गेंदों के साथ तीसरे स्थान पर वैभव रहे। लिस्ट ए में सबसे तेज 150 रन का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा 72 छक्कों का रिकॉर्ड भी वैभव सूर्यवंशी ने बनाया। भारत ने टीमों की ट्राई सीरीज के फाइनल में मेजबान श्रीलंका को 66 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में युवा भारतीय टीम ने 377 रन बनाए। सीरीज में पहली बार 350 का आंकड़ा भारतीय टीम ने पार किया। जवाब में श्रीलंका की टीम 47.1 ओवर में 311 रन पर सिमट गई। 15 साल के युवा सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम की जीत के हीरो रहे। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में 10 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 94 रनों की आतिशी पारी खेली। प्लेयर ऑफ द मैच वैभव ने केवल 11 गेंद में लिस्ट ए क्रिकेट की सबसे तेज 50 लगाने का रिकॉर्ड बनाया। दाम्बुला के मैदान पर मेजबान टीम ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया था, लेकिन वैभव और प्रियांश की ओपनिंग जोड़ी ने 9 ओवर के भीतर 132 रनों की साझेदारी कर विरोधी कप्तान के इस फैसले को गलत साबित। इसके बाद कप्तान तिलक वर्मा ने पहले ऋतुराज गायकवाड़ और फिर कुमार सागर के साथ अर्धशतकीय साझेदारियां निभाकर टीम को 300 रनों के करीब पहुंचाए। अंत में बिपराज निगम और अनुकूल राय ने मजबूत फिनिश दिखाते हुए भारतीय टीम को 377 के बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी करने उतरे 10 में 7 बल्लेबाजों ने 25 से अधिक का स्कोर बनाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत खराब रही। टीम ने पावर प्ले के भीतर 75 रन पर अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गंवा दिया। हालांकि सदीरा समरा विक्रमा ने अर्धशतक लगाकर टीम को चेज करने में थोड़ी दूर तक साथ रखा, लेकिन उनके पवेलियन लौटने के बाद टीम लगातार अंतराल पर विकेट गंवाती रही और लक्ष्य से काफी दूर हो गई। बानुजा सहान
62 रन बनाए और टॉप स्कोरर रहे। टीम के कुल 9 बल्लेबाज 15 रन के आंकड़े तक पहुंचे, लेकिन सिर्फ 2 ने ही अर्धशतक लगाए। वैभव ने खेली सीरीज की सबसे बड़ी पारी। पहली बार टीम इंडिया के लिए 50 ओवर के फॉर्मेट खेल रहे वैभव इस ट्राई सीरीज के लिए ग्रुप स्टेज में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे थे। 4 ग्रुप

मैचों में उनके बल्ले से सिर्फ 117 रन निकले थे। इस दौरान उन्होंने हर बार दहाई का स्कोर किया, लेकिन एक बार भी 50 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सके थे। हालांकि सीरीज की सबसे बेहतरीन पारी उन्होंने फाइनल के लिए बचा रखी थी। उन्होंने 100 ओवर के मुकाबले का नतीजा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से शुरुआती 9 ओवर में तय कर दिया। फाइनल में खेले गई 94 रन की पारी की बदौलत उन्होंने सीरीज का अंत 5 मैचों में 200.95 की स्ट्राइक रेट और 42.20 की औसत के साथ 211 रन बनाकर किया। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया। 14 जुलाई से 3 मैच की सीरीज होगी। बुमराह 3 साल बाद इस फॉर्मेट में खेलेंगे। बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए 15 सदस्यीय वनडे टीम की घोषणा की है और सबसे चौंकाने वाला फैसला युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल को बाहर रखना है। उन्होंने अपने पिछले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 110 नाबाद रन बनाए थे और यह उनके 6 मैच के वनडे करियर का दूसरा शतक था। दरअसल टीम इंडिया 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए अपने सबसे मजबूत टीम उतार रही है। इसी रणनीति के तहत विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल की वनडे स्क्वाड की वापसी हुई है। अंतिम पारियों में शतक जड़ चुके 3 बैटर भी इस टीम में शामिल नहीं है। भारतीय टीम में इस समय बल्लेबाजों की बहुत कड़ी प्रतियोगिता है और अपनी अंतिम वनडे पारी में शतक जमा चुके 3 बल्लेबाज टीम का हिस्सा इस बार इंग्लैंड के खिलाफ नहीं है। यशस्वी के अलावा ऋतुराज गायकवाड और संजू सैमसन ने भी अपनी पिछली वनडे पारियों में शतक जड़े थे, लेकिन वे टीम में जगह नहीं बना सके। कोहली को मैदान पर उतारने के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। अगले हफ्ते सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कोहली का फिटनेस असेसमेंट होगा। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिट नहीं है, इसलिए उन्हें टीम में जगह नहीं मिली है। बुमराह 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद पहली बार वनडे खेलेंगे। वहीं पिछली 3 घरेलू सीरीज से बाहर रहे अक्षर की वापसी हुई है। बुमराह ने तेज गेंदबाज प्रिंस यादव की जगह ली, जबकि अक्षर ने स्पिनर हर्ष दुबे को रिप्लेस किया। ओवल में खेले गए दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 253 रन के विशाल अंतर से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। 463 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लिश टीम दूसरी पारी में महज 209 रन पर सिमट गई। पांचवे दिन 182/5 विकेट से आगे खेल रहे इंग्लैंड ने मात्र 1 घंटे के भीतर ही घुटने टेक दिए। जीत के हीरो तेज गेंदबाज मैट हेनरी रहे, जिन्होंने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए मैच में 11 विकेट चटकाए। कार्यवाहक कप्तान जो रूट का संघर्ष भी नाकाफी रहा। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 391 और दूसरी पारी में 362 रन बनाए थे। इंग्लैंड पहली पारी में 291 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की हार इतनी जल्दी हुई कि सरे काउंटी ने दर्शकों को टिकट का 50% रिफंड करने का ऐलान किया। महिला नेशंस का फाइनल में भारतीय हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर खिताब जीत लिया। इसके साथ ही भारत ने अगले सीजन की FIH प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली। मैच में भारत के लिए नवनीत कौर ने 4th और सुनेलिता टोप्पो ने 15वें मिनट में गोल दागे। पूरे टूर्नामेंट में अजय रहने वाली भारतीय टीम का यह दूसरा नेशंस कप खिताब है। दीपिका 6 गोल के साथ संयुक्त शीर्ष स्कोरर रही। इस शानदार सफलता हॉकी इंडिया ने हर खिलाड़ी को 3 लाख और सपोर्ट स्टाफ को 1.5 लाख रुपए की नाम देने की घोषणा की है। दोस्तों, पर्सनालिटी में आज हम बात करेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की, जिन्होंने हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय महिला T20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने रविवार को इतिहास रच दिया। साउथ अफ्रीका खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में उतरती ही वे 200 इंटरनेशनल T20 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गईं। पुरुष क्रिकेट में भी यह मुकाम किसी ने अभी तक नहीं छुआ है। महिला क्रिकेट में हरमन के बाद सर्वाधिक इंटरनेशनल T20 न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स ने खेले हैं, जबकि पुरुषों में सर्वाधिक T20 आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने खेले हैं 162 मैच। हरमन इस बार अपना 10वां T20 वर्ल्ड कप खेल रही हैं। साल 2009 में जब वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आई, तब महिला क्रिकेट की स्थिति आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। उस समय महिला खिलाड़ियों के पास न तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थे और न ही
उनके सभी मैचों का टीवी पर प्रसारण होता था। सुविधाएं भी ना के बराबर थी, लेकिन अपनी जिद और मेहनत के दम पर हरमनप्रीत ने हर चुनौती को पार किया। शुरुआत से ही हरमनप्रीत को गेंद को जोर से हिट करना और बाउंड्री के पार भेजना पसंद था। उनके आदर्श वीरेंद्र सहवाग थे और उनकी आक्रामकता हरमनप्रीत के खेल में साफ नजर। 2017 के वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी 171 रनों की नाबाद तूफानी पारी ने

0: भारतीय महिला क्रिकेट की दिशा ही बदल दी और इस पारी ने उन्हें रातों रात पूरे देश की रोल मॉडल बना दिया। 37 साल की हरमनप्रीत विदेशी T20 लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी बनी थी। भारत में वीमेंस प्रीमियर लीग में भी उन्होंने मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए 4 सीजन में 2 बार अपनी टीम को चैंपियन बनाया। हाल ही में कुछ हफ्ते पहले उनके संन्यास के बारे में पूछा गया था तो उनके चेहरे पर हैरानी थी। उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। 2016 में कप्तान बनने के बाद हरमनप्रीत ने भारतीय टीम को नई पहचान दी। उनकी कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट के सबसे साहसिक फैसलों में एक लिया गया, मिताली राज को प्लेइंग 11 से बाहर करना। बॉलिंग कोच आविष्कार सालवी के मुताबिक युवा खिलाड़ियों को निखारने में हरमन का कोई जवाब नहीं है। हरमन के नेतृत्व में टीम को निडर क्रिकेट खेलना सिखाया गया। कई बार उनका गुस्सा भी चर्चा में रहा, लेकिन हरमन कह चुकी है कि आक्रामकता उनके स्वभाव का हिस्सा है। और दोस्तों, इसी के साथ अब हमारा यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं प्रभु शरण, और इसी के साथ अपने दोस्त अमित को विदा दीजिए। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। हम विज्ञापन प्रसारण सेवा के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे FM मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर हुई इस बैठक में दोनों राज्यों के वित्तीय प्रबंधन और विकास पर चर्चा हुई। बैठक में बिहार के विभाजन के बाद के बजटीय अनुभवों पर भी सकारात्मक बातचीत हुई। राज्य में बेटियों को बचाने और अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के लिए रांची में PC एंड PNDT एक्ट के तहत राज्य स्तरीय बैठक हुई। इसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों और डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया गया। पश्चिमी सिंहभूम में भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के गोदाम में लापरवाही के कारण लाखों रुपए मूल्य का नमक बर्बाद होने का गंभीर मामला सामने आया है। राज्य के कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुआ ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि सरकारी संपत्ति की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति ने धनबाद सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। समिति के सभापति सरयू राय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया। CPI रांची के मनोचिकित्सा सामाजिक कार्य विभाग ने खूंटी में मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या जोखिम प्रबंधन पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस शोध परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता बढ़ाना है। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे के बाद उग्र ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर करीब 2 घंटे तक सड़क जाम कर हंगामा किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 11:58 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे FM मुख्य समाचार।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

हम विज्ञापन प्रसारण सेवा के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके गीत। आपके गीत कार्यक्रम में गीत गाया पत्थरों ने, इस फिल्म का गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1964 में यह फिल्म बनी थी। हम आपको सुनवाते हैं आशा भोसले का गाया हुआ ये गीत। फरमाइश करने वाले श्रोताओं के नाम हैं गोंदा टाउन कांके रोड रांची से रमेश प्रसाद जायसवाल, भीम सिंह, वीर भगत, रघु सिंह, विकास यादव, संजय महतो और उनके साथी, रहमानिया मोहल्ला से तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नजहत जहानाज, वसीम अकरम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, अमन अकरम और उनके परिवार के सभी सदस्य, बरकाकाना से इफ़ज़ाल ताश, शाहिन सुल्ताना और मोहम्मद अफजाल मलिक। तो आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है सहरा, आवाज लता मंगेशकर की। सुनना चाहते हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, प्रमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। आप हैं आदर्श नगर मैलोट से मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा। सीसीएल बरकाकाना से रविंद्र वर्मा, अमन वर्मा, रिया उर्वशी, बेबी सोना और बाबू आर के वर्मा। आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे थे फिल्म सहरा का गीत, और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म नूरी का गीत, जिसे सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता बंधु। पुराना श्रोता संघ मगनपुर से अमजद अली, अब्बास आलम और उनके परिवार के सभी सदस्य, बाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा, आप हैं टावर चौक गुमला से एस एम जावेद, शगुप्ता, अंजुम और उनके परिवार के सभी सदस्य, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और विक्रांत मोदी।

और अब कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। फिल्म का नाम है स्वीकार किया मैंने। सुना चाहते हैं बिहारी कॉलोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम और वली डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार और अकरम आसमा बेलदार। आप हैं बरकाकाना से भानु पासवान, अशोक पासवान, सुधा, मंजू, रेखा, सुनीता और पूनम। आप हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंवाणकर, सरिता गंवाणकर, सिद्धांत गंवाणकर और प्रिंस एकांश। आइए सुनते हैं ये गीत उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में। इस गीत को लिखा है विट्ठल भाई पटेल ने और साथ में है निदा फाजली।

कार्यक्रम का अगला गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं। कार्यक्रम का अगला गाना सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता बंधु। आप हैं सीसीएल बरकाकाना से रविंद्र वर्मा, अमन वर्मा, रिया, उर्वशी, बेबी सोना और बाबू आर के वर्मा। आप हैं किशोरगंज चौक से मोहन कुमार पाठक, बिरनी गिरिडीह से समीर कुमार वर्मा और उनके परिवार के सभी सदस्य। आप हैं बरकाकाना से इफ्जाल ताज, शाहीन सुल्ताना और मोहम्मद अफजाल मलिक। आप हैं जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, चांदनी नाज और उनके परिवार के सभी सदस्य। तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार का गाया हुआ ये गाना।

आवाज की दुनिया के दोस्तों, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम। फिल्म संगीत के फरमाइशी कार्यक्रम में हम कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं, जिसे सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता बंधु। आप हैं बक्सर विहार से शरफुद्दीन अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी, जेल रोड बक्सर से नरेंद्र यादव और उनके साथ साथी। आप हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल महतो और उनके परिवार के सदस्य। और आप हैं पुराना श्रोता संघ मगनपुर से अमजद अली, अब्बास आलम और उनके परिवार के सभी सदस्य। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना। कार्यक्रम का ये अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में, मेरी सांसों की डोर बस दो ही ख्वाहिशों पर टिकी है, सांस चले तो तुम साथ हो, सांस रुके तो तुम पास हो।

कैसी लत लगी है तेरे दीदार की, बात करो तो दिल नहीं भरता, ना करो तो दिल नहीं लगता। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, अब हम कार्यक्रम का अगला गाना आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इस गीत को गाए है किशोर कुमार ने, फिल्म का नाम है कटी पतंग। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप जो गीत सुन रहे थे हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आप सुन रहे थे फिल्म का नाम कटी पतंग। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार, श्वेता भगत, किशु वासु और अर्णव आनंद। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं उसे सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता बंधु। आपने सुनना चाहा है फिल्म जूली का गीत। पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम है गांव कैरो से गुरुदर्शन, लाल चलोत्रा, सुनीता, सम्मी, रजनी, आकाशदीप, आनंद और उनके साथी हिनू रांची से प्रवीण कुमार और उनके साथी, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी नाच, गांधी चौक पंजाब से आप हैं हरदेव मिका, बलविंदर वीरक, जीतेक वीरक और मिका वीरक, औरंगाबाद से आप हैं राजेश सामरे पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश।

आवाज की दुनिया के दोस्तों, अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना। इस गीत को सुनना चाहते हैं कोल सिटी बरका काना से इफ्जाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक। इसी गीत की फरमाइश करते हैं ग्राम बगबड़ुआ पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका और उत्कर्ष नेताम। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर और तारिणी ठाकुर। तो आइए सुनते हैं अमित कुमार का गाया हुआ ये गीत। फिल्म का नाम है तेरी कसम।

और अब कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसे सुनना चाहते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास मणिकपुरी, दतरंगी से भागवत वर्मा, कनेरा मोहल्ला पटियाला से आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता, चिपाकाला बड़का गांव से बाबूलाल ठाकुर, साबिया ठाकुर, त्रिलेश्वरी ठाकुर, भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर और उनके परिवार के सभी सदस्य। आप हैं चांदनी चौक बानापीरी से नाजिम अंसारी, मुजीम अंसारी और मुजाहिद अंसारी। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर फिल्म निकाह का गीत आपके लिए लेकर आए हैं। इसे लिखा है हसन कमाल ने, संगीत से संवारा है रवि ने और गाया है सलमा आगा ने।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके गीत। ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। 11:58 होने को हैं। अब आप सुनेंगे एफएम मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। इस कड़ी में झामुमो के संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज देश उन्हें नमन कर रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। रांची पुलिस की एसआईटी ने हिंदपीढ़ी, सुखदेव नगर और कोतवाली क्षेत्रों में छापेमारी कर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री में शामिल 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि इनके पास से लगभग 28 ग्राम ब्राउन शुगर, नकदी और वाहन जब्त किए गए हैं। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा वासुकीनाथ श्रावणी मेला महोत्सव में इस वर्ष श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग किया जाएगा। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों द्वारा विकसित एक ई एम्बुलेंस मेले में बीमार और घायल कांवरियों का सहारा बनेगी। राज्य में मॉनसून की सक्रियता बढ़ने से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। तेज हवाओं की चेतावनी को देखते हुए विभाग ने पलामू प्रमंडल सहित 14 जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची में विश्व ओलंपिक दिवस पर खेल उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग से भारतीय सेना के गुरुलाल सिंह और महिला वर्ग से ममता कुमारी विजेता बनी। पूर्व ओलंपियन मनोहर टोपनो ने ओमान में अंडर-18 एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लौटे झारखंड की 4 प्रतिभावान खिलाड़ियों को विशेष रूप से सम्मानित किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 1:10 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
0: आप सुन रहे थे एफएम मुख्य समाचार।

0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और साइबर खतरे तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष की नागरिकों की प्रतिबद्धता से उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, आदि खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कोयल ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचि

0: दिल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 254.40 पर जबकि निफ्टी 90 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज अभिनेता राज बब्बर साहब का जन्मदिन है। हम विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और आज इस कार्यक्रम में यानी यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने राज बब्बर की फिल्मों से ही कुछ गीत आपके लिए चुने हैं।

सुनिए इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है निकाह। आवाजें महेंद्र कपूर और सलमा आगा की। गीत को लिखा है हसन कमाल ने और धुन बनाई है रवि ने।

महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाजों में अभी अपनी फिल्म निकाह का ये गीत सुना। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, फिल्म का नाम याराना, गीत रचना रानी मलिक की और धुन अनु मलिक की है।

0: कविता कृष्णमूर्ति की आवाज थी और फिल्म का नाम था याराना।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में इंदिवर का लिखा गीत, युगल स्वर सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की, फिल्म का नाम है प्रेम गीत।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं वर्मा मलिक के बोल, उत्तम जगदीश का संगीत, फिल्म का नाम है वारिस और गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह।

0: मनी पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: महेंद्र कपूर की आवाज, फिल्म का नाम आज की आवाज, गीतकार हसन कमाल, संगीतकार हैं रवि।

0: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय
1: कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

दुनिया में क्या है, और इस दुनिया में क्या है दीद के काबिल भला।

0: वाह वाह प्रभात वाह, बहुत
1: अरे भाई तालियां उनके लिए,
0: मजा आ गया, कमाल कर दिया, थैंक यू।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सुनिए निदा फाजली की रचना, मनहर उदास की आवाज, उषा खन्ना का संगीत और फिल्म का नाम आप तू ऐसे ना थे।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, आगे इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जुगल किशोर तिलक राज की संगीत निर्देशन में लीजिए हम आपको सुनवाते हैं एमजी हशमत का लिखा गीत, युगल स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की ये फिल्म है भीगी पलकें।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चलकर

0: के व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए कैसे हैं दोस्तों, आपके शहर में बारिश हुई या नहीं, या अभी भी आप धूप में बहुत परेशान हैं? बताइए आपके शहर में चिलचिलाती धूप है या फिर हल्की फुल्की बूंदे? लेकिन हमारे कार्यक्रम में आज हल्की फुल्की बारिश है और साथ में है प्यारी सी हमारी छतरी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में छतरी केवल धूप या बारिश से बचने का साधन नहीं होती है ना, बल्कि ये धैर्य, सुरक्षा और दूरदर्शिता का एक गहरा दार्शनिक प्रतीक होती है। क्यों, सही है ना? ये हमें सिखाती है कि तूफानों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे बचने की तैयारी जरूर की जा सकती है। जैसे छतरी बारिश

में या चिलचिलाती धूप में खुद उस धूप को सहती है, बारिश को सहती है, तूफानों को सहती है, लेकिन हमें सुरक्षित रखती है। ठीक वैसे ही दोस्तों, हमारे जीवन में आने वाले संकटों और चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मबल भी एक ढाल की तरह काम करता है, यानी एक छतरी की तरह काम करता है। तो आज का ही सफर हम शुरू करते हैं इसी छतरी के नाम। तो सुरीला सफर में आप मेरे साथ हैं ना? अरे बताइए, मेरे साथ हैं भी कि नहीं? देखिए ना, मुझे अकेले इस सुरीले सफर में निकलने से डर लगेगा। आप अगर मेरे साथ हैं तो ये सफर यूं ही आसान हो जाएगा, जैसे हर बार होता है। तो बताइए, लिखिए फटाफट कि आप इस सफर में मेरे साथ हैं, है ना? और हाँ, अपनी छतरी लेना मत भूलिएगा। हो सकता है कहीं बारिश हो, कहीं चिलचिलाती धूप हो, कहीं बहुत बुरी गर्मी हो, तो हम परेशान न हो जाएं और ये सफर सुरीला ही बना रहे। इसलिए आज का ये सुरीला सफर हम शुरू करते हैं। हाँ, हमारी आज की इबारत, हमारे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि हमने इबारत नहीं लिखी, ऐसा नहीं है। आज जो हमने इबारत लिखी है वो ये है कि दशकों तक मुख्य धारा में हिंदी फिल्मों में गीतों के माध्यम से बारिश के साथ रोमांस किया गया और इन गानों ने हमें छाता जरूर दिया, यानी हर फिल्मी गाने में ये छाता जरूर हमें मिला। और छतरी का ये उपयोग इसलिए किया गया कि फिल्मों में बारिश के दौरान नायक और नायिका एक छतरी के नीचे आकर उनके बीच का प्यार हमें दर्शाया जाता है, उनके बीच की केमिस्ट्री से हमको अवगत कराया जाता है, इसलिए इन छतरियों का इस्तेमाल किया गया। और साथ ही डांस सीक्वेंस में रंग बिरंगी छतरियों का इस्तेमाल करके वो जो सेट है उसे आकर्षक बनाया जाता है। और बहुत से गीतों में बारिश होते समय छतरियों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कुछ गीत ऐसे हैं जहां बारिश नहीं थी लेकिन नायक और नायिका के बीच छतरी थी। तो आज का ये कार्यक्रम उन्हीं छतरियों के नाम, आपके नाम, इस गीत के साथ।

0: ना
1: भरों इंतजार आएगा वो दिन बड़ी देर है
0: कब आएगा। अरे

तो सुरीला सफर में तो हमने बारिश की शुरुआत कर दी है। आपके शहर में बारिश हुई या नहीं आप हमें बताने वाले हैं, और कितना मजा आता है ना इस गीत को। जब आपने देखा होगा तो पता चला होगा कि पूरे गाने में नायिका छतरी को खोलने नहीं देती है, और अंत में जब नायक छतरी खोलता है तो छतरी उड़ जाती है। छतरी उड़ गई, कितने मजे में वो कहते हैं उड़ जाने दे, है ना। तो हमारे श्रोताओं ने भी आज बहुत कुछ लिखा है छतरियों पर और इस रिमझिम बारिश पर। एक श्रोता लिखती है कि सदियों से रिमझिम गिरती बूंदे और हिंदी सिनेमा का रोमांस एक दूसरे के पूरक रहे हैं। दरअसल बारिश में भीगते हुए जब एक ही छाते के नीचे नायक और नायिका करीब आते हैं तो ये सिनेमा के सबसे खूबसूरत और यादगार दृश्यों में से एक बन जाता है। टिप टिप गिरती बूंदों की धुन और छतरी की ओट में पनपता ये भीगा हुआ प्यार दर्शकों के दिलों में आज भी एक मीठी सी हलचल पैदा कर देता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे पर्दे पर मानसून और मोहब्बत का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। जब जब रुपहले पर्दे पर बादल गरजे हैं तब तब प्रेम की नई परिभाषाएं लिखी गई हैं। इस भीगे हुए रूमानी माहौल को मुकम्मल बनाने में छतरी ने हमेशा एक बेहतरीन माध्यम का काम किया है। बारिश की बौछारों के बीच एक ही छतरी के नीचे सिमटे नायक नायिका के बीच की दूरियां पल भर में मिट जाती हैं। ये छोटी सी छतरी केवल पानी से बचाने का साधन नहीं बल्कि उनके दिलों को करीब लाने और सुलगते हुए जज्बातों हवा देने का एक जादुई जरिया बन जाती है। पुराने दौर के श्वेत श्याम गानों से लेकर आज के रंगीन दौर तक छतरी के साये में पनपा ये रोमांस दर्शकों के दिलों को आज भी गुनगुनाता है। बहुत सुंदर। तो हम आपको बता दूं ये गाना फिल्म दो झूठ से हमने लिया था। किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजें थी, एमजी हशमत के बोल थे और शंकर जयकिशन की धुन थी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि साउथ इंडिया विशेषकर केरल में बारिश से बचने के लिए छतरी के बजाय पारंपरिक बांस और ताड़ के पत्तों से बनी एक विशेष टोपी नुमा छतरी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे ओलाकुड़ा कहा जाता है। बहुत सुंदर जानकारी, इसके लिए शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बरसात से छाती का और छाती से रोमांस का बड़ा घनीभूत रिश्ता है, खासकर हमारी हिंदी फिल्मों में। छाता प्रतीक है साथ चलने का, हिस्सेदारी का, देखभाल का, साथ ही सुरक्षा और छाया देने का भी। ये जीवन में प्रेम का प्रतीक भी है। एक छाता कैसे दो प्रेम करने वालों को नजदीक ला देता है, ये फिल्म श्री 420 के गाने में आप देख सकते हैं। पुराणों में कथा है कि परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि की कड़ी तपस्या से पसीज कर भगवान सूर्यदेव ने उन्हें जूते और छाता भेंट किए थे। तरह तरह के रंगीन छातों से लेकर काले छातों तक मन के पिटारे में छातों की बहुत सी यादें आज भी कैद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश और छाती का रोमांस बेहद जादुई होता है। जहां तेज हवा के झोंके छाते को उड़ा ले जाते हैं और दो दिलों को एक दूसरे के करीब लाते हैं, तेज हवा में जब छाता उल्टा होता है तो पल भर के लिए सारी दुनिया रुक जाती है। बारिश और छतरी का यह रिश्ता सिखाता है कि जब तक मौसम सुहाना है तब तक साथ खूबसूरत है, लेकिन जब तेज हवा जैसी मुश्किलें आती हैं तो साथ निभाने के लिए लचीला होना बहुत जरूरी है, वरना रिश्ता टूट सकता है। क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है आप लोगों ने। मैं हमारे सभी श्रोताओं की उनकी लेखनी की बहुत कायल हूं। तो चलिए अगला गीत उन्हीं जज्बातों को लेकर सुनते हैं जहां सुलगते हुए जज्बात हैं और नायक और नायिका एक ही छतरी के नीचे थोड़ा सा करीब हैं।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि नहीं मंदाकिनी जी, हमारे यहाँ तो सूर्यदेव अधिक तेज दिख रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बारिश का दूर दूर तक कोई पता नहीं है, पर आज छतरी वाले गीतों की फुहारों से मन को ठंडक जरूर मिलेगी। एक श्रोता लिखते हैं कि बरसात में छतरी टोकनी आदि से बचते बचते वो साइकिल पर वो टोकनी तेज बरसात, दोस्तों के साथ घूमना एक अलग ही आनंद होता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि पुणे में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, और एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं हुई बारिश और अभी कोई आसार नजर भी नहीं आ रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि जून में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है हमारे शहर में। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में अभी तक ज्यादा बारिश नहीं हुई है। एक श्रोता ने लिखा है कि छतरी तो हर मौसम में काम आती है, चाहे गर्मी हो या बारिश, हसीनों को छतरी लेकर घूमने में ज्यादा मजा आता है, वो भी अलग तरह की। हमारे भोपाल में तो बारिश हो रही है और प्रकृति ने अपनी छटा बिखेर दी है, मौसम बहुत सुहाना हो गया है, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम चेरापूंजी गए थे इतनी तेज बारिश, खूब हवा में हमारी छतरी भी उड़ गई थी। और एक श्रोता का लिखना है कि एक तरफ सुरीला सफर शुरू हो गया और बारिश के गीतों से, तो दूसरी तरफ तेज बारिश की शुरुआत भी हो गई है, दोनों एक साथ हो गए हैं, क्या कहने, क्या बात है। जी तो हमने जानना चाहा था कि आपके शहर में इस वक्त बारिश हो रही है, या बारिश आसपास एक दो दिनों में हुई या नहीं, या कोई आसार नजर आ रही है कि नहीं, तो हमारे श्रोताओं ने हमें बताया है। और आप ये भी बताइए कि सुरीला सफर में आज आप हमारे साथ चल तो रहे हैं ना छतरी लेकर। तो अब आज के दो सवाल बिल्कुल सीधे साधे कि छतरी से जुड़ी कोई बात है। वैसे तो आपने छतरी को लेकर बहुत सारी बहुत ही खूबसूरत इबारत पेश की है, लेकिन आपके जीवन में छतरी से जुड़े कुछ किस्से, छतरी उड़ गई जैसा कुछ लोगों ने लिखा, छतरी ऊपर की ओर मुड़ जाती है कई बार, आप भीग जाते हैं, छतरी खो जाती है कई बार, आप भूल जाते हैं और तेज झमाझम बारिश में आपको भीगना पड़ता है, या ऐसा कोई किस्सा कि तेज बारिश थी, आप छतरी को लेकर साथ थे, छतरी के साथ ही, और चाय की टपरी आई और आप अचानक रुक गए और चाय पीने लगे, ऐसे किस्से भी आपकी जिंदगी में होंगे बहुत सारे, तो उन किस्सों को हमारे साथ साझा कीजिए ना। और हाँ, आपने किन किन गानों में छतरी को देखा है बताइएगा, कहीं भी, जरूरी नहीं है कि वहां बारिश ही हो रही हो, लेकिन छतरी को दर्शाया गया है उन गानों में, चाहे थोड़ा सा कहीं एक कोने में आपने देखा होगा कि दूर बहुत सारी लड़कियां छतरियां लेती हुई जा रही हैं, इस तरह के भी दृश्य फिल्मों में दिखाए जाते हैं और आगे नायक नायिका अपनी बात कह रहे होते हैं। तो कोई भी गाना जो आपको याद हो कम से कम शब्दों में हमें लिख भेजिए जहां छतरी का इस्तेमाल किया गया है, हम तो सुनाई रहे। वैसे एक खुशी की बात यह है कि जैसे ही हमने आपको छतरी का क्लू दिया, आपने सभी गाने लिख दिए धड़ाधड़ धड़ाधड़, और हमारे एक श्रोता के गाने तो हमारे से बहुत ज्यादा मिल भी रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं कि आपकी और हमारी पसंद, आपकी और हमारी प्लेलिस्ट मिलने लगी है थोड़ा थोड़ा। आगे बढ़ते हैं सुरीले सफर में, वही देखते हैं आगे मौसम कैसा है। गीता दत्त और मोहम्मद रफी साहब हैं काला बाजार में, शैलेंद्र की रचना है और सचिन देव बर्मन की धुन है।

हमारे श्रोता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस वर्ष बारिश कम होने के आसार हैं और यदि होगी भी तो जलते तवे रूपी धरती पर पानी के छींटों के समान होगी। वैसे भी इस वर्ष पहले के वर्षों की अपेक्षा कुछ बारिश कम होने की भविष्यवाणी भी की गई है। नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, आशा रखिए, विश्वास रखिए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप निराशा के बादल अपने आसपास मंडरा लें। आपको आशा रखनी है और निराशा बिल्कुल नहीं रखनी है। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर हर साल नई छतरी खरीदनी पड़ती है, कहीं भी जाते हैं तो भूल जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म श्री 420 का जो गीत आपने सुनवाया, इस फिल्म का राज कपूर और नरगिस जी का छाता लिए पोस्टर बहुत ही प्रचलित हुआ था और ये पोस्टर हमने अपनी दुकान में लगवा लिया था। क्या बात है।

एक श्रोता ने लिखा है कि राज कपूर और नरगिस की वो आइकॉनिक छत्री प्यार हुआ इकरार हुआ वाले गीत की आज भी हर उस दिल की धड़कन है जो पहली बार मोहब्बत के दरिया में उतरता है। वो छत्री धूप छांव से बचाने का कवच नहीं बल्कि दुनिया की नजरों से दूर अपना एक छोटा सा मुकम्मल संसार बसाने का जरिया बन जाती है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर के सभी श्रोता प्रेमियों को नमस्कार है और उत्तर भारत तो अभी तक तप रहा है, यद्यपि मानसून ने दस्तक दे दी है छिटपुट बारिश करके, और आज के गीत भी बारिश वाले ही होंगे, तो बरसात से भीगने से बचने के लिए छतरी जरूरी है। बिल्कुल, आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है और यकीनन आपके कुछ गीत हमारे गीतों से, हमारी पसंद के गीतों से मिलते हैं। शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश में नायक नायिका छतरी पकड़कर गाते हुए प्यार का इजहार करते हुए सुंदर दृश्य, ऐसे गीत आज सुरीला सफर में है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश रोमांस और छाती के संगम को दर्शाती आज की छोटी सुंदर सी इबारत है। फिल्मों में बारिश हमेशा से प्रेम और भावनाओं का खूबसूरत प्रतीक रही है। रिमझिम फुहारों के बीच फिल्माई दृश्यों में छाता केवल बारिश से बचने का साधन नहीं बल्कि दो दिलों को करीब लाने वाला एक प्यारा सा माध्यम बना है। और बारिश में छाती के साथ फिल्माए गए अनेकों रोमांटिक फिल्मी गाने हैं, प्यार हुआ इकरार हुआ जैसा कि आपने बताया, और बहुत सारी गीतों का जिक्र आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि नित नई प्रायोगिक प्रयास में प्रयासरत जोशी साहिबा अच्छा मैं की नई अन्वेषण छतरी वाला गीत संगीत हम श्रोताओं को एक नई ऊर्जा और दिशा दे रहा है। बारिश की फुहार हो या प्रेमी दिल शांत बैठे संभव नहीं, यहाँ उल्लेखनीय विषय होती है छतरी एक और प्रेमी युगल, और दोनों एक दूसरे को भीगने से रक्षा की दिखावे की कोशिश करते हैं परंतु दोनों के दिल से एक ही आवाज निकलती है, चलो इस प्रेम रस में सराबोर हो भीग लिया जाए। मौसम अनुकूल विषय वस्तु पर आधारित इस सफर में हम श्रोता भी रस में भीगने की तमन्ना रखते हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने, शुक्रिया। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा और भीगते हैं, छतरी रख लीजिएगा इस सफर में, ध्यान रखिएगा। हाँ, एसडी बर्मन का संगीत है इस बार, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, गीता दत्त और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम है बाजी। हाँ, ये गाना भी आपकी प्लेलिस्ट में शामिल था, है ना, शामिल है ना।

जी, टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप, कितना प्यारा गीत है ना। और हमारे मन का जो आंगन है उसमें भी बरसात हो जाती है इस तरह के गीत सुनने के बाद। तो मैंने आपसे पूछा था कि आपके शहर में बरसात हो रही है या नहीं, या आसपास हुई या नहीं, या कोई आसार नजर आ रहे हैं कि नहीं, आप बताइए ना, अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चले कि आपके शहर कौन सा है और कहाँ बारिश हो रही है। पता लिखते हैं कि खंडवा शहर में कल शाम को तूफान के साथ तेज बारिश हुई है, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है लेकिन शहर में कई जगह पेड़ गिर गए हैं। अच्छा, इतनी तेज बारिश हुई थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे गांव कल रात बरसात के दूसरे नक्षत्र के पहले रात 15 मिनट बारिश हुई और अब धूप है। अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राजा महाराजाओं और सम्भ्रांत लोगों को धूप से बचाने के लिए कुछ विशेष रंग बिरंगी छतरियां लेकर लोग साथ चलते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो अभी बारिश थोड़ी सी बूंदें आई हैं, देखते हैं हमारे शहर में कब भीगता है इस तेज बारिश में। बिल्कुल भीगेगा, थोड़ा सा उम्मीद रखिए और बताइए अपने शहर के बारे में कि आप कौन से शहर से लिख रहे हैं और वहां बारिश हुई कि नहीं। और छतरी से जुड़ी कुछ यादें आपको लिखनी है कि आपके जीवन में छतरी का क्या योगदान रहा है और कौन से गीत हैं वो जो आपको पसंद है, उनके बारे में हमें बताइए, अच्छा लगेगा। एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश और प्रणय का मोहक रिश्ता सदियों से चला आया है। महाकवि कालिदास के मेघदूत इस खंड काव्य में भी ये नाता दिखाई देता है। क्या बात है, हिंदी फिल्मों में भी बरसात और अनुराग भरा श्रृंगार हमेशा दिखाई देता है जो युवा दिलों को बेसुध बना देता है और आत्मिक आनंद देता है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि छाता और प्यार का नाता दिखाने वाले बहुत सारे गीत हैं। बिल्कुल, हमने आपके गीत पढ़े देखे हैं और बहुत सारे गीत हमारे गीतों से मिल रहे हैं, बधाइयां आपको बहुत बहुत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप ही हैं जो बिना इबारत के सुरीला सफर प्रस्तुत कर रही हैं जबकि बाकी लोग अभी भी इबारत का

सहारा ले रहे हैं, जबकि बिना इबारत के कार्यक्रम का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। क्या आज छतरी वाले गाने ढूंढने में श्रोताओं की भागीदारी नहीं रहेगी बल्कि और भी बढ़ जाएगी और उनके और आपके बजाए हुए गीत ज्यादा मेल खाएंगे? आपको कुछ बातें कुछ गीत की वापसी कराने की बधाई। देखिए, हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, आपने जो बात लिखी पिछली बार भी आपने यही कुछ लिखा था, जो बात मैंने लिखी है चार लाइनों में वो इबारत ही है। इबारत का कोई फिक्स तरीका नहीं है कि ये इसी तरह से सेट डिजाइन नहीं है कि इसी तरह का लिखा हुआ इबारत होता है। जो बात मैंने लिखी कि भाई दशकों तक मुख्यधारा के हिंदी फिल्मों में गीतों के माध्यम से बारिश के साथ रोमांस किया गया है, तो ये एक इबारत ही है जो मैंने अपने तरीके से लिखी ताकि श्रोताओं को ज्यादा से ज्यादा इबारत समझ आए और वो गीतों से जुड़े। तो ये कार्यक्रम सुरीला सफर ही है और हमारा उद्देश्य इस वक्त आपका मनोरंजन करना सुरीला सफर के माध्यम से है। तो आप इसी इबारत को पढ़िए और समझिए कि इबारत के कई रूप हो सकते हैं। एक ही तरह की सेट पैटर्न पर कोई इबारत नहीं लिखी जा सकती। हाँ, रही बात शब्दों की, तो मैंने आपको क्लू दे दिया कि हमने आज छतरी मैं ये भी लिख सकती थी कि भाई आज कुछ ऐसे गीत है जहां इस इबारत से आप समझिए, लेकिन मैंने आपकी बात को थोड़ा सा सरल बना दिया ताकि आप गीतों को अच्छे ढंग से ढूंढ पाएं और आपको भी खुशी हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में बारिश हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती थी, अब बड़े हो गए हैं लेकिन अब इतना अच्छा नहीं लगता। अरे एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश एक छतरी और रोमांस, ये तो अपने आप में ही एक मुकम्मल कविता है। सच में जब आसमान से रिमझिम फुहारें बरस रही हों और एक छोटी सी छतरी के नीचे दो लोग सिमट कर चल रहे हों तो उस पल का जादू कुछ अलग होता है। वो हल्की सी नजदीकी एक ही छतरी में खुद को बारिश से बचाने की कोशिश दो अनजाने लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती है। इसी खूबसूरत मंजर को फिल्मों में रूमानी परिकल्पना के साथ परिभाषित किया जाता है, जिसमें आज सुरीला सफर में हमें ये गाने सुनने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अगला गीत सुनते हैं। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, कमर जलालाबादी के बोल हैं, आवाज मुकेश की और फिल्म का नाम है छलिया।

जी एक श्रोता लिखते हैं कि भगवान महावीर की जन्मस्थली और भगवान बुद्ध की कर्मस्थली वैशाली बिहार में प्रचंड गर्मी है, दूर दूर तक काले काले बादलों का कोई अता पता नहीं है दीदी। चलिए तो सुरीले सफर के इस सफर में आ जाइए ना हमारे साथ, थोड़ा बहुत तो आपको आनंद आएगा ही इन बारिश इन फुहारों का, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब से विविध भारती उद्घोषकों ने, जिसमें आप भी हैं, बारिश के गाने सुनाने शुरू किए हैं, बादल मजबूर होकर मेरे शहर इंदौर में बरसने लगे हैं, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे जिले सागर मध्य प्रदेश की में इस रैली में इस सीजन की पहली बारिश परसों हुई थी, इस समय तो तेज धूप निकली है, चलिए बारिश की शुरुआत तो हुई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर अजमेर में अभी तेज धूप है, तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है, कुछ दिन पहले बारिश हुई थी। अच्छा, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे भोपाल शहर में रिमझिम बारिश हो रही है, पर हमने आज गीत तो एक भी नहीं लिखा, जबकि गीतों से प्यार तो हमें ज्यादा है, पता है क्यों नहीं लिखे गीत, क्योंकि आज हम आपकी पसंद के गीत सुनने वाले हैं, बहुत सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे डूंगरपुर में भी बारिश बहुत कम हुई है, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ग्रेटर नोएडा में बरखा रानी की प्रतीक्षा है, अभी भी लू चल रही है, बहुत सुंदर। और हम उम्मीद करते हैं कि आप

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बारिश के गानों से हम सभी बोर हो रहे हैं। फिर आपने लिखा है बहुत बढ़िया जी, बात समझ में नहीं आई कि जब बोर हो रहे हैं तो फिर बढ़िया क्या लगा आपको, और हमने तो कहा ही नहीं कि ये बारिश के गाने हैं। हमने तो आज उन गानों को इस कार्यक्रम में शामिल किया है जिनमें छतरी का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है कुछ गीत ऐसे भी हों इसमें जहां बारिश नहीं हो रही थी लेकिन छतरी थी। अभी अगला गीत आप सुनने वाले हैं उसमें कहीं आपको बारिश नजर नहीं आएगी, ना उन बोलों में गीतों के और ना कहीं उस परिदृश्य में, लेकिन हाँ जो गायिका या जो नायिका उस गीत को फिल्मा रही हैं, गा रही हैं, वहां पर छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए तो आपके विचारों को हम क्या माने, आप बोर हो रहे हैं और बढ़िया क्या लग रहा है थोड़ा स्पष्ट लिखें। एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरी कविता की दो पंक्तियां बोल दीजिए आप प्लीज। क्या लिखा है आपने, सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूं। अच्छा, तो आप थोड़ी लंबी कविता लिखिए, वैसे तो आपने बहुत गहरी लिख दी है। अगर आप लिखते हैं तो हमारे कार्यक्रम से जुड़ी कुछ पंक्तियां लिखिए ताकि हम उसको शामिल कर सके। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये वर्ष अलनीनो से प्रभावित है, ये एक मानसून से जुड़ा वैज्ञानिक शब्द है जो विश्वव्यापी वातावरण के संदर्भ में है। जब वातावरण इसके प्रभाव में रहता है तब उस वर्ष वर्षा बहुत कम होती है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, और देखिए जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हमारे श्रोता और भी आगे लिख रहे हैं इसी बात को कि ग्लोबल वार्मिंग के दंश को ये आशा और विश्वास ही तो झेलने की शक्ति प्रदान करता है। इसके जिम्मेदार बहुत हद तक हम इंसान भी तो हैं जिन्होंने प्रकृति का दोहन किया है, तो हमें

अंदर भी झांकना होगा कि आज समय पर बारिश क्यों नहीं हो रही है, या समय पर सर्दी क्यों नहीं आती है, समय पर गर्मी क्यों नहीं होती है। इसका कारण हम इंसान बहुत बड़ा एक कारण है जिन्होंने प्रकृति का नाजायज फायदा उठाया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गुजरात में मेरे शहर बड़ोदरा में बारिश को लेकर अभी तक मुंबई जैसा ही हाल है, मैं कल ही मुंबई आई हूं। अच्छा, एक श्रोता का लिखना है कि हमारे यहां सूरत में कल सुबह हल्की सी बारिश हुई, उसके बाद लग रहा है कि लंबी छुट्टी पर चली गई। वो आए न आए सुरीले सफर में बरसाती गीतों की फुहारों में हम भीग रहे हैं। अच्छा लग रहा है, लग रहा है ना, बिल्कुल बारिश आएगी आपके शहर में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अब तक कई छाते कहीं रखकर भूल आया हूं और वो कहीं मिले नहीं, इसलिए अब कहीं भी छाता लेकर नहीं जाता। अरे तो बारिश आएगी, भीग जाएंगे, याद रखिए, अपनी याददाश्त को थोड़ा बनाए रखिए भाई। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम जब छोटे थे तब मेरे पापा हम सब भाई बहन के छाते पर ऑयल पेंट से अपने नाम, अपने अपने यानी हमारे नाम लिख देते थे ताकि स्कूल में उसे बदला ना जाए। तार के ज्वाइंट में ऑयलिंग तो खुद ही कर देते थे। हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बच्चे लोग अक्सर स्कूलों में जो अपनी मैट है, अपने छाते हैं या अपनी पानी की बोतल है, टिफिन है, भूल जाते हैं तो माता पिता परेशान हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में अक्सर ऐसा होता था जब पापा जी ने हमें वर्षा ऋतु में विद्यालय पहुंचाने या विद्यालय से लेने आए थे और छाता खोलते ही वो उल्टा हो जाता था। तेज हवा में हवा की विपरीत दिशा में चलने के कारण हम भीगते थे और पापा जी भी हंसते थे। बिल्कुल यही जिंदगी है, और इसी तरह हमारी जिंदगी में भी होता है कि हम बहुत कुछ अपने साथ लेकर चलते हैं और इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन अचानक कुछ उल्टा हो जाता है, लेकिन उसमें भी हमें आनंद ढूंढ लेना चाहिए। अगला गीत ऐसा ही है जहां बारिश नहीं हो रही है और इन बोलों में भी बारिश नहीं है, लेकिन छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का नाम है समाधि, लता मंगेशकर और अमीर बाई कर्नाटकी की आवाजें हैं। राजेंद्र कृष्ण की रचना, सी रामचंद्र का संगीत।

जी हमारे श्रोता लगातार अपनी बात लिख रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और हम सभी संगीत रस से भीगते हुए शानदार सफर कर रहे हैं। बिल्कुल यही हम चाहते थे कि आप इस सफर में मेरे साथ हैं कि नहीं। हालांकि आप लोगों ने लिखा है कि नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप इस सफर में मेरे साथ आए हैं कि नहीं लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर धार एमपी में हल्की फुहारों के साथ बारिश हो रही है और छतरी से याद आया कि पिछले वर्ष हमारी छतरी कोई ले गया था और आज ही नहीं लानी पड़ेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि छत्रपति संभाजीनगर से पुणे रेड बस ट्रेवल्स में ट्रेवल कर रहा था। पुणे आने पर मैंने केवल अपनी बैग उठाई और स्टॉप पर उतर गया। घर आने पर याद आया कि छतरी बस में ही भूल गया हूं। भाई क्या बात है, ऐसे क्यों करते हैं, छतरी भूल जाते हैं। वही एक श्रोता ने लिखा है कि सोलापुर महाराष्ट्र से जैसे ही विविध भारती पर सुरीला सफर प्रोग्राम चालू हुआ तुरंत बरसात की बूंदें गिरने लगी। अच्छा, और एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो ही पूछा कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है तो आसमान में बादलों ने दिवाकर को अपनी हिरासत में ले लिया आग बरसाने के जुर्म में। क्या बात है, क्या बात है, जुर्म इतना बड़ा था सूर्य देवता का कि बादलों ने उन्हें अपनी ओट में ले ही लिया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये गाना देवानंद और आशा पारेख के साथ फिल्माया गया है। बारिश नहीं है गाने में लेकिन बहुत सारी सहेलियां रंग बिरंगी छतरियां लेकर गाती हैं। पार्श्व में कल्याण जी आनंद जी का मधुर संगीत और मेरा पसंदीदा गाना है। तो चलिए आपका पसंदीदा गाना हम आपको सुनवाते हैं फिल्म महल से, किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में, आनंद बख्शी की रचना, कल्याण जी आनंद जी की धुन।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज आप आई हैं, रिमझिम बारिश हमारे यहाँ चल रही है। ये कल तो गजब की बारिश हुई थी, बहुत ज्यादा तेज हवा, आंधी और बादल गरजे थे और बिजली भी खूब चमकी थी। इतनी तेज बरसात दो घंटे हुई खंडवा शहर में और ठंडक हो गई, मजा आ गया, बहुत बहुत बधाई आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो मई के मध्य से लेकर 22 जून तक तकरीबन 20 बार हल्की से मध्यम बारिश हो चुकी है। अभी 20 जून को भी हमारे यहाँ डेढ़ घंटे तक लगातार तेज बारिश हुई, यानी राजस्थान हमीरगढ़ की बात आप कर रहे हैं। बहुत सुंदर, अच्छी बात है ना कि राजस्थान में बारिश हो रही है कहीं कहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में छतरी लेकर हम साथ चल रहे हैं, पर बारिश नहीं धूप से बचकर, क्योंकि हमारे यहाँ चटक धूप है। अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं मंदाकिनी जी, छतरी लेकर तो हम साथ नहीं आए, हाँ संदेशों के साथ जरूर आए हैं, बातों और संदेशों के साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले गर्मियां शुरू होते ही छतरी बनाने वाले मोहल्ले में छतरी की रिपेयरिंग के लिए आते थे, पर अब वो दिखाई नहीं देते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अगर अचानक छतरी नहीं हो और भीगने का मजा खूब आ जाता है। वहीं एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि खूब पेड़ लगाइए, ये बारिश भी आएगी और धूप भी छाती की तरह सुरक्षा देगी, मतलब पेड़ आपको सुरक्षा देंगे, इसलिए खूब ज्यादा पेड़ लगाइए, ठंडी छाव मिलेगी। बहुत सुंदर। वहीं एक लास्ट में अंत में एक श्रोता लिखते हैं कि आपके साथ छाते में चलते चलते हर्ष उत्साह की छींटे झेलते झेलते सुरीला सफर कैसे संपन्न हुआ पता ही नहीं चला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गीत अंतिम गीत के रूप में आपके साथ।

फिल्म चालबाज का गीत था अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों का गाया हुआ, आनंद बख्शी की बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब सुरीला सफर, हम आखिरी मोड़ पर आ गए हैं पड़ाव का। ये अब जो है सफर यहाँ हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम और आगे बढ़े। ठीक है, फिर चलेंगे एक सुरीले सफर की और कभी और दिन। अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलूंगी। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे जुगनू पर। अपने अंदर एक जगमगाता सूरज लिए चलता है जुगनू। रात का सूरज है चांद, लेकिन चांद से बेहतर है जुगनू, क्योंकि जुगनू को चमकने के लिए किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। चांद तो सूरज से किरणें उधार लेता है, फिर उन्हें चांदनी में ढालकर फूला नहीं समाता है। लेकिन जुगनू वो हमें सिखाता है कि अपनी प्रतिभा और क्षमता पर विश्वास रखें, दूसरों पर निर्भर ना रहें, और जीवन में जब भी निराशा या असफलता का अंधेरा घना होने लगे तो अपनी सकारात्मक सोच और कर्म के दीपक को जलाए रखना चाहिए।

अंधेरे की अपनी जिद है और जुगनुओं की अपनी जिद। सूरज बनने की जिद करो और जो ना बन सको सूरज तो जुगनू बनकर छोटा सा सूरज अपने अंदर उगाकर अंधेरे से लड़कर रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक बनो। जुगनू जब रात की काली चादर पर टिमटिमाना शुरू करते हैं तो अक्सर अंधेरे में भटके को उम्मीद के सूरज तक पहुंचने का एक सिरा मिल जाता है और वो जुगनू अपनी रोशनी खोने तक उस भटकते प्राणी की उंगली पकड़ उसे सुबह की शफक रोशनी तक पहुंचा देते हैं।

हमारे सपने मन की मुट्ठी में रखे जुगनू ही तो हैं। माना जुगनू सूरज नहीं हो सकता और न सूरज जुगनू हो सकता है, फिर भी सपनों के जुगनू हर सूरज की मुट्ठी में है। हर जुगनू अपने अंतस के सूरज से चमकता है, वो चमकता है फिर बुझता है और फिर चमकने लगता है। निरंतर ये क्रम जारी रहता है। जुगनू कभी सूरज की तरह तेज ना चमक पाने पर निराश होकर अपनी चमक नहीं खोता, वो तो बस अपने को पूरी तरह से स्वीकार कर अपने आसपास के अंधेरे से निरंतर लड़ाई जारी रखता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैं रैप का काम सीखा, अंगूली का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूड़ी का ही होता है। तो मरूड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
5: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। इस संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन

0: छिड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
1: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
0: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नाफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
0: नाफेड ने एक प्रकार से नाफिक्स डॉट इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरो मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: They all constitute an important threats for us.
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अनेनों के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अनेनों की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
5: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने फिल्म तुमसा नहीं देखा का गीत सुना। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे ओपी नैयर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आशा भोसले और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था सती परीक्षा, गीतकार थे नजामी और धुन बनाई थी सम्मुख बाबू ने।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम में अब सुनिए चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल, युगल स्वर लता मंगेशकर और मन्ना डे की, फिल्म का नाम साक्षी गोपाल।

इस गीत के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया फिल्म रानी रूपमती का गीत। बोल पंडित भरत व्यास के हैं और संगीत SN त्रिपाठी का है।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में लीजिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए, स्वर लता मंगेशकर का, और ये फिल्म है पेइंग गेस्ट।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नया दौर से हमने लिया है। इसे आवाज दी है आशा भोंसले ने, गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको रोशन के संगीत निर्देशन में फारूक केसर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है अजी बस शुक्रिया। गायिका हैं लता मंगेशकर।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: हाँ, तो अब आज हमारे सामने बैठी हैं मंजरी जी। तो मंजरी जी, आपको मेरा नमस्कार और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
2: आरती, तुम्हें और सुनने वाली सभी सखियों और सगा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ आरती है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और देखो, बहुत सारी बातें भी हैं, तो हमारी जो आज के विषय है वो पहले बता देते हैं आरती की। हल्की फुल्की बातें, घर में आंगन क्यों था जरूरी?
1: बिल्कुल, आज हम घर आंगन को लेकर आए हैं
2: जी, और सखी सहेली के आंगन में लेकर आए हैं। तो सब लोग, हमारे साथी लोग, सखिया लोग जुट गए हैं। तो अगला विषय क्या है आरती?
1: बिल्कुल, अगला विषय है हमारा सखी विशेष के अंतर्गत। हम लेकर आए हैं आज अश्विनी अशोकन जी को, जो कि सह संस्थापक हैं मैड स्ट्रीट डेन की जी। और साथ ही हम बात करेंगे मुहावरों की दुनिया में क्या होता है, वो जो बहुत ज्यादा गलत काम होता है जी, वो है आग में घी डालना।
2: तो इस पर सब लोग अपने अपने विचार डालें और कैसा अनुभव रहा है उसके बारे में बताएं,
1: और इस मुहावरे का उनके लिए क्या अर्थ है वो बताएं हमें, और साथ ही आंगन के विषय में बताएं उनका आंगन घर का कैसा था,
2: कैसा था,
1: कैसे खेलते थे वो अपने आंगन में।
2: और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरी एप्लीकेशंस, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यानी बड़े प्यारे से विषय हैं आरती, लेकर आई हो तुम, तो हम लोग इन पर बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले गीत सुन लेते हैं।

0: तो आरती देखो कितना प्यारा सा गीत तुमने सुनाया, बड़ा अच्छा लगा। काली पलक पिया तोरी
1: माला, बिल्कुल, और चोरी ना हो और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो अच्छे तरीके से रह सकें, इसके लिए हम कुछ नया लेकर आए हैं। वो लेकर आए हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ जरूरी एप्लीकेशंस कौन सी हैं जिनके जरिए वो अपने आप को अच्छे से अपने सुरक्षा भी अपनी कर सकते हैं और अपनी बहुत सी जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं।
0: तो बताइए।
1: तो आज के जो डिजिटल युग है उसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ जरूरी एप्लीकेशन उनके जीवन को और अधिक सुरक्षित बनाती हैं और सुविधाजनक बना सकती हैं, जैसे कि वो बैंकिंग से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी योजनाओं से लेकर मनोरंजन तक हर सुविधा मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं, उपलब्ध करते हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक अगर कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस का उपयोग करना सीख लें तो उनका जीवन बहुत अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन सकता है। जैसे कि हम सभी लोग ये सब चीजें उपयोग करते ही हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट होता है, जिसकी वेबसाइट है abha.abdm.gov.in। ये एक डिजिटल हेल्थ आईडी है जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसमें डॉक्टर की पर्चियां हैं, जांच रिपोर्ट है, इलाज का विवरण है, एक ही स्थान पर उपलब्ध रहता है जिससे मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रहते हैं और अस्पताल में बार बार कागजात ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आपातकाल में डॉक्टर को स्वास्थ्य इतिहास बताने में आसानी होती है।
0: बिल्कुल आरती। और इसके अलावा ऑनलाइन SBI.SBI जो भारतीय स्टेट बैंक की डिजिटल बैंकिंग सेवा है, जहां हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें FD और अन्य बैंकिंग सेवाएं भी मिलती हैं। इसके साथ उमंग एप्लीकेशन जिसमें पेंशन संबंधी जानकारी रहती है, गैस बुकिंग जैसी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही जीवन जो कि भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया एक विशेष एप्लीकेशन है, जहां वरिष्ठ नागरिकों को आपातकालीन सहायता, सरकारी योजनाओं की जानकारी और पेंशन से जुड़ी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाती हैं, और मेडिसेफ जो की एक बेहतरीन दवा रिमाइंडर ऐप है।
1: बिल्कुल। और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, अक्सर समय पर दवा लेना जब हम भूल जाते हैं तो ऐसे में ये ऐप सही समय पर अलार्म बजाकर दवा की याद दिलाता है और परिजनों को भी सूचित कर सकता है कि आपको इस समय दवा देने का टाइम हो गया है। और वेल्दी और या फिर माय फिटनेस, वेल्दी यानी कि आपके वेलबींग या आप किस तरह स्वस्थ हैं, वो फिटनेस आपकी चेक करता है। तो ये फिटनेस पॉल, ये फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग का ऐप है जो वरिष्ठ नागरिकों को उनकी शारीरिक गतिविधि और खान पान का ध्यान रखने में मदद करता है। और साथ ही एक और है, वो है माई स्कीम, एक सरकारी पोर्टल है जहां बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही सभी पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया आसानी से मिल जाती है। और है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग DOSJE जो कि भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है।
0: बिल्कुल। और इसी के साथ ही SCW.DOSJE.GOV.IN जो वरिष्ठ नागरिकों को आवाज सुविधाएं और राष्ट्रीय हेल्पलाइन जैसी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा ऑडिबल एप्लीकेशन है, कई बुजुर्गों को पढ़ने में आंखों की कमजोरी के कारण परेशानी होती तो उनके लिए ऑडियो बुक सबसे उत्तम है। यहां हजारों किताबों को सुनकर आनंद लिया जा सकता है। इसके साथ वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल जो भारत सरकार का केंद्रीय पोर्टल है, सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल, बुजुर्गों को पेंशन, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करता है।
1: जी बिल्कुल। और एल्डरलाइन राष्ट्रीय हेल्पलाइन है जो कि बुजुर्गों के लिए समर्पित राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा है। इसका टोल फ्री नंबर है 14567 यानी 14567 और हम इसके माध्यम से गरिमापूर्ण वृद्धावस्था वेबसाइट पर जाकर आवास, भावनात्मक सहयोग और कानूनी विवाद समाधान से जुड़ी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही जीवन प्रमाण पोर्टल भी है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी जीवन प्रमाण है उसके जरिए पेंशन भोगी घर बैठे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जिसके लिए उनको पहले जाना पड़ता था और अपना जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था बैंक में।
0: बिल्कुल। और पेंशन भोगियों को पोर्टल पेंशनर पोर्टल विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए कर छूट, यात्रा रियायतों और कल्याण कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत विवरण देता है। अब तो ऐसे फोन भी उपलब्ध हैं जो बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। इनमें बड़े बटन, फोटो स्पीड डायल और एक डेडिकेटेड SOS यानी आपातकालीन बटन होता है। इन फोन्स में तेज आवाज सुनने की मशीन के अनुकूल डिवाइस और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स मिलते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहिए कि बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं जिनसे हमारे बुजुर्ग अपना फायदा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं
1: जी।
0: तो ये चीज बहुत अच्छी है आरती।
1: बिल्कुल, अगर इनकी जानकारी हो और इनको चलाना आता है आपको, तो आप इनके जरिए बहुत ऐसी आप चीजों को, अपनी जरूरतों को आप पूरा कर सकते हैं जिनके लिए हमें पहले बाहर जाना पड़ता था, वो अब हम घर बैठे ही एक क्लिक पे कर सकते हैं अच्छे तरीके से।
0: और आरती देखो, हमारी एक साथी लिखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए तकनीकी अब वरदान बन गई है। उनके दैनिक जीवन को आसान, सुरक्षित और आनंददायक बनाने के लिए कई बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध हैं जो स्वास्थ्य देखभाल, आपातकालीन सहायता, दैनिक सुविधाओं और मनोरंजन का ध्यान रखते हैं। उम्र में एक पड़ाव ऐसा आता है जब हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। घर परिवार में बुजुर्गों को ये सहारा सहज मिल जाता है जिससे उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। सरकार भी उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई कोशिशें करती रहती है। कई योजनाओं और सरकारी सुविधाओं में उन्हें खास तवज्जो या छूट दी जाती है।
1: बिल्कुल, और इस तरीके की जो चीजें हैं उनको अपनाना भी चाहिए। जो नई तकनीक आ रही है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है, और जो कि जैसे कि हमें पेंशन की जानकारी प्राप्त करनी है या हमें कोई दवा मंगानी है, तो उसके लिए हम, अगर कोई घर में उस समय नहीं है, तो हम इस तरह से अपने वेब के साइट के जरिए या फिर किसी ऐप के जरिए इस तरह से हम वो ले सकते हैं, जानकारी भी सकते हैं और वो दवा मंगा भी सकते हैं आराम से।
0: बिल्कुल, और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती, नागरिकों को या फिर ऐसे सीनियर सिटीजन को मासिक पेंशन मुहैया कराती है जिसके पास आय का कोई साधन नहीं या जिनका हालचाल लेने वाला इस संसार में कोई नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट मिलती है। साथ ही कई बीमा कंपनियां भी ऐसे लोगों के लिए विशेष मेडिकल प्लान लेकर आ रही हैं। कई बीमा कंपनियों ने भी जीवन बीमा की उम्र को बढ़ाकर 70 या 75 वर्ष कर दिया ताकि उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्हें वित्तीय असुरक्षा का आभास ना हो सके।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है इस चीज के लिए कि वो अपने अंदर सुरक्षित महसूस करें। तो इन बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं उन पे जाकर या बहुत सारी एप्लीकेशन है उनकी सहायता से, या इस तरीके की अब फोन भी चल गए हैं जिनका उपयोग करके वो अच्छे तरीके से अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, अपनी जरूरत के सामान भी मंगा सकते हैं। और मंजीत, इसी के साथ समय हो गया एक छोटे से अंतराल का।

0: हाँ सुमन जी, इतना अच्छा प्यारा सा गाना सुनने के बाद अब हम कौन सी बात करने जा रहे हैं?
1: देखो आरती, ये बताओ ना कि तुमने कभी आग में घी डालने का काम किया है क्या?
0: मैंने कभी नहीं किया है आग में घी डालने का काम। हाँ, उस घी को निकालने का काम किया है, यानी कि लड़ाई, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था

0: उसको सुलझाने का काम किया है।
1: ये तो बहुत अच्छा तुमने काम किया, क्योंकि जब ऐसे समय में झगड़ा हो रहा है तो आप अगर उसमें सही बीच बचाव कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी हमें ध्यान से करना पड़ता है आरती, नहीं मालूम पड़ा हम
0: ये ना हो
1: खुद ही फंस गए उस चक्कर में,
0: ये ना हो कि बात पहले झगड़े हो रही थी, आपस में बात चल रही थी, बात वाला झगड़ा हो रहा था और हमारे जाने के बाद वो लात घूसे पे आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
1: और देखो एक साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना मुहावरा, पहले से भड़के हुए झगड़े या गुस्से को और भड़का देना, स्थिति को और खराब कर देना, इसका उन्होंने मतलब लिखा है
0: जी।
1: और मुहावरे की दुनिया में ले जा रहे ये अच्छी बात है, लिखते हैं कि वैसे तो कोई भी शुभ कार्य के लिए किए जा रहे यज्ञ में आहुति देते हुए घी डालना जरूरी होता है, घर के सभी सदस्य शामिल होते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ इस मुहावरे के मुताबिक आग में घी डालना मतलब किसी के गुस्से या विवाद को और अधिक भड़काने यानी किसी खराब परिस्थिति को और भी खराब यानी अशुभ करना होता है, बड़ी बुरी बात है। अंग्रेजी में इसे एड फ्यूल टू द फायर बोला जाता है। बहुत अच्छी सी बात लिखी इन्होंने।
0: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है, इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात हुई नहीं बस इसी तरह के आग में घी डालने शुरू कर देते हैं, जो परिवार समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना या फिर लड़ाई को आगे बढ़ाना।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है, इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और भी अधिक बिगाड़ देना या क्रोध विवाद तथा तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोग बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बातें कहे कि जिससे झगड़ा और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, न कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और बढ़ा दे, इसीलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए, इन्होंने लिखा है आरती।
0: बिल्कुल। और एक और महेश होता है जो लिखते हैं कि इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और अधिक बिगाड़ देना या क्रोध विवाद या तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बात कहे कि झगड़ा और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। और ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, न कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और भी बढ़ा दें, इसलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए।
1: और आरती कई बार ऐसा होता है ना कि देखो भाई बहनों के बीच में छोटी छोटी सी बातों पर कहासुनी हो गई और उसको सुन करके तू आपका दो एक तो भाई बहन में हो ही रहा है झगड़ा, लेकिन दूसरा आकर भाई आपके बीच में लग गया कि नहीं इसने तो ऐसा कहा था, ये गलत कह रही थी, तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही थी। तो यानी आग में घी डालने का काम घर में भाई बहन के बीच में अक्सर झगड़ों में ऐसा देखा जाता है, और जब दो पड़ोसी झगड़ रहे हो तो तीसरा भी आकर उसमें आग में डालने का
0: बिल्कुल
1: काम,
0: पड़ोसी हो चाहे भाई बहन हो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अक्सर ऐसा होता है कि झगड़ा किसी न किसी छोटी बात पर भी शुरू होता है, लेकिन अगर कोई समझाने वाला नहीं होता है तो वो झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो बढ़ के विकराल धारण कर लेता है।
1: बिल्कुल। और आपस में जो इसके बाद झगड़े के बाद जो मन के भेद हैं वो दूरियां बढ़ जाती है, मतभेद हो जाता है, तो वो बहुत दिक्कत वाला होता है, क्योंकि बाद में जब हम सामने वालों को देखते हैं तो याद आता है ना कितने अच्छे संबंध है हमारे इसके साथ, आज ऐसा हो गया, वो बड़ा दुख देने वाला है। और मान लीजिए कि दो मित्र किसी बात पर आपस में बहस कर रहे हैं तभी एक तीसरा व्यक्ति आकर ऐसी बातें करने लगे जिससे दोनों का गुस्सा और बढ़ जाए, तो भाई ऐसी स्थिति में तो यही कहा जाएगा ना कि आग में घी डालने का काम कर रहे हो,
0: बल्कि हमें स्थिति को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि उनको समझाना चाहिए कि भाई जब क्रोध आपका शांत हो जाए तब आप आपस में बात करिए, जब तक क्रोध में रहते हैं ना हम तब तक हमें समझ में नहीं आता हम क्या सही कर रहे हैं या गलत। तो अब इसी बात को थोड़ा सा यहाँ पे विराम देते हुए एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
2: मिलती है अगर नजरों से नजर शर्माते हो क्यों,

0: तो देखो भाई, इतने गीत के बाद हम लोग फिर अपने उसी बात पर आ गए, आग में घी डालने वाली बात पे।
1: तो क्या कह रहे हैं श्रोता?
0: साथी कह रहे हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात नहीं बस इसी तरह के आग में घी डालने की बात शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना, लड़ाई को आगे बढ़ाना।
1: बिल्कुल, ये हमें आगे बढ़ाना नहीं चाहिए इस लड़ाई को, क्योंकि लड़ाई जितनी ज्यादा शांत रहे उतना ही अच्छा, चाहे वो देशों के बीच हो, चाहे वो लोगों के बीच हो, घरों के बीच हो, लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, शांति से काम लेना चाहिए। क्योंकि जिस समय हमें गुस्सा है, बस थोड़ी देर हम शांत रहें, थोड़ी देर काउंट कर लें अपने मन में, 1, 2, 3, 4, चाहे गुस्से में ही करें, वो धीरे धीरे वो गुस्सा शांत होने लगता है।
0: बिल्कुल, और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती, ये आग आज में आई लिखते हैं कि आग में घी डालना इस मुहावरे का अर्थ है बिगड़ी हुई बात को बहुत ज्यादा बिगाड़ देना। ये हमारे जीवन में बहुत लोग करते हैं, तो कह सकते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा हमारे जीवन में सार्थक होते हैं। और मेरे जीवन में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया है, तो मेरा अनुभव इस मुहावरे के साथ बहुत ज्यादा है।
1: बिल्कुल, कभी कभी कोई छोटी सी बात होती है ना, लेकिन कोई आके जब वो चीज को भड़का देता है और हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास भी कर लेते हैं, है ना, और वो जो जो इंसान हमसे बात कह रहा है वही दूसरे से जाके कहता है, वो अलग तरीके से कहता है नमक मिर्च लगा के, तो वो चीजें ना आग में घी डालने का काम करती हैं। और वो जो मनमुटाव है, जो मन भेद है ना, वो मतभेद, वो सारे के सारे मिलके उस रिश्ते को बिगाड़ देते हैं।
0: तो यानी कहना चाहिए कि आग में घी डालने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बस जब हम लोग जैसे पढ़ाई के समय ये मुहावरे हमारे पास बहुत सारे आते थे कक्षा में जब हम पढ़ते थे, तो वो उनका अर्थ वहां पर वहीं तक सीमित
1: रखे, समझाने करें, ये मुहावरे जो होते थे समझाने के लिए होते थे। तो चलिए अब हम एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
0: समय हो चला है
1: एक अंतराल का।

0: हाँ तो मंजरी,
1: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी सखियों का और श्रोता भाइयों के साथ साथ आरती तुम्हारा भी स्वागत है।
0: बिल्कुल, हम सुन रहे हैं क्या सखी सहेली
1: जी।
0: तो एक प्रोमो सुन लेते हैं।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन एवं हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सबको छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं अश्विनी अशोकन, सह संस्थापक मैड स्ट्रीट डेन की जो है। अश्विनी अशोकन भारतीय तकनीक जगत की प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है, जिन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर उसे आम जीवन और व्यवसायों के लिए उपयोगी बनाने का बड़ा काम अपने हाथ में लिया।
1: जी बिल्कुल, और अश्विनी अशोकन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कला और विज्ञान जब एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तब कुछ नया और बेहतर आविष्कार आकार लेता है। चेन्नई की रहने वाली अश्विनी अशोकन का जन्म प्रोफेसर और कंप्यूटर वैज्ञानिकों के परिवार में हुआ था।
0: 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन में दाखिला लिया। उन्होंने दृश्य संचार और इंटरेक्शन डिजाइन का अध्ययन किया तथा बाद में अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
1: बिल्कुल, और एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना और संगीतकार के रूप में उन्होंने 14 से 21 वर्ष की आयु के बीच देशभर में प्रदर्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि विश्वविद्यालय में उनका शोध प्रबंध व्याकरण पर था,
0: जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि नृत्य के सांस्कृतिक रूप में हमें ये सोचने में कैसे मदद कर सकते हैं कि हम अपने रोबोट और अन्य डिजिटल एजेंटों में गति को कैसे डिजाइन करें। उद्यमिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लगभग एक दशक तक एक प्रसिद्ध कंपनी में काम किया।
1: उन्होंने वहां पर मोबाइल नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की तकनीकों पर काम किया। इसी दौरान उनके मन में ये विचार जन्मा कि AI को केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाने का साधन बनना चाहिए।
0: जी, और अश्विनी कहती हैं, मैं समझती हूँ कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं। मैं मशीन लर्निंग के मूल सिद्धांतों को समझती हूँ। मुझे तकनीक के निर्माण की पर्याप्त जानकारी है और सबसे बढ़कर मैं अपने मूल कौशल को भली भांति जानती हूँ, जो दुनिया भर के लोगों के लिए सार्थक तरीके से प्रौद्योगिकी को समझना और उसका उपयोग करना है।
1: बिल्कुल, वर्ष 2013 में उन्होंने अपने पति और न्यूरो साइंटिस्ट आनंद चंद्र शेखरन के साथ मैड स्ट्रीट डेन की स्थापना की। कंपनी का उद्देश्य ऐसी AI तकनीक विकसित करना था जो मशीनों को देखने, समझने और सीखने की क्षमता प्रदान करे। बाद में कंपनी ने VUE.AI जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किए जिन्होंने खुदरा व्यापार, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य और वित्त जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोली। अश्विनी केवल एक सफल उद्यमी ही नहीं बल्कि कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता की प्रबल समर्थक भी हैं।
0: उन्होंने अपनी कंपनी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और तकनीकी क्षेत्र में उनके लिए अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया। अपने दूरदर्शी नेतृत्व और नवाचार के कारण अश्विनी अशोकन को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। जब भी हम ऐसे सखी सहेली के में लेके आते हैं, ऐसे विषय सखी विशेष के बारे में बात करते हैं, तो उनकी जो उपलब्धि सुनकर समझकर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी एक लॉ जगती है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि एक हम ऐसी जगह पे अपनी पहचान बना सके।
1: बिल्कुल, और तकनीकी के क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया AI के लिए, जहां पर आजकल मतलब सभी कर रहे हैं, लेकिन पहले इतनी ज्यादा लड़कियां नहीं आगे आ रही थी, लेकिन अब बहुत संख्या में लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हुए तो बहुत समय हो गया, हम कुछ गीत सुन लें।
0: जी,

0: बिल्कुल, आंगन की ही बातें करनी है हमको।
1: जी देखो, पुराने समय में घरों में जो आंगन एक केवल खुली जगह नहीं होते थे आरती, बल्कि वो घर की धड़कन हुआ करते थे। आंगन में ही सब कुछ काम हम लोग किया करते थे। घर में दादी नानी मौसी चाची सभी लोग आंगन में बैठकर ही, चारपैया होती थी, नहीं तो पीढ़े पर बैठते थे, नहीं तो चटाई डाल के बैठते थे, और वहीं पे सब्जी काटने से लेकर धोना सुखाना पछोरना गेहूं चकिया धरना ये सारे जो काम होते थे सब वहीं होते थे। और जैसे ही सीजन आता था होली आने वाली, तो उसके पहले जो दिन महीने होते थे उसमें बड़ी पापड़ कचरी अचार ये सब चीजें डाली जाती थी और उसके लिए पूरा घर जुड़ जाता था।
0: बिल्कुल, हर मौसम समझ लीजिए हमारे आंगन में उतरता था,
1: यानी कि आंगन में हम बहुत सारी जिंदगी एक साथ जीते थे। और जो उत्सव त्योहार होते थे, यो याद होगा शादी के पहले जब मंडप वगैरह लगता है तो सब आंगन में जो खाना खाया जाता था वो भी चटाई डाल करके बड़ी लंबी सी पत्ती सी होती थी उसके उस पर बैठकर लोग खाना खाते थे, तो उसका भी एक आंगन का एक अलग मजा है। और गर्मियों के दिन में तुम क्या
0: मैं ही कह रही थी कि जैसे अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, अब शुरू कहीं कहीं तो हो गई है और कहीं कहीं धीरे धीरे चल रही है बारिश, तो बारिशों का जो असली मजा होता था ना वो आंगन में आता था, क्योंकि आंगन में जब पानी भर जाता था बूंदे गिरती थी छप छप छप छप, इतना मजे आते थे कि मतलब
1: तुम्हें याद है ना वो जो नाव कागज की बना के हम लोग आंगन में जो पानी भरता था और जो निकासी की जो जगह होती ना उस जगह भी हम लोग कपड़ा ठूस दिया करते थे कि पानी भर जाए।
0: मुझे लगता है कि ना ये जो यादें हैं वो सिर्फ हम लोग की नहीं सभी की होंगी, सभी के घर आंगन जिनके घरों में आंगन, बल्कि अधिकतर लोगों के आंगन ही होता था घर में जो भी थे, तो वो आंगन का अपना अच्छे तरीके से उसका उपयोग भी करते थे। वहां पे सब काम किस तरह से कैसे क्या करना है वो चीजें भी करना, वहाँ पे एंजॉय किस तरह से हमें अपने आनंद उठाना है उस चीज का वो भी करते थे।
1: और देखो ना हमारे साथी क्या लिखते हैं कि हमारे पुराने घर में लखनऊ में एक आंगन हुआ करता था, उसके ऊपर लोहे का जाल होता था और उस पर हम लोग झूला डलवा लेते थे अपने पापा लोग से और सब भाई बहन मिलकर झूला झूलते थे। आसपास की सहेलियां भी इकट्ठी होकर झूलते थे, बड़ा मजा आता था। उसी में छोटे बच्चे वही नहाते धोते, नहाना धोना कपड़े धोना, मम्मी लोग का पकवान बनाना, दादी माँ के साथ सब कुछ इस आंगन में ही हुआ करता था। और आंगन में याद है जब कपड़े में साड़ियों में मार देने का एक था, तो चावल के पानी से मार निकाल करके उसको साड़ियों

0: पे मार देते, तो जो खींचना है सुखाना है साड़ी को वो उसी आंगन में लंबी दूरी तक खड़े होकर करते थे, तो बहुत मजा आता था।
1: और रात में जब सोने के लिए लोग जैसे कि अपनी देते अपनी यादें जब करते हैं साझा करते हैं तो लिखते हैं कि हम भाई रात में ऐसे सोते थे कि सब पूरा आंगन में पूरी चरपाइयां बिछा लेते थे, तो बहुत से लोगों की यादें जुड़ी होती हैं आंगन से।
0: और मच्छरदानी लगा के और पंखा लगा करके सोया जाता था, जब पंखा नहीं था तो हाथ वाले पंखे से बैना जिसे कहते हैं वो डुला करके एक दूसरे को करते थे हवा, वो भी बहुत यादगार है। और हमारे साथी क्या,
1: बिल्कुल हमारे एक साथी लिखते हैं कि बच्चे बड़ों की नजर में सुरक्षित बचपन होता था आंगन में, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छुपन छुपाई खेलते थे, और आज के फ्लैट्स की तरह बच्चे कमरों में कैद नहीं थे बल्कि खुले आसमान के नीचे दौड़ते थे। प्राकृतिक एयर कंडीशनर था वो समझ लीजिए, रोशनी थी, हवा थी, आंगन पूरे घर में प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा का सबसे बड़ा जरिया था। और गर्मियों की रातों में आंगन में पानी का छिड़काव करके चारपाई बिछा दी जाती थी जो प्राकृतिक ठंडक देती थी।
0: क्या बात है। और हमारे साथी देखो और बढ़िया सी यादें इन्होंने साझा करी है कि आंगन हर घर का सिर्फ खाली हिस्सा नहीं होता था, वो उस घर की सांस है, धड़कन है। आंगन वो जगह होता है जहां बचपन में दादी नानी से कहानियां सुनी जाती थी, जहां माँ ने लकड़ी के चूल्हे पर दाल में बघार लगाया तो उसकी खुशबू पूरे घर में महक जाया करती थी, जहां बाबूजी खाट पर बैठकर अखबार पढ़ते रेडियो सुनते थे। आंगन मतलब बिना किराए का अपना आसमान, जहां सुबह की पहली किरण, बारिश की पहली बूंद और चांद की चांदनी पर अपनी ही लगती थी। मतलब सोच लो कितना सुंदर था वो समय, और आज भी जिनके आंगन वो इसका मजा लेते हैं। सुबह तुलसी पर जल अर्पण से लेकर संध्या आरती तक घर की स्त्रियों की दिनचर्या होती थी, इसी आंगन में गिरे और संभले भी, यहीं से पारिवारिक रिश्तों की पहचान हुई। घर के आंगन ऐसी बहुत सी स्मृतियां होती है जो जीवन भर साथ रहती है। उनमें सौभाग्यशाली में से मैं हूं कि मेरे घर में तीन आंगन शुरू से ही और उन्हीं में मेरा जन्म से लेकर बचपन बड़ा हुआ, हमारी चार बहनों और मेरा और मेरे बेटे का के विवाह मंडप भी बने और आज भी उन्हीं आंगनों में शेष जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है। बहुत सारी यादें साझा करिए। और आंगन में जब ये मांगलिक उत्सव होते थे, जो ढोलक पर जो गाने बजते थे, औरतें मिलकर गाती थी, नाचते थे, बच्चे भी नाचते थे, तो बहू बेटे सब क्या है, मतलब एक समा बन जाता था।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी और अपने सुख दुख की बातें कहती थी, यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी, और अचार डालना, पापड़ सुखाना और गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं पर हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। मतलब काम कितना भी ज्यादा क्यों ना हो पता ही नहीं चलता था इतने सारे लोगों के बीच में।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं, पुराने समय में संयुक्त परिवार होते थे, आंगन में बैठकर महिलाएं घर के काम करती थी, बुजुर्ग आराम करते और बच्चे खेलते थे, ये परिवार को एकजुट रखने का मुख्य स्थान था। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, पूजा पाठ, त्योहारों के आयोजन, शादियों की रस्में और मेहमानों का स्वागत अक्सर आंगन में ही किया जाता था। घर के बीच में तुलसी का चौरा और छोटे पौधे आंगन की शोभा बढ़ाते थे, और जब दिवाली का उत्सव आता था तो इसी तुलसी के चौवारे के चारों ओर बहुत सारी रंगोली बनाई जाती थी, दिए जलाए जाते थे मिट्टी के, और घर भी वहीं पे हम लोग बनाया करते थे, याद होगा तुम्हें, कि ईंटों से घर बनाते थे, खेलने के लिए गुड्डे गुड़िया भी रखे जाते थे। यानी आंगन हम लोगों का मनोरंजन का एक बहुत बड़ा स्थल होता था, हमें कहीं ग्राउंड पे जाने की जरूरत नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में आंगन है तो बहू बेटियां सब वहीं पर अपने दिन अच्छे से बिताती।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे घर में आंगन है, इस आंगन में हमारे बच्चे खेलकर बड़े हुए हैं, अब बच्चों के बच्चे खेल रहे हैं, झूला है, पेड़ पौधे के कारण तितलियां आती हैं और बच्चे उन तितलियों को देखते हैं और पीछे पीछे जाते हैं, छुई मुई का पौधा है उसके साथ बच्चे अपना प्यारा सा वक्त गुजारते हैं, आंगन में नीम का और बेल के बड़े पेड़ हैं, घर में ताजी हवा और प्राकृतिक रोशनी आती है जिससे वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहता है। ये परिवार के सदस्यों के मिलने जुलने, बच्चों के खेलने और त्योहारों और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य स्थान है। आंगन में पेड़ पौधे लगाने से घर का तापमान भी संतुलित रहता था। आंगन घर की सुंदरता, स्वास्थ्य और पारिवारिक एकता का महत्वपूर्ण केंद्र है।
0: क्या बात है, कितनी सारी यादें सबकी ताजा हो गई है। आंगन में झूला भी तो होता ना आरती, जिसमें गर्मियों में अपना सारा दोपहर उसी में पेड़ के नीचे झूला करते थे। और देखो एक हमारे साथी संदेश लिखते हैं कि आजकल वो घर कहाँ जहाँ आंगन हुआ करते थे, अब तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर बन रहे हैं, वो भी बिना आंगन के। पुराने समय में यानी हमारे जमाने में भी हर घर में आंगन हुआ करते थे। इसमें कुदरती वेंटिलेशन नियम लागू पड़ता है, जैसे कि घर में हवा प्राकृतिक रोशनी के साथ शुद्ध हवा का संचार होता रहता था। साथ साथ में परिवार जुड़ाव भी बढ़ता है, जो अति आवश्यक है। परिवार के साथ साथ बाहरी वातावरण को भीतरी कमरों से जोड़ता है, जिससे घर एक मंदिर जैसा और शांत और ऊर्जावान और

0: आरामदायक बना रहता है।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि घर में आंगन का होना सिर्फ जगह की उपलब्धता नहीं है बल्कि पारिवारिक जुड़ाव है। वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी का मुख्य माध्यम है। ये घर का खुला केंद्र बिंदु होता था जहां धूप सेकने, गर्मियों में सोने, बच्चों के खेलने और महिलाओं के साथ मिलकर खाना पकाने जैसी गतिविधियां आसानी से होती।
0: और देखो हमारे एक साथी लिखते हैं कि पड़ोसियों का मिलन स्थल, दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी, सुख दुख की बातें यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी। सामूहिक काम, अचार डालना, पापड़ खाना, गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। और आंगन में कहीं कहीं पर हमने देखा है कि वो लोग चूल्हा भी बना लेते थे और शाम का खाना तो वहीं पे बनता था, किसी किसी के दिन में भी बनता था। और बहुत मतलब अच्छा समय वहीं पर अच्छा समय बीतता था और वहीं पर हम लोग पढ़ाई भी तो करते थे, शाम को बैठकर लिखाई
1: लोगों के, समझ लीजिए हर काम का केंद्र बिंदु जो था वो आंगन ही था।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो प्राकृतिक, एक तो हवा उसमें आती है आपको और दूसरी चीज है वहां पे आप बैठ के अपना कोई भी, जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है ना तो आपको कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे से अपना समय बिताते हैं।
0: और वो याद है जब चावल बिनते थे तो गोरैया आ गई तो उनको चावल उसी थाली में से निकाल के दाने डाल दिए, वो चुग रही है तो उनको भी फुदकता हुआ चूचू करता हुआ देख रहे हैं तो बड़ा मजा आता था। यानी आंगन में कई बार बहुत सारे ऐसे पक्षी भी आ जाते थे, उतर आते थे तो उनको दाना डालने में बहुत मजा आता था।
1: बिल्कुल, और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि आंगन के बीचों बीच तुलसी का पौधा होता था जहां सुबह शाम दिया जलाया जाता था और घर के बुजुर्ग दिन भर आंगन में बैठकर अपने नाती पोतों को कहानियां सुनाते थे और आंगन में बैठकर वो घर के मुख्य दरवाजे और आने जाने वाले लोगों पर आसानी से नजर भी रख पाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि सुरक्षित बचपन, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छप्पन छपाई खेलते थे और इस तरह के बहुत सारे गेम भी हुआ करते थे, आइस पाइस कह लो या पकड़म पकड़ाई कह लो या रस्सी कूदना है, कबड्डी, ये सब भी आंगन में खूब हुआ करते थे। तभी एक अपना मजा है जो है आज भी,
1: और हर मौसम का चाहे गर्मी हो उसमें अलग तरीके से रहना, मजे करना, और चाहे बरसात हो, है ना, सर्दी के मौसम में धूप जो सेकते थे ना, वो जो सूरज की रोशनी आती थी ना, सबसे पहले आंगन में जो धूप उतरती थी तो सबका ये होता था कि जल्दी जल्दी काम कर लो, बस आंगन में धूप सेकनी है।
0: और जहां जहां धूप जा रही है ना वहां वहां पे कुर्सियां भी जा रही है, चारपाई भी जा रही है और मूंगफली भी खाते थे वहां पर बैठ कर आंगन में, ये बहुत अच्छा टाइम पास था। उसके साथ जो नमक की पुड़िया याद है ना, यानी पूरा मजा आता था। अमरूद भी आ गए सीजन में तो वो भी काट के सब, मतलब
1: जो भी चीजें आपको जो भी काम करना है ना, सब लोग जुट के बस चलो आंगन में बैठे करना है ना, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे आनंद उठाना हो किसी चीज का,
0: आनंद उठाते हैं गीत,
1: बिल्कुल गीत का आनंद उठाते हैं।

0: तो भाई देखो हम लोगों ने कितना सारा वक्त इस आंगन में गुजार लिया,
1: इस आंगन में हमारा पूरा वक्त पूरा हुआ अभी।
0: अब हमें चलना चाहिए। तो सभी को मंजरी वर्मा
1: और आतिश श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15।

0: महसूस करते हैं, वो जो खरोचे होती है वो खरोच आपको हाँ। कहीं शब्दों में ढाल लेते हैं तो आपको सुकून मिलता है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अल्फाज, कोई चंद शायरी अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं तो।
1: खुद को इतना भी मत बचाया कर,
0: क्या बात है,
1: खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर।
0: क्या बात है,
1: शुक्रिया। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर।
0: वाह,
1: अभी हम इसी दर्द की बात कर रहे थे।
0: वाह वाह वाह।
1: दर्द जो है वो बहुत कीमती चीज है
0: जी,
1: हम उसको बहुत आसानी से उस दर्द को फ्रस्ट्रेशन में हाँ। गुस्से में बाहर निकाल देते हैं उसको हाँ। नहीं, उसको जीना चाहिए उस दर्द को। वही दर्द आपको बड़ा कलाकार बड़ा फनकार बनाता है,
0: ऊंचाई तक ले जाता है कई बार।
1: तो दर्द हीरा है दर्द मोती है,
0: क्या बात है।
1: दर्द आंखों से मत बहाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है। और दर्द में मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अपने मुस्कुराहट से हम कई बार अपने दर्द को ढांक लिया करते हैं। और यहाँ पर हम चाहते हैं नानी की जो बातें हैं, आपने जिक्र किया नानी नाना के यहाँ पले, तो नानी की बहुत सारी कहानियां होती है, नानी की जबान से सुनी हुई वो कहानियां, नाना की बहुत सारी बातें, बहुत सारी हिदायत नसीहतें, कुछ याद है तो संक्षेप में बताइए।
1: नानी की मोहब्बत है यार।
0: बताइए, कोई किस्सा बताइए नानी का।
1: मैं आपको बताऊं कि दुनिया की पहली और आखिरी औरत है मेरी नानी, जिसने मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की।
0: क्या बात है।
1: बहुत बहुत प्यार किया मुझे मेरी नानी ने। माँ को तो देखा नहीं मैंने, मतलब चेहरा याद नहीं है। माँ के साथ एक आध वाकया जरूर याद है लेकिन चेहरा नहीं याद है। मेरी माँ को टीबी था, उस जमाने में टीबी लाइलाज था
0: जी जी,
1: तो उसी में उनकी डेथ हुई। तो नानी ने बहुत प्यार किया और नानी के साथ वाकया तो क्या है, वो मेरे लिए अपने बेटे से लड़ जाती थी मामू से। अपने बजाहिर मुझे ऐसा लगा कि अपने बेटे से ज्यादा प्यार मुझसे करती थी वो। तो वो औरत तो मेरे लिए बहुत बड़ी, कोई दूसरी औरत मैंने बताया कि ऐसी मुझे जिंदगी में नहीं मिली जो मेरी नानी की तरह मुझे प्यार किया हो जिसने। तो बहुत सारे वाकये हैं, मेरे लिए सबसे लड़ जाती थी वो, और कोई चीज जब उन्हें मिलती थी तो वो अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लेती थी।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: और वो मुझे देती थी चोरी से चुपके से, और मेरी पढ़ाई का ख्याल रखती थी बहुत
0: जी जी।
1: और मैं पढ़ने में तेज था शुरू से
0: हाँ।
1: एक आध दो सब्जेक्ट में कमजोर भी था
0: हाँ।
1: जैसे मैं गणित में कमजोर था, और जो धार्मिक पढ़ाई होती है दीनियात कहते हैं, वो एक सब्जेक्ट होता था, उसमें कमजोर था। बाकी सब में, राइटिंग वगैरह में, आलेख में
0: तेज थे,
1: बहुत तेज था मैं हाँ।
0: तो यहाँ पर जब आप नानी की बातें कर रहे हैं तो मुझे जावेद साहब का एक शेर याद आ रहा है, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। और जावेद साहब के नाम से मुझे याद आ गया कि जावेद साहब ने आपकी शायरी की बड़ी सराहना की है। एक कोई मुशायरा था गुजरात में जहां पर निदा साहब, जावेद साहब और बड़े बड़े नामचीन शायर थे
1: हाँ, सूरत में
0: जी, सूरत में
1: जी।
0: तो वो क्या वाकया है, जरा उसका जिक्र कीजिए, वो घटना बताइए।
1: मुशायरों में तब मैं आया नहीं था और मैं सूरत में ही रहता था
0: जी,
1: और गुजरात उर्दू एकेडमी की तरफ से सरकारी मुशायरा था, वो बहुत ही बड़ा मुशायरा था। और ये बात है 1994 की
0: जी, शीनकाफ निजाम भी आए थे इसमें।
1: शीनकाफ निजाम साहब ने उसकी निजामत की थी, उसका संचालन किया था
0: जी।
1: अच्छा, आपको इतना डिटेल में पता है,
0: कुंडली आपकी पता है। लेकिन अभी श्रोताओं तो सारी
1: तो, उसमें सारे बड़े शायर, मतलब निदा फाजली
0: जी,
1: जावेद अख्तर, मोहम्मद अलवी और शीनकाफ निजाम और इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी और मंजर भोपाली वगैरह जैसे जो मुशायरे के टॉप के शायर थे, ये इस तरह के शायर भी उसमें शामिल थे। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये अदबी और लिटरेरी पोएट थे
0: जी, सब जी।
1: और जावेद अख्तर साहब का तो मतलब

0: अब आप यूं समझिए कि बॉर्डर रिलीज हो गई थी या होने वाली थी और उनके गीतों ने मतलब आग लगा रखी थी मुल्क में। संदेशे आते हैं है ना, आए जाते हुए लम्हों, वो गाने मतलब ये वही जमाना था। और प्रोफेसर वारिस अलवी साहब थे जो गुजरात उर्दू एकेडमी के चेयरमैन थे और उर्दू साहित्य के बहुत बड़े क्रिटिक, बहुत बड़े नक्काद थे वो प्रोफेसर वारिस अलवी साहब। तो उनके फोन पर जावेद अख्तर साहब आए थे, वरना वो आते भी नहीं।
1: जी जी। हाँ,
0: तो वो बहुत बड़ा मुशायरा था और उसमें एक अलमिया ये हुआ, एक विडंबना हुई कि उसमें कई शायर मकामी थे, मतलब सूरत के लोकल शायर थे कई। तो लोकल शायर हर जगह पे यही दस्तूर है कि उसको पहले पढ़ा दिया जाता है, बाद में फिर जो मेहमान शायर हैं दूसरे शहरों से आए हैं और जो नामचीन हैं बड़े शायर हैं फिर धीरे धीरे उनका नंबर आता है। जैसे जैसे मुशायरा खत्म होता जाता है तो वो जितने बड़े शायर हैं वो बाद में पढ़ते हैं। अब जो लोकल शायर थे मकामी उनको पढ़ाना शुरू किया शीनकाफ निजाम साहब ने। अच्छा, उसमें कुछ अहमदाबाद के भी थे, मतलब गुजरात के दूसरे शहरों से भी थे।
1: जी, जी, जी।
0: तो उन्हें भी ठीक से कोई सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि स्टेज पर इतने बड़े बड़े शायर बैठे हुए थे। अब सूरत के शायरों को पढ़ाना शुरू किया और दो या तीन शायर पढ़े होंगे कि होटिंग शुरू होने लगी कि भाई मकामी शायरों को नहीं सुनना है, पब्लिक जो है सामईन जो है वो सुनने को तैयार नहीं। अब ये तय किया गया कि भाई मकामी शायरों को नहीं पढ़ाया जाएगा। अब मेरा तो वो पहला बड़ा मुशायरा था और उसके लिए हमने बड़े जतन किए थे, बड़ी मेहनत की थी और ये जो बाहर से सब शायर आए थे इनकी देखभाल में भी हम थे, जावेद साहब के और मोहम्मद अलवी साहब और निदा फाजली साहब, और इन सब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी
1: और उसमें जावेद प्रूफ करने का जरूरत था।
0: हाँ, जावेद साहब से भी, निदा साहब से भी, मोहम्मद अलवी साहब से भी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। शीनकाफ निजाम साहब से शायद पहले मिला हूंगा। तो हुआ क्या था कि सर्किट हाउस में ये सारे शायर ठहरे थे, तो मेरी मुलाकात, चूंकि मैं वहां पे मेहमान नवाजी में और देखभाल में था मैं, तो मेरी सबसे मुलाकात पहले ही हो चुकी थी और निदा फाजली से मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। और वो क्यों हो गई थी कि निदा फाजली साहब को तो मैं यूं भी पसंद करता था लेकिन उनकी एक किताब जो नसरी है, मतलब उनका सवानही नावेल है, उन्होंने अपनी जिंदगी पर एक नावेल लिखा है जो दो जिल्दों में, दो वॉल्यूम में है, तो ये पहली जिल्द थी, तब तक दूसरी नहीं छपी थी, दीवारों के बीच, वो हमारे यहाँ सूरत में एक लाइब्रेरी में थी और मैंने वो पढ़ रखी थी और उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ था, उसको पढ़ के रोता था मैं। निदा फाजली का जो कैरेक्टर है वो लगता था मैं हूँ।
1: क्या बात है,
0: है ना
1: जी, काफी कुछ दुख उनके भीतर भी जमा।
0: हाँ, तो हमारी जिंदगी बड़ी मिलती जुलती थी
1: जी।
0: तो मुझे लगता था कि निदा फाजली मैं हूँ, तो मैं उसको पढ़ के रोता था मैं। तो निदा फाजली साहब के साथ मैंने उस किताब पर डिस्कस की, तो वही वजह बनी, कारण बनी हमारे नजदीक आने की। और निदा फाजली साहब का उस जमाने में मुशायरों में तूती बोलता था
1: बिल्कुल,
0: और खास तौर से सूरत में बड़े मकबूल थे वो, सूरत में बहुत अच्छा सुना जाता था
1: जी,
0: उनको
1: जी।
0: तो अब जब ये तय हो गया, ऐलान कर दिया कि भाई अब मकामी शायर नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे अफसोस हो रहा था कि यार मुझे पढ़ने को नहीं मिलेगा और ये मेरा पहला इतना बड़ा मुशायरा। तो निदा फाजली साहब ने एक कासिम हकीम साहब थे जो एडवोकेट थे और गुजरात उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन थे नायब, तो उनसे मेरे अच्छे रिश्ते थे, उन्होंने मेरे लिए मतलब एकेडमी और किताब छपवाना ये सब में बड़ी मदद की थी उन्होंने भी। तो लोकल पैमाने पर उन्होंने मुझे स्टेज भी दिलवाया। तो निदा फाजली साहब ने उनसे कहा कि अगर शकील को नहीं पढ़ाओगे तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा।
1: क्या बात है,
0: ठीक है। और उस मुशायरे में वो अपनी वाइफ को भी लाए थे, तो हम लोग जानते भी नहीं थे और उन्होंने बताया भी नहीं कि मेरी वाइफ है। उन्होंने फोन पे बताया कि भाई वो एक शायरा है मालती जोशी सनम, वो भी आएंगी। तो अब वो चूंकि निदा साहब ने कहा था तो कोई उनको मना नहीं कर सकता था, हाँ भाई ठीक है उनको भी ले आइए। तो मालती जी उस जमाने में मतलब यंग थी और
1: विविध भारती में आ चुकी हैं।
0: अच्छा, और बड़ी खूबसूरत लगती थी, मतलब उनकी जो
1: अभी भी लगती है
0: उनका जो चेहरा है वो सायरा बानो जी से भी थोड़ा मिलता जुलता है,
1: जी, जी।
0: है ना। और वो मुझे याद है काली साड़ी पहन रखी थी उन्होंने। तो एक और भी शायरा थी, रफिया शबनम आबिदी साहिबा भी थी, वो बॉम्बे से, वो प्रोफेसर हैं, काफी पढ़ी लिखी नक्काद हैं, क्रिटिक भी हैं और शायरा भी हैं, और यहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, शायद अब रिटायर हो गई हैं, प्रोफेसर भी थी वो। तो वो भी थी उस शायरे में, रफिया शबनम आबिदी साहिबा। लेकिन सामेईन की जो नजर थी वो मालती जी पे ही थी, हाँ, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत लगती थी और काली साड़ी में थी वो। तो अब जब मुझे बुलाया गया माइक पर, तो मैंने एक गजल का मतलब सुनाया, मतलब पहला शेर, कि किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए।
1: क्या बात है।
0: किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए, खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए। फिर एक शेर था जो मैंने मालती जी की नजर कर दिया, है ना। हालांकि कोई दूसरा शायर होता तो निदा फाजली साहब की मौजूदगी में उनकी बीवी को ऐसा शेर
1: हिम्मत नहीं करते, नजर, नहीं करते।
0: हाँ, नजर करने की हिम्मत नहीं करता।
1: जी,
0: हाँ। अब मैंने जुर्रत कर ली,
1: जी जी,
0: और वो शेर मैंने पढ़ दिया कि मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं।
1: क्या बात है।
0: मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं, अगर वो सांप मेरी आस्ती का हो जाए।
1: वाह।
0: अब इस शेर पे इतना हंगामा हो गया अचानक, इतना हंगामा हो गया कि मतलब जैसे मुझे सुरूर सा हो गया, मैं जैसे झूमने लगा, मैं इतनी दाद मिल गई मुझे। और फिर एक दूसरा शेर था, वो भी मैंने उन्हीं की नजर कर दिया इसके बाद, कि दुआ करो वो सितारा जमीन पे टूट गिरे, हमारे साथ रहे और यही कहो जाए।
1: क्या बात है। बहुत बढ़िया।
0: निदा साहब ने उठ के मुझे माला पहनाया,
1: जी जी,
0: और मालती जी को बुके लेके जबरदस्ती भेजा कि जा दे दे। तो इस तरह से वो मुशायरा मेरी जिंदगी का एक
1: यादगार
0: और पहला बड़ा मुशायरा था।
1: जी जी।
0: उससे पहले मैंने छोटी छोटी गोष्ठियां जो होती हैं हर शहर में, जो शायरों की अपनी होती है, एक दूसरे को सुनते हैं, या कोई छोटा मोटा मुशायरा दो चार पढ़ा होगा। ये मेरा पहला बड़ा मुशायरा था, और इस तरह से कितनी मुश्किलों से मुझे पढ़ने का मौका मिला, और हम सब मायूस ही थे, लेकिन बस कुछ खुदा का ऐसा करना था कि मुझे बहुत दाद मिली, बहुत कामयाब हुआ मैं। और इसी मुशायरे के जरिए जावेद अख्तर साहब से मेरे रिश्ते बने, निदा फाजली साहब से दोस्ती हुई, मोहम्मद अलवी साहब से हुई, और मैं फिर बम्बई आया तो निदा साहब से भी मिला और जावेद साहब से भी मिला। हाँ।
1: जी जी। तो जब आप ये अपने शायरी सुना रहे थे तो वहाँ पर मुझे भी आपका ही एक शेर याद आया।
0: इरशाद।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए।
0: क्या बात है।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए। तो ऐसे आपके तमाम अशार लोग सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं, लोग अपनी महबूबा के लिए जब खत लिखते हैं, खतूत का जमाना तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पर है अभी जमाना, तो लोग व्हाट्सएप पे भेजा करते हैं।
0: हाँ, ये शेर भी कितना यूनिक है
1: जी,
0: कि मैं इसलिए सो रहा हूँ कि तेरे ख्वाब देख पाऊँ मैं।
1: जी,
0: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने
1: जी। तो इसमें तमाम तरह के जज्बात है, हम तमाम जज्बात खंगालेंगे और बहुत सारी यादें आपकी खंगालेंगे, यादों के गलियारों में ले चलेंगे, फिल्मी दुनिया की ओर ले चलेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर आप श्रोताओं को ले आइए गाने के पास। कौन सा गाना सुनवाए?
0: थप्पड़ का सुना दीजिए, आपको ही बहुत पसंद है।
1: एक टुकड़ा धूप, ये तो हम सबका पसंदीदा गाना है। थप्पड़ फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: तो ये थप्पड़ फिल्म का गाना था शकील साहब और अनुभव सिन्हा जी इसके फिल्म निर्देशक थे, विविध भारती के स्टूडियो में आ चुके हैं और मेरा सौभाग्य कि उनसे हमने बहुत सारी बातें की, आपका भी जिक्र हुआ था।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो आप बताइए अनुभव सिन्हा से कैसे मुलाकात हुई, मुंबई आए तो इस गाने तक आप कैसे पहुंचे, इस फिल्म तक कैसे पहुंचे? फिल्म भी बड़ी प्रशंसित थी और ये गाना एक टुकड़ा धूप का तो बहुत प्रशंसित हुआ ये गाना।
1: जी, अहमद फराज साहब का एक शेर है, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे।
0: क्या बात है।
1: तो अनुभव सिन्हा साहब जरा मुझे देर में मिले।
0: जी,
1: हुआ ये था कि हमारे एक दोस्त हैं जो लंदन में रहते हैं, उस जमाने में बॉम्बे में भी रहते थे और लंदन में भी रहते थे, ब्रिटिश नागरिक हैं वो।
0: जी,
1: तो सेवी अली नाम है उनका। उन्होंने मुझे अनुभव सिन्हा साहब से मिलवाया था, नंबर भी उन्होंने ही दिया था मुझे।
0: जी,
1: अनुभव सिन्हा साहब शायरी के शौकीन हैं और खुद भी वो कविता लिखते हैं और गजल भी, शेर भी कहते हैं कभी कभी।
0: अच्छा, ये बात तो नहीं
1: था। कभी कभी शेर कहते हैं, वो नहीं बताते हैं लेकिन कभी कभी कहते हैं और फिर मुझे सुनाते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो,
1: हाँ, तो वो लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, वो किताब पढ़ते हैं, नावेल और कहानियां बहुत पढ़ते हैं और लिखते भी हैं वो। तो मैं उनको कभी कभी कोई शेर या कभी कोई गजल ऐसे व्हाट्सएप पर भेज दिया करता था।
0: जी।
1: तो उनको अच्छा लगता था तो मुझे रिप्लाई भी देते थे। और उनकी जो बड़ी बहन है जो शायद दिल्ली में रहती है।

0: है या कलकत्ता में रहती है, बड़ी बहन है, वो भी मेरी बड़ी फैन है, बाद में मुझे पता चला। तो उन्होंने भी शायद कुछ जिक्र किया होगा, और अभी जो मैंने गजल सुनाई, खुद को इतना भी मत बचाया कर, ये गजल उनको बड़ी पसंद है।
1: क्या बात है।
0: हाँ, मैं उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन ये अनुभव सिन्हा साहब के जरिए ही मुझे पता चला। तो हुआ ये कि मैंने ये बात इसलिए कही कि तू बहुत देर से मिला है मुझे, अनुभव सिन्हा साहब के जो फिल्म मेकिंग है इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उनका जो सफर है रावण तक या तुम बिन टू तक, वो एक अलग अनुभव सिन्हा है।
1: बिल्कुल।
0: और जो मुल्क से शुरू होके जो आया है अभी 80 तक,
1: भीड़
0: और 80 तक आया है,
1: आर्टिकल
0: 15, थप्पड़, अनेक, ये सारा जो काम है ये बहुत अलग और मुख्तलिफ काम है। लेकिन बड़े स्केल की फिल्में, ये फिल्में भी बड़ी हैं, लेकिन जैसे रावण का स्केल जो है, या 10 का, तथास्तु का, कैश का, ये फिल्में बहुत बड़े पर्दे की फिल्में थी
1: जी।
0: और बहुत मल्टी स्टारर फिल्में थी, और इन फिल्मों में गानों की गुंजाइश बहुत होती थी, और गाने जो हैं बहुत रोमांटिक गाने, कमर्शियल गाने जिसको कहते हैं खासतौर से, ऐसे गाने बनते थे। वो गानों से ही आए थे अनुभव सिन्हा साहब, वीडियो के डायरेक्टर थे, जो पहले एल्बम का बड़ा क्रेज था, तो एल्बम के गाने बड़े फिल्म के गानों की तरह शूट होते थे। तो
1: वो सुंदर फिल्मांकन किया।
0: हाँ, बहुत सारे उन्होंने गानों के वीडियो शूट किए फिल्म से पहले। तो ये जब भूषण कुमार जी जब दिल्ली से बॉम्बे आए, अपने टी सीरीज को संभालना शुरू किया, और जो पहली फिल्म बनाई उनकी देखरेख में जो पहली फिल्म बनी थी वो तुम बिन थी, अनुभव सिन्हा साहब उसके डायरेक्टर थे। अनुभव सिन्हा साहब से उन्होंने खुद ही कहा कि इतने अच्छे वीडियो डायरेक्ट करते हैं आप, तो हमारे लिए फिल्म बनाइए। तो वो पहली फिल्म थी उनकी तुम बिन। वहां से लेके रावण तक की जो उनकी जर्नी है, उस जर्नी में मैं नहीं हूं, उसी का मुझे दुख है। लेकिन जितने अनुभव सिन्हा मुझे मिले हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, वो भी मेरी खुशनसीबी है।
1: मैं तो उनको अनुभव का खजाना बोलती हूँ।
0: हाँ, तो ये जो दूसरे वाले अनुभव सिन्हा है ये मुझे मिले, वो जो पहले वाले पहला वाला जो हिस्सा है वो मुझे नहीं मिले।
1: देर आए दुरुस्त।
0: तो हाँ, तो हुआ ये था कि रावण के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस कायम किया, उनके बैनर का नाम है बनारस, और वो खुद बनारस के रहने
1: जी,
0: वाले
1: जी, जी।
0: तो आदमी जहां पैदा होता है उस जगह से उसको बहुत प्यार होता है। मैं आज भी आजमगढ़ जब जाता हूं तो जिन गलियों में खेलता था उनकी शक्लें बदल गई हैं, और कुछ गलियां खत्म हो गई हैं, कुछ जगहें बदल गई हैं सब, फिर भी वहां जाता हूं मैं। वो जो पुराने पेड़ होते थे सब कटकटा गए हैं, एकाध जो बचे हैं उन पेड़ों के पास जाता हूँ, वो जो स्कूल जहाँ पढ़ता था वहां जाता हूँ अकेला, और उसको फील करता हूँ, मैं सिर्फ फील करता हूँ खामोशी से। तो अनुभव सिन्हा साहब बनारस के हैं, इसलिए अपने बैनर का नाम भी उन्होंने बनारस रखा
1: जी,
0: है
1: जी,
0: बड़ा खूबसूरत सा नाम भी है बनारस,
1: नंबर पर वही लिखा हुआ।
0: हाँ,
1: व्हाट्सएप नंबर।
0: हाँ, तो हुआ ये कि जब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस कायम किया तो कुछ 3-4 फिल्में उन्होंने ऐसी प्रोड्यूस की जिनमें वो खुद डायरेक्टर नहीं थे, है ना। एक वार्निंग थी, और एक माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ गुलाब गैंग थी
1: जी, जी, जी,
0: है ना। और इसी सीरीज की एक फिल्म थी जिद
1: जी,
0: जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे,
1: उसमें आपने गाना लिखा है।
0: हाँ, वो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो जो फिल्म थी जिद, वो भट्ट साहब स्कूल की फिल्म थी, महेश भट्ट टाइप फिल्म थी वो। तो अनुभव सिन्हा साहब को उस फिल्म में ऐसे गाने चाहिए थे जिनमें शायरी हो, है ना, रोमांटिक फिल्म थी तो शायरी वाले गाने चाहिए थे। मुझसे पहले 2-3 गीतकार उसमें आजमाए गए थे, मुझे ऐसा बताया गया, बात नहीं बनी, फिर मुझे बुलाया गया, वो भी अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे फोन नहीं किया, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे शारिब तोशी। तो तोशी जी को उन्होंने कहा कि ये नंबर है शकील आजमी का, शकील आजमी को बुलाओ, वो इसके गाने बढ़िया लिखेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास नंबर है, हम बुला लेते हैं। तो तोशी जी ने मुझे फोन किया, और फिर वही, तब मैं मीरा रोड में रहता था, मैं सुबह सुबह कुछ 7:30-8 बजे उनके घर आ गया, वो मलाड में रहते थे, और फिर वो अपनी गाड़ी में मुझे अनुभव सिन्हा साहब के ऑफिस ले गए। अच्छा, पहले से उन्होंने भी मुझे फोन पे नहीं बताया कि मामला क्या है और कहाँ जाना है। फिर वो रास्ते में बताया कि सिन्हा साहब यहाँ जा रहे हैं, उनकी फिल्म का एक गाना है, तो एक गाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो सारे गाने धीरे धीरे मैंने लिखे और उसके गाने बहुत हिट हुए, बहुत ही कामयाब हुए। उसका म्यूजिक, मतलब उसने बहुत पैसे कमाए, फिल्म नहीं चली इतना, गाने बहुत हिट हुए।
1: ये फिल्म का नाम एक बार,
0: जिद,
1: जिद फिल्म।
0: उसके गाने थे सांसों को जीने का इशारा मिल गया, तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, फिर मरीज इश्क हूं मैं, फिर तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए।
1: क्या बात है।
0: तो ये सारे गाने सुपर हिट हुए उसके।

0: तो एक हमारी समझिए कि एक कामयाब जोड़ी बन रही थी, और उसके बाद फौरन उनकी जो वाइफ है रत्ना सिन्हा जी वो फिल्म कर रही थी शादी में जरूर आना, फिर उसके गाने भी मैं लिख रहा था। और फिर अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे एक बताया कि मैं ऑफिस में ही था, उनके ऑफिस में ही, कि मैं ये फिल्म कर रहा हूं। तो अनुभव सिन्हा साहब जो हैं, जिद के बाद उन्होंने तुम बिन टू है ना, अच्छा ये सारा लॉस हो रहा था, ये जो फिल्में अपनी कंपनी में उन्होंने प्रोड्यूस की वो सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिद भी नहीं चली थी, जिद के म्यूजिक ने बहुत अच्छा किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिल्में नहीं चल रही थी, ये जो मैंने अभी नाम लिए मैंने जी। ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। अब टी सीरीज की तरफ से अनुभव सिन्हा साहब को ऑफर आया कि भाई ये जो तुम बिन टू बनाइए हमारे लिए, भूषण कुमार जी ने उनको ऑफर दिया, तो तुम बिन टू बनाई, वो भी नहीं चली। उसमें एक गजल थी कोई फरियाद जो जगजीत सिंह जी ने गाई थी, उस गजल को हमने इसमें रिक्रिएट किया और इसका नाम चेंज हुआ तेरी फरियाद हो गया है ना, तो ये पिक्चर भी नहीं चली
1: जी।
0: उसके बाद जो है ये रिलीज हुई रत्ना सिन्हा जी की फिल्म, ये हिट हो गई और उसमें गाने भी हमारे बहुत चले और बड़ी इज्जत मिली। उसमें एक गाना था तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझमें, तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं, मैं घाट किनारे सो जाऊं फिर सुबह सुबह जागूं तुझमें, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझमें। तो ये गाना इसने बड़ी इज्जत दी मुझे, और यूं समझिए कि बनारस का ये दूसरा एंथम हो गया, पहला तो खई के पान बनारस वाला है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, तो ये दूसरा एंथम ये मेरा गाना बना। बनारस में जब भी आप जाएं, और मतलब मैं जब भी जाता हूँ बनारस तो मुझे बड़ी इज्जत मिलती है इस गाने की वजह से, और पूरे देश में मिलती है
1: जी।
0: और पॉपुलर हुआ बहुत ये गाना।
1: बात चल रही थी तुम बिन टू फिल्म के गाने का भी जिक्र किया, वहाँ पर जगजीत सिंह साहब ने एक गजल गाई है, वो गाना गाया है जगजीत सिंह साहब और साथ में रेखा भारद्वाज की आवाज थी। तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, जगजीत सिंह साहब एक गजल के मामले में गजल की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, और कौन ऐसा नहीं है जो उनका मतलब पसंदीदा सिंगर नहीं है।
0: मेरे तो सबसे पसंदीदा गजल सिंगर है, मैं इज्जत करता हूँ मेहदी हसन खान साहब की, गुलाम अली साहब की, सबकी,
1: रेखा भारद्वाज भी थी उसमें।
0: हाँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे छूता है गजल सिंगर वो है जगजीत सिंह साहब, और वो गजल बड़ी फेमस थी, तो उस गजल को लाना चाहते थे अनुभव सिन्हा साहब। मैंने उनसे जिद भी की कि सेम मीटर में मैं दूसरी गजल लिख देता हूँ, बोले नहीं मुझे तो वही चाहिए।
1: क्या बात।
0: तो मैंने कहा कि फिर ये मुखड़ा चेंज करते हैं, इसका मतला चेंज करते हैं। नहीं, मतला वही रहेगा। तो फिर मैंने कहा फिर नाम भी वही रहेगा, तो फिर गाना भी वही रहेगा, तो उसमें मैं कहाँ नजर आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ ऐसा करते हैं, आप मुखड़ा चेंज कर लीजिए, लेकिन उसमें फरियाद लफ्ज मुझे चाहिए। फरियाद लफ्ज चाहिए मुझे।
1: क्या बात है।
0: तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: मुझे सिचुएशन बताई, पहली जो फिल्म थी तुम बिन, उसकी भी जो कहानी थी वो एक लड़का है जो बजाहिर मर गया है
1: जी,
0: लेकिन बाद में वापस आता है, ठीक है, और फिर दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन वो बाद में फिर वो वापस आता है, इसी तरह की कहानी इसमें भी थी। तो वो लड़का जो है मर गया है या गायब हो गया है, बजाहिर आप समझिए मर गया है, और लड़के का बाप जो है उसके फोटो पे हार लगा रहा है, और लड़की मौजूद है, नेहा शर्मा उसमें हीरोइन थी, वो मौजूद है, और बाप जो है लड़के का कह रहा है कि ये मर चुका है, तू इसको भूल जा, नई जिंदगी शुरू कर, मर गया ही है, कहां इसके अभी चक्कर में है तू। और उसी जगह पे दूसरे लड़के का तारुफ होता है, दूसरा लड़का जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। तो मुझे बताया गया कि यहां से वो गाना शुरू होगा। तो मैंने लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे,
1: क्या बात है, अब कोई आस न उम्मीद बची हो जैसे।
0: तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे।
1: वाह वाह,
0: ये नेहा शर्मा के हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से के उस बाप ने भी उसको समझा दिया कि इसके ख्वाब मत देख और यहाँ से निकल, तेरी जिंदगी बहुत, तुझे बहुत अभी जीना है। तो मान तो रही है कि ठीक है अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे, लेकिन फिर भी तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे, मतलब अभी भी जैसे तू है ना, मान भी लिया फिर भी। तो होता ये था कि मुखड़े के बाद एक लाइन उस पहली वाली गजल से हम लेते थे और मुझे सिचुएशन बताई जाती थी कि इस लाइन पर ये सिचुएशन है और इस लाइन को आपको दो लाइन करके और ये तीसरी लाइन ही आएगी।
1: जी जी,
0: तो वो थोड़ा टेढ़ा काम था, सिचुएशन को भी मैनेज करना और उस लाइन को भी मैनेज करना।
1: जी जी,
0: ठीक है। तो वो बहुत सलीके से हुआ और बहुत जल्दी आधे घंटे में ये गाना लिख दिया था मैंने। और उसमें एक जो सबसे अच्छा शेर है कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये पहली जो गजल थी ये फायज अनवर साहब ने लिखी थी, फायज भाई हमारे दोस्तों।

0: उन्हें, उन्होंने लिखी थी। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: अब मैं आपको बताने के लिए, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे ये दो लाइन है, दो मिसरों का एक शेर होता है गजल में। अब पहला मिसरा मुझे छोड़ देना है, पहली लाइन, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये छोड़ देना है, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, इसको लेना है
1: जी।
0: और इसके ऊपर दो लाइन लगानी है, फिर ये आना चाहिए।
1: क्या बात।
0: और वो तीनों लाइनें कनेक्ट होनी चाहिए और सिचुएशन जो है वो बात भी होनी चाहिए
1: जी।
0: तो मैं खाली ये एक लाइन पर बात करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। रात कुछ ऐसे कटी है,
1: रात कुछ ऐसे कटी है
0: कि सहर ही ना हुई।
1: क्या बात है, वाह।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई।
1: वाह क्या बात है।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।

जानी मानी शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया सुबैर खान ने। इस कार्यक्रम का दूसरा और आखिरी भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे में।

0: ये है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

देखते हैं जिधर भी उधर तुम ही दिखाई देते हो ओ हमदम। ये दामन मोहब्बत का है, ये दुनिया हमारी, इसे छोड़कर कहां जाएं हम।

गुम हुए हैं नजारे, भला ये क्या है बात। तेरे काजल का असर देख, ये दिन अब हुआ है रात। नैनों का नैनों से मिलना, दिल का दिल को पुकारना, हाँ यही है वो मुलाकात।

जमाने के ताने जज्ब करते हैं रोज, रहते हैं कांटों के संग ये, इनकी हिमाकत को समझो, मासूम है और इसलिए बहक जाते हैं ये, इन फूलों की नजाकत को समझो।

पायल की छन छन, बिजली की चमकन, लोच कमरिया का संभाले न संभलता है, चुनरी की ढलकन, नजरों की अटकन, जरा सोच ये दिल बहलाए न बहलता है।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम तरानी नई पुरानी लेकर लीजिए हम हाजिर हो गए हैं। सभी विविध भारती सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम तराने नई पुराने में। नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ पूजा नरानिया। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं राज बब्बर की फिल्म के इस गीत के साथ, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। अभिनय की सादगी, व्यक्तित्व की गरिमा और कला के प्रति समर्पण की मिसाल है राज बब्बर। दशकों से अपने शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करते आ रहे हैं। उनके जन्मदिन पर हम उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुख और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। साथ ही सुनाते हैं उनका ये नगमा।
1: तराने नए पुराने।

तो ये था राज बब्बर जी की फिल्म से एक नगमा, प्रेम गीत इस फिल्म का नाम था। इंदिवर के बोल थे, इस गीत को गाया साथ ही संगीतबद्ध किया जगजीत सिंह ने। कहो ना प्यार है इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार शानू की आवाज में। सावन कुमार टाक ने इस गीत को लिखा, राजेश रोशन ने संगीतबद्ध किया।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम तरानी नई पुरानी, और अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू का गाया ये गीत। श्याम राज ने इस गीत को लिखा, आदेश श्रीवास्तव की बनाई धुन है। फिल्म का नाम आओ प्यार करें।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन
3: अब आपको सुनवा रहे हैं जीरो फिल्म का गीत, अभय जोधपुरकर की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल हैं, अजय अतुल का संगीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अब आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता राज बब्बर की फिल्म वारिस का ये नगमा। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में वर्मा मलिक ने इस गीत को लिखा है और तर्ज बनाई है उत्तम जगदीश ने।

वारिस फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के शेष गीत आपको समाचारों के बाद सुनवाए जाएंगे। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: अरोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG कैरियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: इस बीच तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री मटमुंग और के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है। ये ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला लंदन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना अमरीका और उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: समाचारों के बाद कार्यक्रम नए पुराने में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। राम लखन इस फिल्म का गीत सुनिए मनहर और अनुराधा की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

मैंने प्यार किया इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। देव कोहली रचनाकार थे, संगीतकार थे राम लक्ष्मण। यह अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से, मजरू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब आपको सुनवा रहे हैं साजन फिल्म का गीत। समीर के बोल हैं, नदीम शमन की बनाई तर्ज पर कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजें।

अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम तेरानी नई पुरानी की आखिरी पेशकश। इस गीत को गाया है कुमार सानू ने। बरसात फिल्म का गीत है, अनवर सागर का लिखा हुआ ये गीत है और नदीम श्रवण की बनाई तर्ज़।

0: बरसात फिल्म का गीत आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज में, और ये गीत बना कार्यक्रम तरानी नए पुराने का आखिरी गीत। इसी के साथ एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: तराने

FM 103.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी रांची का ये विविध भारती केंद्र है। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। मन भावन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुमेधा का प्यार भरा नमस्कार। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस के गाने से। मोहम्मद रफी की आवाज है, बोल है हसरत जयपुरी के और संगीत शंकर जयकिशन का है। इस गाने को सुनना चाहा है पाकुर झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्नव आनंद और सत्यम आनंद ने।

जावेद अख्तर के शब्दों को संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने, स्वर महालक्ष्मी अय्यर और शंकर महादेवन का है। फिल्म कुछ ना कहो से इस गाने को सुनना चाहा है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय और नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने।

0: आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज मीना योगेश सौरव शर्मा और जातुका किशनपुर से आलम दिलकश रिजवान राही इमरान राजा आलम शेख और चांदनी नाज की फरमाइश पर फिल्म निशांची से अब सुनेंगे अगला गाना। शाश्वत द्विवेदी के बोल हैं, अनुराग साकिया का संगीत, मधुबंती बागची और अनुराग साकिया की आवाज में सुनिए ये नगमा।
1: हेलो मैडम,

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: Szena.
1: FM 103.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी रांची का ये विविध भारती केंद्र है। आप आनंद उठा रहे हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम मन भावन का। इरशाद कामिल के शब्दों को सुरों से सजाया है अजय अतुल ने, स्वर सुखविंदर सिंह, दिव्या कुमार और स्वागत राठौड़ के हैं। फिल्म जीरो से इस गाने को सुनना चाहा है अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, रेयांश ठाकुर, ज्योति ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: झूम बराबर झूम से आप सुनेंगे आखिरी गाना। के सुखविंदर सिंह, महालक्ष्मी अय्यर की आवाजें हैं, बोल है गुलजार के और धुन तैयार की है शंकर एहसान लॉय ने। इस गाने की फरमाइश आई है भिलाई छत्तीसगढ़ से, मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा ने सुनना चाहा है ये नगमा। मनभावन के आज का सफर आपने तय किया सुमेधा के साथ। आप इस गाने का आनंद उठाएं और मुझे दे अनुमति। नमस्कार।

FM 103.3 MHz पर आकाशवाणी रांची का ये विविध भारती केंद्र है। जयमाला कार्यक्रम के लिए आपको ले चलते हैं हमारे मुंबई केंद्र।

फौजी साथियों के इस कार्यक्रम जयमाला में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हमारा नमन। जय हिंद साथियों। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा नरानिया। लीजिए अब आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं ये देशभक्ति गीत।

0: इस गीत की रचना की थी समीर ने, एआर रहमान ने धुन बनाई थी। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह इस फिल्म से ये गीत था एआर रहमान और सुखविंदर सिंह की आवाजों में। अब आपको सुनवाते हैं भारतीय सेना गीत।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है ये।

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत। गायक कलाकार, गीतकार और संगीतकार कैलाश खैर थे। अब आपको सुनवाते हैं ये गीत जिसे गाया है गुलाम अली ने, एसआर की संगीत बद भी किया है। मीर ताकी मीर ने इस गीत को लिखा है, शायराना फिल्म से ये गीत है।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
5: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म दोस्ताना का ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इस संदेश से पहले आपने गीत सुना तेरी कसम, इस फिल्म का अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे आरजी बर्मन का संगीत।
3: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
3: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
3: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
6: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
5: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं अब वक्त है कार्यक्रम में एक अंतराल का।

इस अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का, फौजी साथियों का इस कार्यक्रम जयमाला में हार्दिक स्वागत है। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं स्वीकार किया मैंने। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर है। निदा फाजली ने इस गीत को लिखा है, उषा खन्ना का संगीत।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में, वो एज एन अनाउंसर।

0: ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इस संदेश से पहले आपने गीत सुना एक नजर फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। मजू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब आपको सुनवा रहे हैं खुदा गवाह, इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: नुमाइश एल्बम से ये गीत था। इस गीत को गाया साथ ही संगीतबद्ध किया पंकज उदास ने। जफर गोरखपुरी ने इस गीत की रचना की थी।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। आइए अब आपको सुनवाते हैं, ये है प्रेम इस एल्बम का गीत। इस गीत के गायक कलाकार और संगीतकार मिलिंद इंगले हैं। श्याम अनुरागी का लिखा गीत है।

0: आज के हवा महल में आपको सुनवा रहे हैं प्रेमलता जैन की लिखी नाटिका चांद की किरण।
1: अरे सुनती हो, कहाँ हो?
2: अरे यहाँ तो कोई बोलता ही नहीं,
3: लगता है सब कहीं गए हैं।
2: नहीं नहीं, गए नहीं होंगे, यहीं होंगे। अच्छा ठहरो, मैं आवाज देता हूँ।
1: सरला, ओ सरला,
4: कौन है?
1: मैं हूँ, दीवार खोलो।
4: आती हूँ।
5: क्या बहुत देर से पुकार रहे थे, मुझे सुनाई ही नहीं दिया।
2: नहीं नहीं, अभी ही आए हैं, तुम शायद अंदर वाले रूम में थी।
5: हाँ, मुन्ने को सुला रही थी।
2: अच्छा छोड़ो, देखो तो, ये देखो कौन है।
3: नमस्ते भाभी जी।
5: नमस्ते भाई साहब।
2: भाई वाह, अजी नमस्ते नमस्ते तो हो गई, पर आपसी परिचय
5: परिचय करवाओ तो।
2: तो लो सुनो, देखो ये है मेरा लंगोटिया यार प्रेमेंद्र। जब हम छोटे थे ना तो समझो एक प्राण और दो शरीर थे।
3: पर भाभी जी, इस प्राण को इस निर्मोही ने निकाल फेंका था।
5: अच्छा, वो क्यों?
3: क्योंकि मैं
2: क्योंकि व्योंकि छोड़, क्या फिर झगड़ेगा?
3: नहीं,
2: और सरला क्या बाहर ही खड़ा रखोगी?
5: अरे अरे, मैं तो भूल ही गई थी। आइए आइए, अंदर आइए।
2: चल भाई अंदर चलो।
5: बैठिए भैया, आप भी बैठिए ना, मैं अभी आती हूँ।
2: हाँ हाँ, कहाँ जा रही हो?
5: कहीं नहीं, जरा चाय वाय ले आऊँ।
3: चाय का कष्ट मत कीजिए भाभी जी, बैठिए ना।
5: अरे वाह, इसमें कष्ट भला कैसा, ये तो सौभाग्य है। और फिर आपको तो मुँह दिखाई भी देनी है ना।
3: मुँह दिखाई? अच्छा अच्छा, समझा, मैं पहली बार मिला हूँ आपसे। वाह, क्या कहना है भाभी जी, आप तो बहुत बड़ी व्यंग्यकार हैं। आपने मुझे याद दिलाया कि मुझे मुँह दिखाई देनी है।
2: सुन लिया ना, ये प्रेमेंद्र भी कम नहीं। अच्छा सरला तुम बैठो, मैं बुलाता हूँ रामू को।
5: रामू बाहर गया है, मैं 5 मिनट में आती हूँ, अधिक समय नहीं लगेगा।
2: और सुना यार प्रेम, कामकाज कैसा चल रहा है?
3: कामकाज कैसा यार, भाई मैं तो सरकार का फेथफुल सर्वेंट हूँ।
2: हाँ हाँ।
3: गुजारे के लायक उसी से मिल जाता है बस। अमा तुम सुनाओ, क्या ठाट है?
2: अपना भी ठीक ही चल रहा है भाई, जीवन गुजर ही रहा है। अच्छा तू एक बात बता।
3: हाँ।
2: तू वहाँ ऑफिस में क्या कर रहा था?
3: भाई वहाँ एक लड़की काम करती है।
2: हाँ।
3: मिस मित्रा, उसी से
2: मिलने गया था। यही ना, देख प्रेम तेरी आदत बिल्कुल नहीं बदली, याद है ना इसी बात पे झगड़ा हुआ था?
3: ओफ, रहा झक्की का झक्की। अबे पहले बात तो सुन ले पूरी।
2: अच्छा सुना
3: है। अरे पहले मानस, पता है या नहीं परसों लोक नृत्य का कार्यक्रम है?
2: हाँ, वो तो पता है। तो भाई उससे और इस लड़की से क्या संबंध है?
3: संबंध ही तो है, डांस प्रोग्राम के टिकट लेने गया था उसके पास।
2: हाँ।
3: और कहीं मिल ही नहीं रहे थे।
2: अच्छा खैर छोड़। अरे सरला चाय ले आई?
5: हाँ हाँ चाय ले आई, देखो जरा वो टेबल पास कर दो ना।
2: अच्छा लो, ये लो।
5: लीजिए चाय लीजिए।
3: वाह भाभी जी, कुछ ही मिनटों में इतनी अच्छी अच्छी चीजें, लगता है आप बहुत सुखद गृहिणी हैं।
5: अपने मित्र महोदय से जरा पूछिए, इनके दृष्टि में तो मैं बेस्ट हाउसवाइफ हूँ।
3: क्यों बे कृष्ण, क्या ठीक है?
2: ना यार छोड़ो भी, क्या बात ले बैठे, ले ले और खा, ले लेके खा।
3: अरे अबे और लेना है? हमारा बस बस कुछ नहीं, अब मैं जाऊंगा।
2: जाएगा?
3: हाँ।
2: अबे इतनी जल्दी क्या है, कुछ देर और बैठ।
3: नहीं नहीं कुछ काम है, अब तो मैं आता ही रहूंगा, परसों तो मिलेंगे ही।
2: परसों?
3: हाँ परसों। लीजिए भाभी जी।
5: क्या है?
3: परसों लोक नृत्य का शो है ना।
5: हाँ,
3: उसके
5: हाँ।
3: दो टिकट हैं ये।
2: देख भाई प्रेम, ये तो तूने अपने लिए खरीदे हैं ना, ये रहने दे, हमें जाना होगा तो हम और ले लेंगे।
5: हाँ भाई साहब, ये ठीक ही कह रहे हैं।

0: नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मियाँ बीबी और दो बच्चे, चार टिकट लिए थे, बच्चे नहीं जाएंगे तो क्या होगा, वैसे दो टिकट और मिल जाएंगे, लीजिए ना, और ये तो आपकी मुंह दिखाई है। हाँ क्यों नहीं अबे टाल दे सस्ते में। अच्छा भाई सरला,
1: हाँ हाँ,
0: ये टिकट ले लो है? नहीं तो प्रेम बुरा मान जाएगा, और देखो वो रुपए ले आओ।
2: रुपए? अबे कैसी बातें कर रहा है तू, क्या रुपए देने के लिए मैंने टिकट दिए हैं?
0: वो तो मैं जानता हूँ भाई, पर भाई प्रेम, मैं इस सिद्धांत में पूरा विश्वास रखता हूँ कि मित्रों के बीच रुपए पैसे का संबंध नहीं होना चाहिए, मित्रता की बाधा बन जाता है रुपया। जाओ सरला रुपए ले आओ।
1: जी अच्छा।
2: यार मन खराब कर दिया तूने, भला कभी प्यार भी पैसों से तोला जाता है, है? कितने मन से टिकट दिए थे मैंने।
0: मैं जानता हूँ दोस्त, तेरी भावनाओं को मैं ठेस नहीं लगाना चाहता था,
2: पर क्या,
0: पर यही कि आज नहीं तो कल ये पैसा प्यार को तोल ही देता है। यार पैसा तो आदान प्रदान मांगता है ना। अच्छा खैर ये प्रसंग छोड़, आदरा गले तो लग जाए, कितने वर्षों के बाद मिला है।
2: अबे हट, रहने दे, तू बिल्कुल वही है, पहले थप्पड़ फिर प्यार, पर इस बार
1: इस बार क्या भाई साहब, लीजिए ये लीजिए रुपए,
2: जैसी इच्छा भाभी। अच्छा तो मैं चलूं भाभी जी।
1: नमस्ते भैया, कभी बच्चों वगैरह को लाइएगा।
2: हाँ जरूर लाऊंगा भाभी जी। अच्छा कृष्ण,
0: अच्छा अच्छा कुछ नहीं भाई, चल तुझे घर पर ड्रॉप कर दूं।
2: नहीं नहीं मुझे अभी बाहर जाना है।
0: तू वहीं सही, चल।
2: ओह अच्छा चल, तू ही जीता मैं हारा।

0: अब सो गया। सोना तो जैसे चाहता ही नहीं।
1: कौन नहीं सोना चाहता है?
0: यही मुन्ना, सोने का नाम नहीं और सारे दिन उधर। मैं तो तंग आ जाती हूँ।
1: तंग आ जाती हो? अरे भारतीय नारी का तो जीवन ही बच्चे हैं, वो तो कभी तंग नहीं आती।
0: लो और सुनो, इसमें भारतीय नारी की क्या बात है?
1: यही कि बच्चे तो भगवान की देन होते हैं और वो तो बच्चों को छाती से चिपका रहती है, सुख में दुख में।
0: बस बस बस, मैं सब समझ गई। अच्छा एक काम करोगे?
1: काम? अजी तुम कहो तो जान भी हाजिर है।
0: बातें मत बना। सुनो,
1: हाँ?
0: गीता और महेश तो बड़े हो गए हैं, उनका तो अब सहारा ही है। मीना और बिट्टू भी स्कूल चले जाते हैं।
1: हाँ हाँ,
0: तो यही कि रमा और मुन्ना, उनमें से एक को तुम अपने साथ ऑफिस ले जाए।
1: क्या कहा, ऑफिस ले जाए?
0: मुझ में तो अभी हिम्मत नहीं रही कि इतना बोझ संभाल सकूं।
1: ऑफिस ले जाया करो, कमाल कर दिया तुमने सरला। अरे तुम अगर हिम्मत हारोगी तो ये बच्चे पलेंगे कैसे?
0: मैं क्या जानू, तुम पालना, तुम भी तो बाप हो इनके।
1: अच्छा भाई चलो मैं ही पाल लूंगा, तुम खुश रहो। अच्छा अब तो सो जाओ, देखो सरला मुझे नींद आ रही है।
0: तो सो जाओ ना, मैं क्या रोक रही हूँ तुम्हें, मुझे जब नींद आएगी मैं भी सो जाऊंगी।
1: अच्छा अच्छा, गुड नाइट डार्लिंग।
0: नहीं नहीं, सुनते हो?
1: ओफो, क्या है?
0: मुझे नींद नहीं आएगी।
1: क्यों, क्या बात है जो नींद नहीं आएगी?
0: चिंता हो रही है।
1: कैसी चिंता?
0: गीता और महेश की फीसें देनी है।
1: तो दे देना।
0: पर दूंगी कहाँ से, यही तो समस्या है।
1: क्यों, रुपए तो उनके लिए अलग ही रखे थे ना।
0: 50 रुपए टिकटों के जो दिलवा दिए, आप तो कुछ सोचते ही नहीं। भला क्या जरूरत थी टिकटों की? उफ, मेरा तो चिंता से बुरा हाल हो गया है, फीस देना भी बहुत जरूरी है।
1: क्यों चिंता करती हूँ सरला, सब ठीक हो जाएगा। और फिर टिकटों के रुपए तो देने ही थे ना, तुम ही कहो भला मुफ्त में टिकट ले लेता।
0: वो तो मैं कब कहती हूँ कि मुफ्त में टिकट ले लेते, टिकट लिए ही क्यों?
1: लिए ही क्यों, तो क्या मैं अपनी बेइज्जती करवा लेता? वो तो बच्चों के लिए टिकट ला सकता है और मैं तुम्हारे और अपने लिए दो टिकट नहीं ले सकता?
0: हाँ हाँ, नहीं ले सकते, पहले घर का खर्चा तो पूरा हो फिर कहीं।
1: फिर कुछ नहीं होगा सरला, तुम्हें तो घर चलाना आता ही नहीं। इतना रुपया कमाता हूँ पर न जाने तुम कहाँ फूंक देती हो।
0: फूंक देती हूँ? नहीं नहीं, मैं खा लेती हूँ।
1: कुछ तो करती ही हो सरला, प्रेम को ही देखो ना, मुझसे कम वेतन मिलता है पर कितनी शांति है उसे, खर्च और शौक दोनों पूरे करता है। बीबी फूहड़ है इसीलिए ना।
0: हाँ हाँ, मैं ही फूहड़ हूँ, ये नहीं सोचते कि उसकी गृहस्थी छोटी है, कुल 4 प्राणी और यहाँ इतना बड़ा परिवार, उसके लिए नौकर भी जरूरी, घर की चिंताओं ने तोड़ डाला है मुझे तो। आखिर पुरुष होना, पल्ले झाड़ कर अलग हो गए और दोष मेरे मत्थे मर गया।
1: अच्छा बाबा माफ करो, चलो दोष मेरा ही सही, अब सोने दो मुझे।
2: साहब क्या है, बाहर कोई प्रवीण साहब आपसे मिलने आए हैं।
1: अच्छा अच्छा, उन्हें शीघ्र अंदर भेज दो।
3: अरे प्रेम, आओ आओ आओ भाई आओ। है
1: क्या, उसी से मिलने आए हो?
3: हाँ कृष्ण, उसी से मिलने आया था और मिल भी लिया यार, मन आनंदित हो गया।
1: हाँ हाँ हाँ, आनंदित क्यों नहीं होगा, बचपन की आदत जो है।
3: अबे तो जलता क्यों है, उसने बड़े प्यार से 2 टिकट मेरे हाथ में थमाकर कहा।
1: क्या कहा?
3: आपको किसी भी समय किसी वस्तु की आवश्यकता हो हाँ? तो मुझे बताइए, आपके लिए काम करके मुझे आनंद मिलेगा।
1: अच्छा अच्छा, बहुत ठीक बहुत ठीक, मेरा भी मन आनंदित हो गया। अच्छा बता भाई
3: हाँ?
1: शाम का क्या प्रोग्राम है?
3: प्रोग्राम क्या, वही मिलेंगे?
1: नहीं भाई सुन, शाम को मैं और सरला तुम्हें घर से पिकअप करते हुए शो में चलेंगे, तो ठीक है ना?
3: हाँ हाँ, बहुत ठीक बहुत ठीक, भाभी जी का भी हमारे घर पदार्पण हो जाएगा।
1: तो भाई बात पक्की है, ठीक 6:45 हम पहुंच रहे हैं तुम्हारे यहाँ। ओके
3: ओके ओके, ठीक 6:45।
1: हाँ भाई। अरे सरला, अरे कहाँ हो भाई, कहाँ चली गई?
4: ओफो, देर ना हो जाए कहीं।
1: रामू ये क्या है?
5: जी चाय।
1: अच्छा चाय को बाहर रख दो और देखो मैम साहब को जल्दी भेजो।
5: जी हाँ,
1: मैं चाय पीता हूँ, तू जरा जल्दी कर। सरला, अरे ओ सरला,
4: ओहो तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुए, मैंने तो पहले ही फोन कर दिया था।
0: तैयार होने में कौन से युग लगते हैं, पर मुझे तो तैयार होना ही नहीं है।
1: क्या कहा, तैयार होना ही नहीं है? क्या कह रही हो तुम ये?
0: ठीक कह रही हूँ, मैं नहीं जा सकती, मुन्ने को तेज बुखार है, रो रहा है, चुप ही नहीं होता, तुम ही बताओ ना मुन्ने को छोड़ो।
1: मुन्ना मुन्ना, तुम्हारा सारा जीवन इसी में बीतेगा, मेरे साथ जाने को एक क्षण भी नहीं है तुम्हारे पास।
0: कैसी बातें कर रहे हो जी, तुम्हारे लिए तो जीवन का हर क्षण प्रस्तुत है, परंतु
1: देखो देखो सरला, परंतु परंतु कुछ नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना है, जाओ 10 मिनट में तैयार होकर चली आओ।
0: ओहो, तुम कुछ समझते क्यों नहीं, मैं अगर जा सकती तो क्या नहीं जाती, मुन्ने को तेज बुखार में छोड़कर भला कैसे जाऊं?
4: मुन्ने को तेज बुखार में छोड़कर कैसे जाऊं? उफ़ो, गीता संभाल लेगी नौते। अभी डॉक्टर साहब को फोन कर देता हूँ, आके देख जाएंगे।
0: आकर देख जाएंगे? फीस के लिए रुपए कहाँ से आएंगे? कल ही शाह बनकर 50 रुपए फूंक दिए।
4: क्या कहा? फूंक दिए? हे भगवान, ये क्या जाहिल और गमार मेरे भाग में लिखी थी। 50 रुपए जिंदगी दूभर हो गई है। अब तो मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा।
0: घर छोड़कर चले जाओगे? तुम क्यों जाओगे, मैं ही चली जाती हूँ। अनपढ़ जाहिल गंवार का तुम्हारे जैसे साहब के घर में भला क्या काम है? शादी से पहले मैं ही चांद की किरण और फूल से सुकुमारी थी ना।
4: हाँ हाँ, ठीक ही बात है। तब तुम कुछ और ही थी। तुम तब मेरे साथ चांद तक जाने को तैयार रहती थी, और अब?
0: हाँ, अब क्या हो गया है?
4: अब क्या नहीं हुआ है? अब तुम्हें मेरे मान और सम्मान का भी कुछ ख्याल नहीं है। तुम ही बोलो, प्रेम क्या कहेगा, उसकी मिसेस क्या कहेंगी? अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम अपने बच्चों को लेकर बैठो, मुन्ने को सुनाओ, मैं जाता हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगा इस नगर में।
5: आओ आओ कृष्ण, हमें देर हो गई।
4: हाँ देर हो गई।
5: हाँ, भाभी जी कहाँ है? क्या गाड़ी में बैठी है?
4: नहीं गाड़ी में नहीं, घर में बैठी है।
5: यार क्या बात है, झगड़ा करके आया क्या? अरे बात तो बता।
4: बात बात कुछ नहीं भाई। हाँ। मुन्ने को बुखार था, बस सरला नहीं आ सकी।
5: अरे मुन्ने को बुखार है तो तू आया क्यों? अबे फोन कर देता। अजय सुनती हो?
6: क्या है? नमस्ते भाई साहब, भाभी जी कहाँ है?
4: वो नहीं आ सकी है, छोटा बच्चा बीमार है।
6: हैं? भाई साहब तो आपने फोन कर दिया होता, हम वहाँ आ जाते, प्रोग्राम कैंसिल हो जाता।
4: नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पहले नमस्ते तो स्वीकार कीजिए। भाई वाह प्रेम, तू तो सदैव भाग्यवान रहा है, भाभी जी प्रशंसा के योग्य हैं।
5: कौन भाग्यवान है ये तू अच्छी तरह जानता है। कमला से अधिक सुंदर गुणवती पढ़ी लिखी हमारी भाभी जी, ऊंचे पद की नौकरी, सुंदर बच्चे, अमा किस वस्तु का भाव है तुम्हें?
6: ये बातें तो फिर होती रहेंगी। चलिए घर चलिए, बेचारी भाभी जी अकेली परेशान हो रही होंगी। प्रोग्राम का क्या, वो तो होते ही रहते हैं।
4: नहीं नहीं, ये आप लोग क्या कह रहे हैं, जाने का प्रोग्राम तो कैंसिल नहीं ही होगा। चिंता की कोई बात नहीं है, सरला सब संभाल लेती है।
5: सब संभाल लेती है ये बात अलग है, तुम्हें तो हर कार्य में उनका साथ देना चाहिए।
6: ये ठीक कह रहे हैं भाई साहब, पति के पूर्ण सहयोग के बिना पत्नी टूट जाती है, उसका हृदय टूट जाता है।
4: ये सब ठीक है, मैं सब समझता हूँ, पर क्या करूँ, हर रोज का काम, बीमारी, पैसे की चिंता, ये सब मिलकर दिमाग खराब कर देते हैं।
5: दिमाग तो खराब होगा ही, पर भाई मेरे ये सब तो पहले सोचने की बातें थीं। अब इसका उपाय क्या है? जितने परिवार के प्राणी अधिक होंगे उतनी अधिक परेशानियां, झगड़ा और खर्चा पड़ेगा।
4: पर इसका उपाय भी तो होगा प्रेम।
6: उपाय यही कि सब समस्याओं का समाधान आपसी सहयोग ही है। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर बढ़िए, एक दूसरे को दोषी न मानकर कर्तव्य और भावना में सामंजस्य रखिए।
5: हाँ दोस्त, ये ठीक कह रही हैं। जीवन में बैलेंस होना चाहिए, दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए।
4: कहता तो तू ठीक है। हाँ। वास्तव में मैं पारायण वृत्ति को अपनाता

0: रहा था
1: और यही विषाद का मूल कारण है।
0: अच्छा चल भाभी जी के पास चले।
2: नहीं नहीं चलो तुम सबको शो में ड्रॉप करके मैं घर जाऊंगा अपनी सरला के पास।
0: बहुत ठीक, यही है सामंजस्य की भावना, पति और पत्नी का पूर्ण सहयोग।

तो ये थी नाटिका चांद की किरण। लेखिका प्रेमलता जैन, निर्देशन किया जनार्दन राय ने। आकाशवाणी के पटना केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं ये पहला गीत मोहित चौहान की आवाज में न्यूयॉर्क फिल्म से। संदीप श्रीवास्तव ने इस गीत को लिखा, प्रीतम ने संगीतबद्ध किया।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन
5: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
6: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
5: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

मैं और मिसेस खन्ना इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम, श्रेया घोषाल और सुजैन डिमेलो की आवाजों में। साजिद वाजिद का संगीत था।

अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत है। मोहित चौहान की आवाज में लव आजकल फिल्म का गीत इरशाद कामिल ने इस गीत की रचना की है, प्रीतम ने संगीतबद्ध किया।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाल।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
3: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इस संदेश से पहले आप सुन रहे थे आ देखें जरा। इस फिल्म का गीत सुनिधि चौहान और शान की आवाजों में इरशाद कामिल के बोल थे। धुन बनाई थी प्रीतम ने।

हमसे है मुकाबला इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज, साथ ही एस जानकी की आवाज भी है। पीके मिश्रा ने इस गीत को लिखा है, एआर रहमान ने धुन बनाई है।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से

0: सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन, गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
3: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
3: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फलस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फलस्तीन को सहायता भी

0: प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्से सेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 trillion तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की और बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने 1 कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2वें समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: निजी श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और इस कार्यक्रम आपके लिए में ये पहली प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म आशा से लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों में आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बनाया संगीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन, कौन?
2: इस संदेश से पहले आप सुन रहे थे चश्मी बद्दूर फिल्म का गीत, येशुदास हेमंती शुक्ला की आवाजों में। इंदु जैन ने इस गीत को लिखा था और धुन बनाई थी राज कमल ने। अब आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत जानी दुश्मन फिल्म से, आशा भोसले मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों में। वर्मा मलिक इसके रचनाकार हैं, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन

0: संभावनाएं काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बीच में क्यों रोक दी?
1: तुम्हारा साथ। एक दूजे के लिए इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।
2: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
0: तुम और हिंदी कविता?
2: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी, प्यार किए जा, जवानी दीवानी, खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर। इंग्लिश।

0: किशोर
1: भूल गए
0: जानी मेरा नाम
1: अच्छा?
0: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाज
0: लड़के मिलन

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जिनका जन्म संयुक्त प्रांत टुंडला आगरा में पंजाबी परिवार में 23 जून 1952 को हुआ। अपनी आरंभिक शिक्षा आपने आगरा से की, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के आप पूर्व छात्र हैं। इतनी जानकारियों के बाद निश्चय ही एक कलाकार का चेहरा आपके जेहन में कौंध गया होगा, और ऐसा ना भी हुआ हो तो ये गीत इस अभिनेता की पहचान करा

आज के फनकार में आज का सफर हम तय करेंगे एक सशक्त अभिनेता राजनीतिज्ञ राज बब्बर की बातों के साथ, उनकी फिल्मों के गीतों के साथ।

अभिनय की बारीकियां और उसके विस्तार को आपने एनएसडी से जाना। अपने प्रशिक्षण के बाद आप मुंबई चले आए। यहां आने के बाद समय के कुछ अंतराल पर आपको मिली फिल्म आप तो ऐसे न थे। ये 1980 की फिल्म थी जिसमें राज बब्बर ने विजय नाम के किरदार को निभाया था। इनके साथ रंजीता, दीपक पराशर, मदनपुरी और ओम शिव पुरी थे। मोहन कुमार द्वारा निर्मित, अम्बरीश संगल द्वारा निर्देशित ये फिल्म अपने एक गाने की वजह से आज तक याद की जाती है, जिसे 3 सिंगर्स ने आवाज दी थी और संगीत था उषा खन्ना का। ये गाना पर्दे पर रंजीता और राज बब्बर पर फिल्माया गया है।

कह सकते हैं कि राज बब्बर की विशेष पहचान फिल्म इंसाफ का तराजू से हुई। इस फिल्म में जीनत अमान और पद्मिनी कोल्हापुरे ने भी अभिनय किया। इस फिल्म में आपके अभिनय से प्रभावित होके बी आर चोपड़ा बैनर की फिल्मों के आप सक्रिय सदस्य बन गए। निकाह में दीपक पाराशर और सलमा आगा के साथ आप थे, साथ ही आज की आवाज में स्मिता पाटिल के साथ आपने अभिनय किया।

सामाजिक घरेलू ड्रामा फिल्म थी 100 दिन सास के, जिसमें मुख्य कलाकार थे रीना रॉय, अशोक कुमार, राज बब्बर, बेला बोस और ललिता पवार। वैसे तो ये फिल्म पूरी तरह किरदार दुर्गा पर आधारित थी, जो समाज में बहुओं के लिए बनाए गए नियमों पर प्रश्न उठाती है। इस किरदार को रीना रॉय ने निभाया था। ये एक सफल फिल्म थी और इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे राज बब्बर।

फिल्मों में रोल पाना इस थिएटर आर्टिस्ट का ध्येय था, वहीं फिल्मों के लिए किया जाने वाला स्ट्रगल एक सत्य, इंसाफ का तराजू। इसकी सफलता राज बब्बर के तमाम संघर्षों का एक सुखद परिणाम लेकर आई थी। इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। एक इंटरव्यू में आपने शेयर करते हुए बताया था कि वो अपनी माँ के साथ जब फिल्म देख कर निकले तो माँ रो रही थी। राज बब्बर ने सोचा शायद मेरी इतने सालों के संघर्ष के बाद मिली सफलता पर इनके खुशी के आंसू है, पर जब असली बात पता चली तो आपको सुखद आश्चर्य हुआ। माँ ने कहा, बेटा हम दो रोटी कम खा लेंगे, ऐसा काम मत किया कर। इंसाफ का तराजू में राज बब्बर ने एक नेगेटिव किरदार निभाया था।

राज बब्बर ने सुप्रसिद्ध थिएटर पर्सनालिटी सज्जाद जहीर की बेटी और मशहूर थिएटर आर्टिस्ट नादिरा जहीर बब्बर से विवाह किया। आपसे राज बब्बर की दो संतानें हैं, आर्य बब्बर और जूही बब्बर। ये दोनों ही कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वहीं इनकी पत्नी मशहूर अदाकारा स्मिता पाटिल से प्रतीक बब्बर हैं, जो स्वयं एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं।

राज बब्बर ने स्मिता पाटिल के साथ कई फिल्में की, जिनमें प्रमुख हैं आज की आवाज, वारिस, इंसानियत के दुश्मन, अवाम, जवाब, हम दो हमारे दो, शपथ, मेरा घर मेरे बच्चे, दहलीज, किनारा और भीगी पलके। जन्म

किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़े शख्स का हिंदी फिल्मों से जुड़ने के पीछे की कहानी कई बार बहुत रोचक और प्रेरणादायी होती है। ऐसा ही राज बब्बर जी के साथ भी हुआ। आगरा से पढ़ाई के बाद आप पटियाला यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बने। यहाँ थिएटर का आपने विधिवत प्रशिक्षण लेना आरंभ किया, जहाँ इनकी मुलाकात हुई हरपाल टिमाणा जी से, जो खुद एनएसडी से थे। आप स्वयं पंजाबी कला मंच नाम की एक सांस्कृतिक संस्था चलाया करते थे। आपने राज बब्बर से एक दिन कहा कि देखो राज बब्बर, नाटक तुम कर रहे हो और बड़े अच्छे अभिनेता हो, मैं खुद भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हूँ, मैं तो यही नसीहत दूंगा तुम्हें कि जाओ और एनएसडी से एक्टिंग का कोर्स करो। ये बात राज बब्बर को जच गई। सन 1972 में राज बब्बर ने एनएसडी में दाखिला लिया, जहां इनके सीनियर्स थे नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी। वहां थिएटर गुरु इब्राहिम अलका जी से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। शुरुआती दौर में इन्हें दारा सिंह की फिल्में काफी पसंद थी, फिर दिलीप कुमार साहब के अभिनय ने इन्हें मुतासिर किया। एनएसडी करने के बाद इन्हें प्रस्ताव मिला कि आप एनएसडी की रिपेक्ट्री का हिस्सा बने, लेकिन राज बब्बर चूंकि दूरदर्शन से भी जुड़े थे, सुदर्शन काया थी इनकी, पर्दे पर इनकी उपस्थिति दर्शकों को पसंद भी आती थी, ये इन्हें मालूम भी था, और इसी वजह से इन्होंने शायद ये निर्णय लिया कि वो रिपेक्ट्री का हिस्सा नहीं बनेंगे। जहां तक दूरदर्शन की बात है तो ये काम इन्हें कहा जाता है कि इलारुन जी ने दिलवाया था। यही वो दौर था जब नादिरा बब्बर से आपका मिलना हुआ और विवाह संपन्न हुआ।

फिल्मों का इन्हें मिलना अभी भी तय नहीं था। थिएटर करते रहे जब इनके अच्छे मित्र शंकर सुहेल के द्वारा इनकी मुलाकात मशहूर प्रकाश मेहरा से हुई। सलीम जावेद की जोड़ी और रमेश सिप्पी उस वक्त एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसके लिए राज बब्बर का चयन हुआ। स्क्रीन टेस्ट में भी आप सफल रहे। दिलीप साहब ने जब स्क्रीन टेस्ट देखा तो खुश हुए। रमेश सिप्पी भी आश्वस्त हुए कि अब फिल्म को एक महत्वपूर्ण किरदार राज बब्बर मिल गया है। पर बाद में किन्हीं कारणों से यह किरदार निभाया अमिताभ बच्चन ने और फिल्म थी शक्ति। प्रकाश मेहरा से इनकी भेंट एक वक्त पर नाउम्मीदी को चीरती हुई उम्मीद की किरण लेकर आई। नमक हलाल में काम करने की बात चली पर इस फिल्म में भी इनका रोल शशि कपूर ने किया। यहां भी उम्मीद दगा दे गई पर आशा इनकी न छूटी। शारदा फिल्म में आप एक छोटे किरदार में नजर आए जिसमें जितेंद्र, रामेश्वरी और सारिका थी। फिर सुपरहिट फिल्म इंसाफ का तराजू ने इनकी किस्मत बदल दी। राज बब्बर अपनी फिल्मी हैसियत के साथ साथ समाज सेवा के कार्य से भी जुड़े रहे हैं और एक राजनेता के रूप में भी सक्रिय हैं। इन्होंने अपने होम प्रोडक्शन में अपने भाई के साथ मिलकर बब्बर फिल्म्स के बैनर तले 1992 में कर्म योद्धा, 2003 में काश आप हमारे होते और 2010 में टीवी सीरियल महाराजा रणजीत सिंह का निर्माण किया। सन 1981 में इंसाफ का तराजू बेस्ट एक्टर के लिए, 84 में अगर तुम ना होते सपोर्टिंग एक्टर के लिए, 85 में आज की आवाज बेस्ट एक्टर के लिए, 94 में दलाल विलन के लिए और 1996 में याराना फिल्म के विलन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए आपको नामांकित किया गया था। राज बब्बर की कई फिल्मों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है जिनमें हम पांच, कलयुग, राज और पूनम है।

प्रेम गीत, ये रिश्ता ना टूटे, उमराव जान और अरमान फिल्म भी राज बब्बर को एक अच्छे अभिनेता के रूप में दिखलाती है। आपस की बात, दूल्हा बिकता है, दौलत जैसी फिल्म भी इनके अभिनय से सजी थी। लिबास, दहलीज, घायल, रुदाली, माया मेम साहब, बरसात और याराना में भी राज बब्बर ने अपनी अभिनय क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया और दर्शकों ने भी इसे सराहा, प्यार किया। फिल्म बंटी बबली, कॉरपोरेट, फैशन, बॉडीगार्ड, फोर्स और तेवर जैसी नए दौर की फिल्मों में भी इनके अभिनय ने भूमिकाओं को सशक्त किया। टेलीविजन पर भी 1986 में बहादुर शाह जफर में अकबर का किरदार आपने निभाया, 1988 में महाभारत में भरत राजा का किरदार आपने निभाया, वहीं 2010 की महाराजा रणजीत सिंह में आपने नरेशन किया। 2014-15 का धारावाहिक पुकार, कॉल फॉर द हीरो जैसी सीरीज से जुड़कर आपने अपने अभिनय कौशल का जौहर दिखलाया। राज बब्बर आज भी सक्रियता के साथ सामाजिक सरोकार रखने वाली गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। राज बब्बर ने अपने अभिनय से कई किरदारों को जीवंत किया है। आप अपनी कला से सेल्यूलाइट पर हमेशा

0: आपने सुना आज का आज के फनकार, जो कि राज बब्बर पर केंद्रित था। आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुति थी रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: FM 103.3 MHz पर आकाशवाणी रांची का ये विविध भारती केंद्र है। छाया गीत कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आए जो वो जिंदगी में तो खुशियों की पालकी पर बैठ मन चल पड़ा था एक अनजानी दुनिया में। उनका दामन थाम खुशियों के गुल्लक भरते रहे, उनकी प्यार भरे निगाहों ने फूलों की बारिश की, अधरों ने लिख दी जिंदगी की नई वसीयत और फिर जिंदगी ख्वाब बन गई।

छाया गीत कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।

हमदर्द, हमसाया, हमसफर का जुदा होना जिंदगी जैसे अंधेरे से घिर जाती है। जाने वाला चला जाता है दूर, कहीं दूर, लेकिन दिल नहीं मानता। दिल अपने भीतर उम्मीद का दिया जलाए रखता है कि शायद वो आएगा। टूट कर भी जीने का हौसला पा लेता है दिल। कुछ अजीब है ये दिल, अजीब है ये जिंदगी।

राहों में चलते हुए भटक जाते हैं। वे नहीं समझ पाते मोहब्बत की गहराई। ऐसे में तन्हाई मुस्कान बनकर उनका साथ निभाती है।

हमारे मन में यादों का सागर होता है, कुछ दर्द भरी यादें, कुछ खुशगवार यादें। कुछ दर्द भरी यादों की लहरों से हमारा मन चोटिल होता रहता है, कुछ दर्दीली यादें हमें सहलाती हैं, हमें सिखाती भी हैं, कुछ प्यारी यादें हमें इस तरह गुदगुदाती हैं कि हम खुद को भूलकर किसी की जादू भरी बातों में खो जाते हैं।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
2: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

10 मिनट हो चुके हैं। हमारा आज का प्रसारण अब यहीं संपन्न होता है। एफएम के इसी मीटर पर कल सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।